एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 9 अक्टूबर सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 18 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं, अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला तथा बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। इसमें सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किए जा रहे विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में ये दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों, पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ये सम्मेलन कल शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी परिषद के सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कहा है कि भारत एक संपूर्ण दूरसंचार मूल्य श्रृंखला की ओर अग्रसर है और नियमों, उपकरणों तथा नवाचार को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान उच्च स्तरीय सीईओ गोलमेज सम्मेलन में श्री सिंधिया ने देश के विस्तारित डिजिटल तंत्र और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, उभरती प्रौद्योगिकियों, नवाचार और आर्थिक विकास में दूरसंचार की बढ़ती भूमिका की चर्चा की। सरकार ने

0: गैर अनुसूचित कैंसर की दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लगाए जाने वाले लाभ प्रतिशत की सीमा तय करती है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने आशा व्यक्त की है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी, जिससे कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। योग्य उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसरशिप या PhD के लिए वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है। परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA को अप्रैल से सितंबर के बीच भारत के जैविक संसाधनों का उपयोग करने वालों से 9,68,00,000 रुपए मिल सकते हैं। ये राशि पहुंच और लाभ साझाकरण यानी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त हुई है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि कुल प्राप्त राशि में से 9,56,00,000 रुपए विभिन्न क्षेत्रों में जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए प्राप्त हुए हैं। भारत ने पिछले कुछ दिनों में आभा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले में कई नागरिकों की मौत हुई है तथा कई घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के पुणे स्थित उनके फार्म हाउस नानाजी वाडी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशिष्ट योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। खेलों में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। उधर पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रीको गुंजी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन।

जिस वस्तु के नाश से बड़ा दुख या कष्ट होता है, उसके प्राप्त होने से पूर्व सुख या दुख कुछ भी नहीं होता है। अतएव उसकी प्राप्ति के पूर्व की अवस्था को ध्यान में रखकर मन को दुखी नहीं करना चाहिए।

जीवन में दिन आते और जाते रहते हैं, लेकिन वही दिन श्रेष्ठ कहलाता है जिस दिन की शुरुआत हम प्रभु भजन से करते हैं, ईश्वर के मनन से करते हैं।

ईश्वर की भक्ति से बड़ा जीवन में कोई सुख नहीं है, क्योंकि ये हमारे मन के विकारों को दूर करके जीवन को शांत और सरल बना देती है। जब हम सच्चे मन से प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं तो दुनिया का कोई भी डर या दुख हमें परेशान नहीं कर सकता।

यदि आप हमेशा सत्य की राह पर चलते हैं तो विश्वास रखिए कि ईश्वर हर मोड़ पर आपके साथ हैं। जहाँ भगवान की सच्ची भक्ति होती है वहाँ मन का असली सुकून होता है और प्रभु तक पहुँचने का एकमात्र सीधा रास्ता सिर्फ उनके प्रति अटूट आस्था और उनकी निश्चल भक्ति है।

अधर्म पर धर्म की और बुराई पर अच्छाई की प्रतीक माँ अम्बे हर सच्चे भक्त के संकल्प को सिद्ध करती है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानना ही माँ दुर्गा की सच्ची आराधना है, क्योंकि वे हर आत्मा में चेतना बनकर बास करती हैं।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सुबह के 6:40 हुए हैं, लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का अंत।

श्री राम ने भरत को कर्तव्य तथा धर्म पालन के लिए कई प्रकार से उपदेश देकर आश्वस्त किया। कहा, गुरु की कृपा सूर्य कुल की रक्षा करने में उनकी सहायक होगी। गुरु का अनुग्रह वन में स्वयं उनका भी रक्षक होगा। साधक को आज्ञा पालन रूपी साधना से ही सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। श्री राम की स्नेह सिक्त वाणी सुनकर भरत को परम संतोष हुआ। स्वामी के अनुकूल होते ही उनका दुख, दोष बोध, विषाद सभी मिट गए। वचन मात्र से उन्हें श्री राम के साथ वन प्रवास तथा जगत में जन्म लेने का लाभ प्राप्त हो गया। 14 वर्षों की लंबी अवधि बिताने के लिए कोई अवलंब तो चाहिए ही, और फिर श्री राम के राजतिलक के लिए सभी तीर्थों का जल ले आए थे, उसका क्या करना है? इस संबंध में भी स्वामी की आज्ञा अपेक्षित है।

में ये भी अभिलाषा है कि चित्रकूट के सभी पवित्र स्थल, वन, पशु पक्षी, नदी सरोवर, निर्झर और पर्वत समूह सबका दर्शन कर लें, विशेष रूप से उन स्थलों का जो श्री राम चरणों से अंकित हैं। मंगलमूल भरत तथा श्री राम का संवाद सुनकर देवगण धरती पर कल्पवृक्ष के फूलों की वर्षा करने लगे।

श्री रामचरित मानस गान आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सुबह के 6:50 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सुहानी। 8:30 का समय है गांधी चर्चा का और 8:45 पर आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम हिम गुंजन। 9:10 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। 10:00 इस कार्यक्रम में फिल्म संगीत का आनंद उठाइए। सुबह 10:30 का समय है लोकगीतों के कार्यक्रम पहाड़ों के सुर का। जय हिंद गीतमाला ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 11:05 पर और 11:30 का समय रहेगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। आकाशवाणी शिमला से

ये प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे सुबह 9:50 पर, 11 बजे, दिन में 3 बजे, शाम 6 बजे और शाम 7:45 पर। समाचार प्रभात 8 बजे, मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर, समाचार संध्या 8:45 पर और न्यूज एट 9 रात 9 बजे आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी।

0: सैनिकों के लिए। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 12 बजे और दोपहर 12:30 पर। बहनों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा सुनो सखी। विविध भारती के कार्यक्रम दिन में 1:10 से आकाशवाणी मुंबई से रिले किए जाएंगे। भजन प्रसारित करेंगे 5:10 पर और 5:25 का कार्यक्रम युवा मंच का समय है और आज ये कार्यक्रम आधारित है फिल्मी फ्राइडे पर। सदाबहार गीतों का आनंद उठाइए कार्यक्रम सुरमई सांझ में, समय रहेगा 6:05। 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मौजा गराई दिया और 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम खेती बाड़ी। मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस रात्रि 8 बजे और रात 8:30 पर हम प्रसारित करेंगे देशभक्ति गीत। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम सुनिएगा रात 9:15 पर। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे आशिकी फिल्म के कुछ नगमे। रात्रि 9:30 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम कारवां सुरों का बॉलीवुड बीट्स। ये कार्यक्रम सुनिएगा रात 10 बजे और रात 10:30 का समय है कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। तो ये था कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में, 7 बजे हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: श्रोयंताम प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां महिला बाल विकास विभागीय शिखर सम्मेलनस्य समापन सत्रे सहभागं करिष्यति। ह्यः आरब्धे अस्मिन् द्विदिवसीय सम्मेलने सर्वेषां राज्यानां महिला बाल विकास क्षेत्रैः सम्बद्धानां राजनीतिक नेतृणां अधिकारिणां च सहभागिता भवति। प्रधानमन्त्रिणा परिकल्पितानां विभागीय शिखर सम्मेलनानां शिखायाः इदं द्वितीयं सम्मेलनमस्ति। अस्य सम्मेलनस्य उद्देश्यं सहकारी संघव्यवस्थायाः सुदृढीकरणं, राष्ट्रिय प्राथमिकतानां पूर्तये सामूहिक दायित्व भावनायाः प्रवर्धनं तथा केन्द्र राज्ययोः परस्पर सहकारेण कार्य परिणामानां त्वरित साधनमस्ति। सम्मेलने चतुर्षु प्रमुख विषयेषु ध्यानं केन्द्रितमस्ति: पोषणं, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलानां सुरक्षा सशक्तीकरणञ्च। वस्तु सेवाकर परिषदा नवदिल्ल्यां सम्पन्ने स्वकीयस्य 57वें उपवेशने करदातृभ्यः अनुपालन प्रक्रियां सरलीकर्तुं विविधाः उपायाः अनुमोदिताः। एतेषु निर्णयेषु वस्तु सेवाकर व्यवस्थायाः अन्तर्गतं कराधिकारिणां निगडीकरणं, अधिकाराणां निरसनं तथा अभियोजनस्य सीमायाः 1 कोटिरूप्यकेभ्यः 5 कोटिरूप्यकाणि यावत् वर्धनं सम्मिलिताः सन्ति। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रिय राजधान्यां नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन्ती एतस्य घोषणाम् अकरोत्। प्रत्येकस्मिन् प्रकरणे दण्डस्य निर्धारणं, सः अर्थदण्डः भवतु

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। इसमें सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र के जुड़े अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किए जा रहे विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में यह दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना बढ़ाना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद के अनुमोदित कर सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि ये सुधार जीएसटी को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप किए गए हैं। सरकार ने गैर अनुसूचित कैंसर की दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लगाए जाने वाले लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। यह अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को आशा व्यक्त की कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी। इससे कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल किए जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। योग्य उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जेआरएफ, सहायक प्रोफेसर या पीएचडी के लिए वेबसाइट ugcnet.nta.nic पर लॉगिन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है। परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को अप्रैल से सितंबर के बीच भारत के जैविक संसाधनों का उपयोग करने वालों से 9,68,00,000 रुपए मिले हैं। ये राशि पहुंच और लाभ साझाकरण यानी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि कुल प्राप्त राशि में से 9,56,00,000 रुपए विभिन्न क्षेत्रों में जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए प्राप्त हुए। सबसे अधिक 7,16,00,000 रुपए कृषि बीज क्षेत्र से प्राप्त हुए।

0: दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के उनके फार्म हाउस नानाची वाड़ी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशिष्ट योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने 8 प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर रोक लगाने की घोषणा की है। इनमें भारतीय कंपनियां इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल के अलावा कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब शामिल हैं। अमेरिका के श्रम मंत्री कीत सोडरलिंग ने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ संघीय जांच के बाद यह कदम उठाया गया। हुती विद्रोहियों ने कल सऊदी अरब पर नए मिसाइल हमले करने का दावा किया। इन हमलों में रियाद का किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नजरान हवाई अड्डा और खमिस मुशैत स्थित एक एयरबेस निशाने पर थे। हुती विद्रोहियों ने कर्मचारियों को सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और हवाई अड्डों से दूर रहने की चेतावनी दी। इस बीच रियाद में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर घरों के अंदर रहने की अपील की है। प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की 24 घंटों सातों दिन उपलब्ध हेल्पलाइन भी चालू है। इसका टोल फ्री नंबर है 800-2471-234। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रीको गुंजी को हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will participate in the valedictory session of Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi today. The two-day Departmental Summit, which began yesterday, is witnessing participation of political leadership and officials dealing with the women and child development sector from all states. It is the second in the series of Departmental Summits envisioned by the Prime Minister to strengthen cooperative federalism, foster collective ownership of national priorities, and accelerate outcomes through closer state collaboration. The GST Council, during its 57th meeting in New Delhi, approved a series of measures to ease compliance for taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and raising the threshold of prosecution from 1 crore to 5 crore rupees. Finance Minister Nirmala Sitharaman made the announcement while addressing the media in national capital. The punishment, whether a fine, imprisonment or both, will be left to judicial discretion in each case. A taxpayer who files a return late, makes a mistake or falls behind on payment will face recovery proceedings, interest and proportionate penalty. Prime Minister Narendra Modi has welcomed the new round of GST reforms approved by the GST Council yesterday. In a social media post, the Prime Minister said that the Council's recommendations on removal of arrest provisions, greater decriminalisation and simpler procedures will have a very positive impact. Mr. Modi said that the focus is on faster decisions, lower compliance costs, automated refunds and trust-based administration. He added, these reforms are in line with constant efforts of the government to make GST more efficient, transparent and citizen-friendly. Government has approved a cap on the margins charged for the supply and sale of non-scheduled anti-cancer drugs, limiting them to 30% of the maximum retail price. The Ministry of Chemicals and Fertilizers expect this measure to reduce medicine prices by up to 70%, helping cancer patients save 2,500 crore annually. 4 CRPF personnel were injured in an accident while defusing explosives in Sukma district of Chhattisgarh yesterday. More details from our correspondent.
2: Maoist had planted several improvised explosive devices at various locations in the interior and remote areas of Bastar Division in Chhattisgarh. Security forces are carrying out a continuous operation to defuse these explosives. Yesterday, near Bhodrajpada Nala, close to

0: सुबह सुहानी।
1: नौ अक्टूबर की इस ठंडी ठंडी सुहानी सभा में आप सभी सुनने वालों को वंदना रैना का प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जी श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी धर्मशाला, और धौलाधार की खूबसूरत वादियों से टकराकर जो ताज़ी हवा इस समय आ रही है वो सीधे हमारे दिलों को छू रही है। और अगर आप भी खिड़की से बाहर इन हसीन पहाड़ों को निहार रहे हैं तो श्रोताओ, यकीन मानिए कि आप दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह पर हैं। और आज के स्पेशल सुबह सुहानी कार्यक्रम में पहाड़ों की ताजगी के साथ साथ हम बातें करेंगे ज्ञान की, इतिहास की, देश दुनिया के समाचारों की, और साथ ही बेहतरीन गानों का कारवां भी साथ में सजेगा। तो रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि धर्मशाला की वादियों में आज सुरों का जादू बिखरने वाला है। और आप बने रहिए मेरे साथ यानी वंदना रैना के साथ, और सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

जी श्रोता, धौलाधार के इन हसीन वादियों में जब सुबह की धूप बिखरती है तो दिल अपने आप शांत हो जाता है। और चलिए इसी सुकून के साथ हम रुक करते हैं आज के सुविचार की ओर, जो आज हमारे दिन को एक नई दिशा देगा। श्रोता, किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब चल रहे होते हैं। और बदलाव ही समय का नियम है, इसलिए बस मुस्कुराइए और मेहनत करते रहिए। जी श्रोताओं, कितनी सच्ची बात है ना, पहाड़ हमें यही तो सिखाते हैं, रास्ता चाहे कितना भी पथरीला क्यों ना हो, चढ़ाई वाला क्यों ना हो, अगर हौसला पक्का है तो इंसान हर चोटी को फतेह कर लेता है। आज जब आप अपने काम पर निकलें तो दिल में ये उम्मीद लेकर जाएं कि हर नया दिन अपने साथ एक नया सवेरा और नई संभावनाएं लेकर आता है। मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी एक मुस्कान किसी के दिन को और भी खूबसूरत बना सकती है, रोशन कर सकती है।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: सर 5,000 रूपए लगाइए और 8,000 रूपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
3: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
4: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
3: आपका साइबर रक्षक।
0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
5: जी श्रोताओ, आपने ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। तो चलिए श्रोताओ, अब समय हो चला है वक्त के पहिए को थोड़ा सा पीछे घुमाने का और इतिहास की डायरी के पन्ने पलटने का। जी हाँ, अब बात करेंगे आज यानी कि 9 अक्टूबर के दिन इतिहास में क्या कुछ खास दर्ज है। चलिए बात करते हैं आज विशेष की। साल 1962 से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो आज ही के दिन युगांडा ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी और गणतंत्र देश बना था। साल 1963 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सैफुद्दीन किचलू का निधन हुआ। वे पहले भारतीय थे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय

में शांति के लिए लेनिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आज ही के दिन वर्ष 1970 में मुंबई के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में यूरेनियम 233 का उत्पादन हुआ था। साल 1976 की अगर हम बात करें तो मुंबई और लंदन के बीच संपर्क के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय डायरेक्ट डायलिंग टेलीफोन सेवा की शुरुआत हुई 9 अक्टूबर को। और देश में निर्मित पहला तेल टैंकर मोतीलाल नेहरू भारतीय जहाज रानी निगम को सौंपा गया 9 अक्टूबर सन 1990 को, और इसका निर्माण किया कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने। और साल 1991 में सुमो पहलवानी के 1500 बरस के इतिहास में पहली बार जापान से बाहर इसका आयोजन किया गया। ब्रिटेन में लंदन के प्रसिद्ध रॉयल एल्बर्ट हॉल में जापान फेस्टिवल के अंतर्गत इस पहलवानी स्पर्धा का आयोजन किया गया था। और श्रोताओं, आज ही के दिन साल 1997 में इटली के लेखक डाटियो फोको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और साल 2004 में आज ही के दिन अफगानिस्तान के इतिहास में पहली बार लोगों ने अपनी पसंद का राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान में हिस्सा लिया, और इस चुनाव में हामिद करजई विजयी रहे। और श्रोताओं, जानकारियों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले आपका मनोरंजन करवाएंगे इस गीत के साथ।

0: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
1: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
0: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
1: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
0: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
1: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
0: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
1: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
2: लड़ी हक की लड़ाई,
1: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जी श्रोता, इस वक्त आपने ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र, और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त वंदना रैना आपके साथ। जी श्रोताओ, आज है 9 अक्टूबर यानी कि विश्व डाक दिवस।

0: जी श्रोताओ, एक ज़माना था जब डाकिया सिर्फ चिट्ठियां लाता था, लेकिन आज का डाकघर पूरी तरह से बदल चुका है। और इसी बदलाव और डाक विभाग की कुछ बेहद खास सुविधाओं के बारे में जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे शहर के डाक मंडल धर्मशाला के डाकघर विभाग के अधीक्षक रविंद्र कुमार जी को। हेलो।
1: हेलो
0: जी रविंद्र जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज जैसा कि हम अपने श्रोताओं को बता चुके हैं कि विश्व डाक दिवस है, तो सबसे पहले आपको इस दिन की ढेरों शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद
0: जी। और रविंद्र जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि विश्व डाक दिवस का क्या महत्व है और ये कैसे मनाया जा रहा है?
1: सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है
0: जी।
1: अंतर्राष्ट्रीय डाक व्यवस्था में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है वो बहुत बड़ी व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है
0: जी जी।
1: इसके अंतर्गत ही पूरे विश्व में डाक का आना जाना, वितरण आदि आयोजित किया जाता है। इस दिवस को मनाने के लिए 9 अक्टूबर 1969 को टोक्यो में आयोजित कांग्रेस सम्मेलन में निर्णय लिया गया था
0: जी। और जैसा कि रविंद्र जी हमने सुना है कि हर दिवस जो है, जो भी विश्व स्तर पे मनाया जाता है, वो किसी न किसी थीम पर आधारित होता है, तो क्या आप बताएंगे कि साल 2026 का विश्व डाक दिवस का थीम क्या है?
1: वर्ष 2026 विश्व डाक दिवस का जो विषय वस्तु है वो एक डाक नेटवर्क असीमित संभावनाएं है
0: जी। और रविंद्र जी, एक बात और है कि आज के समय में जब दुनिया बहुत छोटी हो गई है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारतीय डाक विभाग हमें दुनिया के दूसरे देशों से किस तरह जोड़ता है और क्या हम विदेशों में भी आसानी से पार्सल भेज सकते हैं?
1: जी हाँ, भारतीय डाक विभाग अपने

0: 1,65,000 पोस्ट ऑफिस के द्वारा विश्व के सभी देशों को अपनी डाक सेवाएं उपलब्ध करवाता है
1: जी।
0: कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी डाकघर से विश्व के किसी भी देश के लिए स्पीड पोस्ट या पार्सल आसानी से भेज सकता है।
1: जी जी, और ये तो वाकई ग्लोबल कनेक्टिविटी हुई। और आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि लोगों को लगता है कि पोस्ट ऑफिस जाना जो है वो बहुत समय का काम है, तो क्या आप बताएंगे कि डाक विभाग के पास भी कोई ऐसी योजना है जिससे हमें घर बैठे ही कुरियर बुक करने की सुविधा मिल सके?
0: जी हाँ, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डाक विभाग ने गत वर्ष से कस्टमर सेल्फ सर्विस शुरू की है, जिसमें ग्राहक या आपके श्रोता या कस्टमर कोई भी अपना जो स्पीड पोस्ट है, पार्सल है
1: जी,
0: कस्टमर सेल्फ सर्विस के माध्यम से अपने घर में बैठे ही बुक कर सकता है
1: जी।
0: उस आर्टिकल को लेने के लिए डाक विभाग का कर्मचारी उनके घर आएगा और ले जाएगा
1: जी।
0: आपके श्रोताओं को मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि अगर 500 रुपए से अधिक डाक प्रभार है तो जो पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी है बिना किसी अतिरिक्त फीस के वो उस आर्टिकल को ले जाएगा और वितरण होगा नॉर्मल तरीके से।
1: जी, ये तो बहुत खूब बात है, क्योंकि इससे पहले हम सिर्फ ये सुनते थे कि डाकिया डाक लाया, लेकिन अब तो ये बात सच हो गई कि डाकिया घर आकर डाक भी ले गया।
0: बिल्कुल जी हाँ, ये लोगों के लिए बहुत ही सुविधाजनक है, इसमें समय भी बचता है और लोग अपनी इच्छा अनुसार कभी भी बुक कर सकते हैं
1: जी। और घर बैठे ही इंटरनेशनल लेवल की कुरियर सर्विस मिलना वाकई हम सबके लिए बड़ी राहत की बात है। तो हर तरह का सामान हम इस कुरियर सेवा के माध्यम से भेज सकते हैं क्या?
0: बिल्कुल, इसमें आप अपना स्पीड पोस्ट में डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, पार्सल भेज सकते हैं, और आप जो किसी खाद्य सामग्री है वो भेज सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो भेज सकते हैं।
1: जी जी, और विश्व डाक दिवस का ये अवसर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और रविंद्र जी इस समय लाखों श्रोता आपको सुन रहे हैं, तो आप उन्हें आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं से आग्रह करता हूँ कि भारतीय डाक विभाग की सस्ती विश्वसनीय सेवाओं का प्रयोग करें और इसका लाभ उठाएं और अपना स्पीड पोस्ट पार्सल विश्व के किसी भी कोने के भेजने के लिए प्रयोग करें।
1: जी रविंद्र जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद, और विश्व डाक दिवस की एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं।
0: आपके श्रोताओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद।
1: जी, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी श्रोता, और हम भी आपको बता दें कि विश्व डाक दिवस का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन, व्यापार और सामाजिक आर्थिक विकास में डाक क्षेत्र की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और इसके साथ ही 9 अक्टूबर से पूरे सप्ताह यानी कि अगले पूरे 7 दिनों के लिए नेशनल पोस्टल वीक के रूप में ये सप्ताह मनाया जाता है। और इसके साथ ही आज के दिन विशेष डाक प्रदर्शनियाँ आयोजित की जाएंगी और पत्र लेखन प्रतियोगिताएँ भी करवाई जाती हैं, ताकि डिजिटल युग में भी चिट्ठी और डाक के महत्व को लोग समझें।

कार्यक्रम सुबह सुहानी में श्रोताओं एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और आपने ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी धर्मशाला। और श्रोताओं हम आपको बता दें कि आज के दिन यानी 9 अक्टूबर को पंडित गोप बंधु दास की जयंती भी मनाई जाती है और उनका जन्म हुआ था 9 अक्टूबर सन 1877 को ओडिशा में। वे आधुनिक ओडिशा के निर्माता, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, कवि और पत्रकार थे और वर्ष 1909 में उन्होंने गुरुकुल परंपरा पर आधारित सत्यवादी वन विद्यालय की स्थापना की थी और साल 1919 में द समाज समाचार पत्र की भी शुरुआत की थी। लोगों के प्रति उनके निस्वार्थ सेवा और समर्पण को देखते हुए उन्हें उत्कल मणि की उपाधि से भी नवाजा गया था और उन्हें ओडिशा का गांधी भी कहा जाता है। और आज के दिन वह राज्य में उनकी निस्वार्थ सेवा भावना को याद करके श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। इसके साथ श्रोताओं, हिंदी सिनेमा के बेहद लोकप्रिय अद्भुत संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन की आज पुण्यतिथि है। जन्म से नेत्रहीन होने के बावजूद उन्होंने संगीत जगत को कई अमर धुने, भजन, सदाबहार गीत दिए और अपने करियर की शुरुआत की साल 1970 के दशक में फिल्म सौदागर से। उनके संगीत से सजी प्रमुख फिल्में हैं चोर मचाए शोर, गीत गाता चल, चित चोर, अखियों के झरोखों से, नदिया के पार और राम तेरी गंगा मैली। दूरदर्शन के प्रतिष्ठित धारावाहिक रामायण के संगीत और भजनों ने उन्हें अमर कर दिया और संगीत के क्षेत्र में रविंद्र जैन के योगदान के लिए उन्हें साल 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो चलिए कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं यशुदास की आवाज में फिल्म चित चोर से, और इस गीत को लिखा और संगीतबद्ध किया रविंद्र जैन ने।

0: और श्रोताओ, हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रादेशिक सेना दिवस। और साल 1949 को स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने प्रादेशिक सेना यानी कि टेरिटोरियल आर्मी का उद्घाटन किया था। और भारतीय सेना के बाद इसे राष्ट्र की सुरक्षा की दूसरी पंक्ति माना जाता है और इसका आदर्श वाक्य है सावधानी शूरता। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव, सांसद अनुराग ठाकुर, अभिनव बिंद्रा जैसी जानी मानी हस्तियां टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा रह चुकी हैं और साल 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में भी प्रादेशिक सेना ने कंधे के साथ कंधा मिलाकर देश की सेना का साथ दिया था। और आज का दिन उन स्वयं सेवकों नागरिकों को के जज्बे को सलाम करने का है जो देश सेवा के लिए अपने नियमित कामों के साथ साथ वर्दी पहनने का गौरव भी रखते हैं।
1: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
2: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
3: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
4: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
3: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
4: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
3: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
4: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
3: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
4: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम, आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
5: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
2: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
3: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
4: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
3: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
4: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
3: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
4: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
3: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
4: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम, आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
5: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रोताओ, आपने ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। और कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है आज यानी कि 9 अक्टूबर के दिन देश दुनिया के मुख्य समाचारों के बारे में जानने का। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज अपने कार्यक्रमों को छोड़कर नई दिल्ली पहुंच गए हैं और इसके साथ ही हिमाचल सरकार सार्वजनिक परिवहन को ग्रीन फ्यूल पर ले जाने की बड़ी तैयारी में है। HRTC के बेड़े में जल्दी ही 1500 नई ई बसें जोड़ी जाएंगी।

जिसके साथ ही 100 ग्रीन हाइड्रोजन बसें और 100 सुपर डिलक्स बसें खरीदने का भी फैसला लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का हिमाचल प्रदेश का 3 दिवसीय दौरा संपन्न हो गया है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने अपनी हालिया नीतिगत समीक्षा में रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए हैं, जिससे आने वाले समय में लोन की किस्तें यानी कि EMI महंगी होने के संकेत मिल रहे हैं। मिडल ईस्ट संकट के बीच मिसाइल हमलों के खतरों को देखते हुए एयर इंडिया और इंडिगो जैसी प्रमुख एयरलाइनों ने रियाद जाने वाली अपनी उड़ानों को रद्द कर दिया है या फिर उनके रूट में बदलाव कर दिया है। और मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आज 9 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते धर्मशाला, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, मंडी और सोलन में गरज के साथ आंधी और भारी बारिश का येलो अलर्ट है। लाहौल स्पीति और ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी की भी संभावना है, हालांकि 10 अक्टूबर से मौसम पूरी तरह से साफ होने की उम्मीद है। तो श्रोताओ, ये थी आज सुबह की ताजा सुर्खियां। आप सब अपना ख्याल रखिए, छाता लेकर निकलिए और सुनते रहिए FM धर्मशाला।

0: जी श्रोताओ, वक्त पंख लगाकर उड़ता है और अब समय आ गया है इस शो को समेटने का। लेकिन जाने से पहले एक बहुत दिलचस्प सी बात आपको हम बताते जाते हैं। तो श्रोताओ, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां आज भी चिट्ठियां पहुंचाने के लिए अंडरवाटर पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल होता है? जी हाँ, प्रशांत महासागर में स्थित वानुआतु देश में दुनिया का एकमात्र अंडरवाटर पोस्ट ऑफिस है जहां गोताखोर पानी के अंदर जाकर वाटरप्रूफ पोस्ट कार्ड पोस्ट करते हैं। तो है ना कितनी कमाल की बात। तो आप भी अगर कभी वहां जाएं तो पानी के अंदर से अपनों को चिट्ठी लिखना बिल्कुल ना भूलें। और इसी मजेदार जानकारी के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा। सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान ही इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है।
1: सुबह सुहानी।
0: सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सुबह के 8 बजे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार।
2: मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% की गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए, भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास विभाग क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके साथ ही बेहतर कार्य प्रणालियों को साझा करने, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान तलाशने और सुशासन तथा सेवा वितरण में सुधार के लिए समयबद्ध कार्रवाई पर सहमति बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद के अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। उन्होंने कहा कि ये सुधार जीएसटी को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के देश सेवा मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये यात्रा निरंतर जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण की मिसाल के साथ आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी सोच से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। आज हम विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि कैसे त्रिपुरा में आकांक्षी जिलों और जीवंत गांवों की योजनाओं के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कार्य रूप में परिवर्तित किया गया है।
4: नीति आयोग के आकांक्षी जिला अभियान के तहत त्रिपुरा के धलाई जिले में उल्लेखनीय

0: अलावा आया है मातृ स्वास्थ्य सेवाओं, प्राथमिक शिक्षा, बच्चों की सीखने के स्तर, सूक्ष्म सिंचाई और ग्रामीण सड़कों की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान देने से जिले के सामाजिक और आर्थिक विकास में लगातार सुधार हुआ है। वास्तविक समय में प्रदर्शन की रैंकिंग और बेहतर काम के लिए प्रोत्साहन ने धलाई को देश के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल होने में सहायता की है। ये इस बात का उदाहरण है कि आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बनाने और स्थानीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने से जनजातियों पिछड़े क्षेत्रों में भी विकास को गति दी जा सकती है। बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा की 856 किलोमीटर लंबी सीमा पर आकांक्षी जिला अभियान सीमावर्ती गांवों की तस्वीर बदल रहा है। आधुनिक डिजिटल नेटवर्क, हर मौसम में उपयोग होने वाली सड़कें, पाइप से जलापूर्ति और सौर ऊर्जा जैसी सुविधाओं से बुनियादी ढांचे की कमियां दूर हो रही हैं। स्थानीय हथकरघा, पर्यावरण, पर्यटन और सीमा पार व्यापार को बढ़ावा मिलने से कारोबार के नए अवसर मिल रहे हैं और पलायन रोकने में सहायता मिल रही है। इससे सीमावर्ती समुदाय मजबूत हो रहे हैं। ऋषिमुख पंचायत समिति के अध्यक्ष हमें बताते हैं,
1: दूर दराज गाँव में भी आज 4G 5G मोबाइल पूरी सेवा, हर मौसम में चलने के लिए पक्के सड़कें, पीने का पानी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर, पक्के शौचालय, सौर विद्युत, गांव के युवा लोगों के लिए स्किल इंडिया के माध्यम से प्रशिक्षण और गांव के महिला लोगों के लिए रसोई का गैस उपलब्ध कराने जैसा काम हो रहा है। मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्थानीय सीमांत पर्यटन और हैंडलूम आधारित समूहों को भी सहायता देने जैसा काम हो रहा है।
0: कि ये दोनों केंद्रीय योजनाएं मिलकर त्रिपुरा के दूरदराज के अंदरूनी इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की खाई को पाट रही हैं। एक ओर पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है तो दूसरी ओर सीमावर्ती गांवों में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दूरदराज के गांवों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों तक हर नागरिक राज्य की विकास यात्रा में भागीदार बने। अगरतला से आदित्य दत्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
2: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में गढ़खटंगा में भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में कई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इनमें प्रशासनिक भवन, बिरसा मुंडा बहुउद्देशीय हॉल, जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर और अगली पीढ़ी के जैव प्रजनन सुविधा केंद्र शामिल हैं। उन्होंने संस्थान में एक नए अतिथि गृह की आधारशिला भी रखी। इस परियोजना पर 119 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: जालिम लोशन,
4: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन।
3: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग जालिम लोशन।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये सीमा अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। एक रिपोर्ट।
2: रसायन और उर्वरक मंत्रालय को आशा है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी और कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। ये नया निर्णय लाभ प्रतिशत सीमित करने, गैर अनुसूचित कैंसर दवाओं को भी मूल्य संरक्षण प्रदान करेगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। इससे पहले फरवरी 2019 में सरकार के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण ने 42 चुनिंदा गैर सूचीबद्ध कैंसर की दवाओं पर लाभ प्रतिशत सीमित किया था, जिससे उन दवाओं के एमआरपी में 91% तक की कमी आई थी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। इनमें पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर, तमिलनाडु की मधुरंतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीटों के साथ असम की नगांव लोकसभा सीट भी शामिल है। इन सीट पर मतदान मंगलवार को हुआ था। पुदुचेरी में थट्टन चावड़ी विधानसभा में डाक मतपत्रों की गिनती से मतगणना की शुरुआत हुई। इसके बाद सवेरे

0: 8 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। शुरुआती रुझान सवेरे 9:30 बजे तक आने की संभावना है। उधर तमिलनाडु में मदुरंतकम विधानसभा क्षेत्र में 27 तथा धारापुरम विधानसभा सीट पर 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार के लिए पहला उपचुनाव है। हुती विद्रोहियों ने कल सऊदी अरब पर मिसाइल हमले करने का दावा किया है। इन हमलों में रियाद का किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नजरान हवाई अड्डा और खमिस मुशैत स्थित एक एयरबेस निशाने पर थे। एक रिपोर्ट।
1: हुती विद्रोहियों ने कर्मचारियों को सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और हवाई अड्डों से दूर रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने इन ठिकानों को संभावित निशाना बताया। इसके जवाब में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया। इन हमलों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा सहित कई विमानन कंपनियों ने रियाद के लिए अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी हैं। संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, मिस्र, कुवैत और बहरीन ने इन हमलों निंदा की है। इस बीच रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर घरों के अंदर रहने की अपील की है। प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हेल्पलाइन सेवा भी चालू है। इसका टोल फ्री नंबर है 800-2471-234। दुबई से मनीष शिवा झोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के ने 8 प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इनमें भारतीय कंपनियां इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एससीएल के अलावा कॉग्निजेंट, कैंप जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब शामिल हैं। अमेरिका के श्रम मंत्री कीथ सोडरलिंग ने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ जारी संघीय जांच के बाद यह कदम उठाया गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका केवल असाधारण प्रतिभा वाले विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवर्जन कार्यक्रमों का इस्तेमाल अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशी पेशेवरों के आवेदनों पर विचार करते समय आवर्जन अधिकारियों को 2 कसौटियों पर ध्यान देना होगा। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में रात करीब 11:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। नाना पाटेकर का पार्थिव शरीर पुणे हवाई अड्डे पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार ने श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार के दौरान फिल्म जगत की कई हस्तियां भी उपस्थित थीं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच 7:00 बजे से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु का सामना थाईलैंड की रत्चानोक इंतानोन से होगा। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में कल जापान की रीको गुंजी को हराया था। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। उत्तराखंड में आज देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की आशंका है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दिए गए वक्तव्य को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी का आह्वान, साइबर सुरक्षा पर साथ आएं, दुनिया के देश ठगी होने से पहले ही रोकने वाला तंत्र बनाएं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डीप फेक रोकने के लिए साथ आएं देश और कंपनियां। अमर उजाला के अनुसार मोदी बोले, 5,00,000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी रोकी तभी हो रहा मेरा विरोध। पंजाब केसरी के मुताबिक जिनके मुफ्त की कमाई बंद हुई चीखते चिल्लाते रहे। दैनिक जागरण के अनुसार जीएसटी अधिकारियों से छिन गई गिरफ्तारी की शक्तियां, जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटे कारोबारियों को राहत। अमर उजाला लिखता है, अब कोर्ट के आदेश पर ही गिरफ्तारी, 10,000 रुपए से कम के मामलों में नोटिस नहीं। वन नेशन वन टैक्स पर विचार, ऑनलाइन सामान महंगा, मांगना होगा सस्ता। जनसत्ता का शीर्षक है,

गांधी चर्चा में आप सुना करते हैं महात्मा गांधी द्वारा लिखित सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा से वाचन। आज प्रस्तुत है दूसरे भाग का 26वां अध्याय, राजनिष्ठा और शुश्रूषा। राजनिष्ठा की तरह शुश्रूषा का गुण भी मुझ में स्वाभाविक था। यह कहा जा सकता है कि बीमारों की सेवा करने का मुझे शौक था, फिर वे अपने हों या पराए। राजकोट में मेरा दक्षिण अफ्रीका का काम चल रहा था, इसी बीच मैं बंबई हो आया। खास खास शहरों में सभाएं करके विशेष रूप से लोकमत तैयार करने का मेरा इरादा था, इसी ख्याल से मैं वहां गया था। पहले मैं न्यायमूर्ति रानडे से मिला। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी और मुझे सर फिरोज शाह मेहता से मिलने की सलाह दी। बाद में मैं जस्टिस बदरुद्दीन तैयब जी से मिला। उन्होंने मेरी बात सुनकर वही सलाह दी और कहा, जस्टिस रानडे और मैं आपका बहुत कम मार्गदर्शन कर सकेंगे। हमारी स्थिति तो आप जानते हैं, हम सार्वजनिक काम में हाथ नहीं बटा सकते, पर हमारी भावना तो आपके साथ है ही। सच्चे मार्गदर्शक तो सर फिरोज शाह हैं। सर फिरोज शाह से तो मुझे मिलना ही था, पर इन दो गुरुजनों के मुंह से उनकी सलाह के अनुसार चलने की बात सुनकर मुझे इस बात का विशेष बोध हुआ कि सर फिरोज शाह का जनता पर कितना प्रभुत्व था। मैं सर फिरोज शाह से मिला। उनके तेज से चकाचौंध हो जाने को तो मैं तैयार था ही, उनके लिए प्रयुक्त होने वाले विशेषणों को मैं सुन चुका था। मुझे बंबई के शेर और बंबई के बेताज के बादशाह से मिलना था, पर बादशाह ने मुझे डराया नहीं। पिता जिस प्रेम से अपने नौजवान बेटे से मिलता है, उसी तरह वे मुझसे मिले। उनसे मुझे उनके चैम्बर में मिलना था। उनके पास अनेक अनुयायियों का दरबार तो भरा ही रहता था। वाच्छा थे, कामा थे, इनसे उन्होंने मेरी पहचान कराई।

वाच्छा का नाम मैं सुन चुका था। वे सर फिरोज शाह के दाहिने हाथ माने जाते थे। वीरचंद गांधी ने अंकशास्त्री के रूप में मुझे उनका परिचय दिया था। उन्होंने कहा, गांधी, हम फिर मिलेंगे। इस सारी बातचीत में मुश्किल से 2 मिनट लगे होंगे। सर फिरोज शाह ने मेरी बात सुन ली। न्यायमूर्ति रानडे और तैयब जी से मिल चुकने की बात भी मैंने उन्हें बतला दी। उन्होंने कहा, गांधी, तुम्हारे लिए मुझे आम सभा करनी होगी। मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। फिर अपने मुंशी की ओर मुड़े और उसे सभा का दिन निश्चित करने को कहा। दिन निश्चित करके मुझे विदा किया। सभा से 1 दिन पहले आकर मिलने की आज्ञा की। मैं निर्भय होकर मन ही मन खुश होता हुआ घर लौटा। बंबई की इस यात्रा में मैं वहां रहने वाले अपने बहनोई से मिलने गया। वे बीमार थे। घर में गरीबी थी। अकेली बहन से उनकी सेवा शुश्रूषा हो नहीं पाती थी। बीमारी गंभीर थी। मैंने उन्हें अपने साथ राजकोट चलने को कहा। वे राजी हो गए। बहन बहनोई को लेकर मैं राजकोट पहुंचा। बीमारी अपेक्षा से अधिक गंभीर हो गई। मैंने उन्हें अपने कमरे में रखा। मैं सारा दिन उनके पास ही रहता था। रात में भी जागना पड़ता था। उनकी सेवा करते हुए मैं दक्षिण अफ्रीका का काम कर रहा था। बहनोई का स्वर्गवास हो गया, पर उनके अंतिम दिनों में उनकी सेवा करने का अवसर मुझे मिला। इससे मुझे बड़ा संतोष हुआ। शुश्रूषा के मेरे इस शोक ने आगे चलकर विशाल रूप धारण कर लिया। वह भी इस हद तक कि उसे करने में मैं अपना धंधा छोड़ देता था। अपनी धर्मपत्नी को और सारे परिवार को भी उसमें लगा देता था। इस वृत्ति को मैंने शोक कहा है, क्योंकि मैंने देखा है कि जब ये गुण आनंददायक हो जाते हैं तभी निभ सकते हैं। खींच तान कर अथवा दिखावे के लिए या लोक लाज के कारण की जाने वाली सेवा आदमी को कुचल देती है, और ऐसी सेवा करते हुए भी आदमी मुरझा जाता है। जिस सेवा में आनंद नहीं मिलता वह ना सेवक को फलती है ना सेव्य को रुचिकर लगती है। जिस सेवा में आनंद मिलता है उस सेवा के सम्मुख ऐश आराम या धनोपार्जन इत्यादि कार्य तुच्छ प्रतीत होते हैं।

0: छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सावधान, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, नेवला या किसी भी जानवर के काटने को कभी हल्के में न लें। रेबीज का वायरस जानवर की लार से फैलता है और समय पर इलाज न मिले तो जानलेवा साबित हो सकता है।
4: घाव को तुरंत बहते पानी के नीचे साबुन से झाग बनाकर पूरे 15 मिनट तक धोए, फिर एंटीसेप्टिक या स्पिरिट लगाएं। इससे रेबीज का वायरस नष्ट हो जाता है।
3: फिर बिना देर किए नजदीकी सरकारी अस्पताल जाएं। रेबीज से बचाव का टीका सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है।
4: रेबीज जानलेवा है, लेकिन समय पर टीकाकरण से बचाव संभव है।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: श्रोताओं, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए, प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम हिमगुंजन।

0: अनजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: पापा जल्दी आओ, मुझे सांप ने काट लिया।
2: घबराने की कोई बात नहीं, 70% सांप जहरीले नहीं होते।
3: फिर भी जहरीले सांप के घाव को ना धोएं, ना काटें, ना चूसें, ना हिलाएं। तुरंत 108 नंबर पर एम्बुलेंस सहायता के लिए संपर्क करें।
4: सांप को ढूंढने या मारने में या तांत्रिक के पास जाने में समय ना गवाएं। अस्पताल पहुंचने में देरी जानलेवा हो सकती है। याद रखें, अगर सुबह उठते ही दिल मचले, उल्टी हो, पेट में दर्द हो, तो ये ग्रेट सांप के काटने से हो सकता है, जिसके काटने के निशान कई बार दिखाई नहीं देते। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
5: डायबिटीज यानी मधुमेह या शुगर रोग एक खतरनाक बीमारी है।
6: इसमें बार बार पेशाब आना, थकावट महसूस होना, ज्यादा भूख लगना इत्यादि इसके लक्षण हैं। इसका शुरुआत में ही पता लगाना बहुत जरूरी है।
7: प्रदेश के हर स्वास्थ्य उपकेंद्रों में शुगर की मुफ्त जांच का प्रावधान है, अतः आप तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी शुगर की जांच करवाएं और अपनी आंखों और गुर्दे की गंभीर बीमारी होने से बचाएं।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
8: तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन जानलेवा है। तंबाकू के इस्तेमाल से कैंसर, हार्ट अटैक, लकवा, गैंग्रीन और अंधापन जैसी अनेक खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं।
5: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और शिक्षण संस्थान के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बेचना कानूनन अपराध है। प्रदेश में गुटखा, खैनी और खुली सिगरेट बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
8: प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने में सहयोग दें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
9: दीदी आजकल HPV वैक्सीन की काफी बात हो रही है, ये है क्या?
10: माया, ये वैक्सीन बेटियों को भविष्य में सर्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव में मदद करती है। 14 से 15 वर्ष तक की लड़कियों को सरकार ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगा रही है।
9: अच्छा, और अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है?
10: इसी वर्ष 28 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और तब से अब तक हजारों लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं।
11: अपनी बेटी के HPV टीकाकरण के लिए आशा, ANM या CHO से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
12: हिम गुंजन, इस कार्यक्रम में लोकगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला लोकगीत। इस लोकगीत को गाया है राज प्रभाकर ने।

0: आजकल HPV वैक्सीन की काफी बात हो रही है, ये है क्या?
1: माया, ये वैक्सीन बेटियों को भविष्य में सर्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव में मदद करती है। 14 से 15 वर्ष तक की लड़कियों को सरकार ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगा रही है।
0: अच्छा, और अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है?
1: इसी वर्ष 28 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और तब से अब तक हजारों लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं।
2: अपनी बेटी के HPV टीकाकरण के लिए आशा, ANM या CHO से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे मुन्ना, जरा एक ग्लास पानी देना, और हाँ, पानी को उबाल कर ही देना।
4: दादू, पानी तो साफ लग रहा है, फिर उबालना क्यों?
3: बेटा, दिखने में साफ पानी भी पीलिया, डायरिया और दस्त जैसे रोग फैला सकते हैं।
5: ध्यान दे, सुरक्षित पेयजल के लिए पानी को तेज उबाल आने के बाद 3 मिनट तक खौलाना जरूरी है।
6: उबला पानी पिए, स्वस्थ हिमाचल बनाए।
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
8: कार्यक्रम हिम गुंजन में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ये शिव भजन, जिसे गाया है राजेंद्र कुमार शर्मा ने।

0: बातों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
2: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
3: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
4: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
3: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
4: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
3: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
4: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
3: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
4: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
5: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
6: और श्रोता कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए जन जय सिंह गुलेरिया और साथियों की आवाजों में ये लोकगीत।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 22वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा हर घर बेहतर जीवन। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य वीके पॉल और वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
1: नमस्कार और आज हमारे श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है जन सेवा से देश सेवा। आज हम चर्चा कर रहे हैं हर घर बेहतर जीवन के बारे में और जिन अलग अलग पहलों की आज हम बात करेंगे उनमें एक साझा कड़ी दिखाई देती है। इनके कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव शायद ऐसे हैं जो आंकड़ों में तुरंत दिखाई नहीं देते, चाहे वो पानी या ईंधन लाने में बचने वाला समय हो या फिर वो स्वच्छ ईंधन से होने वाले स्वास्थ्य के लाभ हो या फिर बिजली और बेहतर आवास से पैदा होने वाली आर्थिक गतिविधियां हो। आज की हमारी चर्चा इन सब विषयों पर है और आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वीके पॉल, फॉर्मर मेंबर नीति आयोग एंड पवन कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट। नमस्कार और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी स्टूडियोज में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बुनियादी सवाल से। जब भी कोई पॉलिसी अस्तित्व में आती है उसका मूल्यांकन कितने समय में किया जा सकता है? पहले हम आपसे शुरुआत करते हैं पवन जी।
2: नमस्कार, अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आके। देखिए, कुछ पॉलिसी आप 2 महीने में नाप सकते हैं, कुछ पॉलिसी आप 1 साल में नाप सकते हैं, कुछ 5 साल में, कुछ 10 साल में, पर जो आपका रिक्वायरमेंट है, जिस पॉलिसी के बारे में आप बात करना चाहते हैं, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी इम्पैक्ट आपको, उसके लिए आपको लंबा वक्त देना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, इन्फ्लेशन नापने के लिए कोई पॉलिसी लेते हैं आप तो 1 महीने में नाप सकते हैं कम हुआ कि नहीं हुआ। FDI पे आपको बात करनी हो तो 1 साल का टाइम चाहिए, देखते हैं क्या हुआ, कितना आया, कहाँ से आया, कौन से सेक्टर में आया। अब जिस स्ट्रक्चरल पॉलिसीज की बात आप कर रहे हैं कि साहब जल जीवन मिशन का कितना फर्क पड़ा या जो दूसरी और गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसका कितना फर्क पड़ा, उसमें आपको मिनिमम कम से कम 5 साल का, जो मेरा इकोनॉमिक्स जितनी मुझे समझ में आती है उसके हिसाब से 5 साल का आपको एक होराइजन मान के चलना पड़ेगा। कुड बी 5 साल, कुड बी 10 ईयर्स ऑल्सो, बट 5 साल मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको देना पड़ेगा। तो पॉलिसी नापने के अपने मेजरमेंट के अपने एक तरीके हैं, वो है नहीं कि साहब कोई पॉलिसी सरकार ने कल को लॉन्च किया और आज उसका मूल्यांकन करें और उसके बाद आप कहें कि साहब काम हुआ या काम नहीं हुआ, वो सही तरीका पॉलिसी का नहीं है। आपको एक सर्टेन टाइम पॉलिसी को देना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ पॉलिसी दैट यू हैव लॉन्च्ड,
1: ताकि उसका प्रभाव नजर आए और बेहतर समझ में आए।
2: जी
1: डॉक्टर पॉल, आपसे मैं यही सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि आप नीति आयोग के सदस्य रह चुके हैं, आपका नजरिया शायद थोड़ा सा अलग होगा इस बारे में।
3: एक्चुअली अलग नहीं है पवन जी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। ये पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका असर कब होगा, ये बात बिल्कुल सटीक है, लेकिन ये हम रख के चल सकते हैं कि अगर एक पॉलिसी ने एक्शन अचीव करना है, मान लीजिए कि एक बात हो गई कि हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाएंगे, तो फैसला हो गया
1: जी
3: कि हम कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर को अगले लेवल पे लेके जाएंगे, इसको बनाने का टाइम लगेगा,
1: बिल्कुल
3: 4-5 साल, 3 साल लगते हैं बनाने में, इंक्रीमेंटल रोल आउट होता है।

0: फिर क्वालिटी एश्योरेंस होती है, फिर एक सैचुरेशन लेवल पे कवरेज, फिर क्वालिटी। तो कुछ चीज़ों में डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर, डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम, डिपेंडिंग ऑन द इनिशिएटिव, इट टेक्स डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम टू सी द इम्पैक्ट। लेकिन एट अ गुड बेंच मार्क इज, आई एग्री विद सर दैट 5 years इज अ गुड बेंच मार्क फॉर मैनी ऑफ द इनिशिएटिव्स दैट विल एंड हैव चेंज्ड द ईज ऑफ लिविंग फॉर आर फैमिलीज।
1: ओके,
0: तो उस बेंच मार्क से आपसे आगे बात बढ़ाते।
1: जी बिल्कुल, और क्योंकि आज का जो विषय है वो हर घर बेहतर जीवन के बारे में है, तो शुरुआत घर से करते हैं। अब जब हम घर को परिभाषित करते हैं या हम आवास की बात करते हैं, तो क्या आवास को केवल एक छत के रूप में देखना चाहिए या फिर परिवार की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के आधार के रूप में भी उसे देखना चाहिए?
2: घर की जब आप बात करते हैं तो उसमें आपको घर में पहुंच के अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? आप 5 दिन कहीं बाहर रहे, आप घर में जाए, घर से ज्यादा कहीं खुशी नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम जब घर बोलते हैं तो उसमें सब कुछ होना चाहिए, सारी सुविधाएं होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, उसमें बिजली होनी चाहिए, उसमें रहने की जगह होनी चाहिए, इसमें इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए जिसमें घर में रहकर आप, आपके बच्चे हैं, आपके जो परिवार हैं उसकी देखभाल करिए आप। तो आप, मेरे लिए घर जो है, इवन सरकार की स्कीमों के हिसाब से घर जो है केवल छत दे दिया तो वो घर नहीं है,
1: एक होलिस्टिक
2: पूरा एक होलिस्टिक आकार प्रकार है उसका। वो जब आपके पास है तो आप उसको घर बोल सकते हैं।
1: बिल्कुल,
2: मेरे ख्याल से शायद यही पूछना चाह रही थी आप।
1: जी बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रही थी और ये मैं प्रधानमंत्री आवास योजना को मद्देनजर रखते हुए पूछना चाह रही थी। डॉक्टर पॉल, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या आप पवन जी की बात से सहमत हैं, पहली बात तो, और दूसरी बात ये कि भारत में कई दशकों से गरीबों के लिए, गरीब परिवारों के लिए सरकारी आवास योजनाएं चलती आ रही हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ने किन चुनौतियों को भापा या किन कमियों को भापा जो वो पूरा करने की कोशिश कर रही है, या कौन से ऐसे गैप्स थे जिस इस पॉलिसी ने आइडेंटिफाई किया?
2: पहले भी सरकार जो है वो आवास योजनाओं पर काम करती थी। इस सरकार ने क्या किया है, इस सरकार ने उसको आगे बढ़ाया, ठीक है, इस सरकार ने उसको आगे बढ़ाया, साथ ही साथ जो सरकार एक ओवरऑल होलिस्टिक एटीट्यूड जो पहले था उसमें पूरा एक कल्चरल इमोशनल चेंज लाया, उसमें चेंज लाया, जिसमें बोला कि साहब ये आवास जो है, ये अब हमने कहा कि ये केवल एक स्केलेटन नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये उससे बढ़ के कुछ है। तो पहले भी हम लोग गांव में जाते थे, जैसे पत्रकार के तौर पे कहीं गए तो आपने कहा कि साहब घर बनाया क्या आपने, तो पता चला कि साहब उसका घर बना हुआ है और आधा बना हुआ है, आधा नहीं बना हुआ है। आधा घर बना मतलब आप समझिए कि सीने तक की दीवार आई, उसके बाद दीवार नहीं है, पैसा खत्म हो गया था। इस सरकार ने आके थोड़ा सा उसमें बात को आगे बढ़ाया, उसको ज्यादा चेंज किया और अक्रॉस दी स्टेट्स, आप मध्य प्रदेश जाए, बिहार जाए, आप यूपी जाए, किसी भी स्टेट में जाएंगे तो आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि एक रूपता मिलेगी आपको प्रोग्राम में। अब वो जो आवास योजना है वो उनके लिए केवल छत नहीं है, आवास योजना उनके लिए सुरक्षा है, उनके लिए डिग्निटी है, उनके लिए उनका रिकॉग्निशन है। अब सोचिए कि एक फैमिली के लिए ये सब कितना जरूरी होता है, क्योंकि पहले हम इसलिए निहारिका इस पे बात नहीं करते थे क्योंकि हमें पता ही नहीं होता था। अब हमें पता चला कि अच्छा, सरकार ने रिकॉग्नाइज किया कि हम एग्जिस्ट करते हैं, कोई एक ऐसी सरकारी बॉडी है जो इस बात की चिंता कर रही है कि साहब हमारे बारिश हो रही है तो बारिश में हम केवल भीग नहीं रहे हैं, हमें रहने की जगह नहीं है। उसमें डॉक्टर साहब से आप मेडिकल पे ज्यादा बात करेंगे, जैसे फर्ज करिए कि हमारे पास घर नहीं है, घर नहीं होने से उसके हेल्थ कितना इम्पेक्ट होता था, ये लोग उसके विद्वान है उस पर ज्यादा बात करेंगे। अब फर्ज करिए किसी का घर है, सांप काट लिया, आप कल्पना करते हैं कभी गांव में जिनके घर में मिट्टी के हैं, छप्पर हैं, घास फूस के हैं, डॉक्टर साहब वहां सांप बैठा हुआ है, दूसरे जानवर बैठे हुए हैं, बिच्छू है, जगह नहीं है, दो ईंटों के बीच में या दो मिट्टी के नली के बीच में
1: जी।
2: तो ऐसा नहीं, घर केवल उनके लिए अभी आज की तारीख में रिकॉग्निशन है, प्राइड है, गौरव का भाव है, उसके अलावा एक ओवरऑल मेंटल एंड फिजिकल एश्योरेंस एंड सिक्योरिटी, वो सब पूरा एक पूरा आस्पेक्ट है, वो पूरी चेन है, वो घर है, इसलिए वो सबसे पहला तो उनको कि साहब अच्छा हमें घर मिला। अब जब घर देंगे, अभी क्योंकि आगे जब आप बात करेंगे, आगे बिजली की बात करिएगा, ये सब सरकार के अलग अलग मंत्रालय निहारिका हो सकते हैं, वो सरकार के लिए मंत्रालय अलग हो सकते हैं, वो सारी मंत्रालय के जो चेन है वो जाके सिंपल एक फैमिली और एक व्यक्ति उसके अपलिफ्टमेंट कैसे कर रहा है वो अब से जो पहले होता था उसमें एक सी चेंज है। हम देखिए कोई सरकार कितना काम कर रही है इसका मूल्यांकन आपको एक समय के बाद करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल।
2: और किसी पॉलिसी की जब हम लोग बात करते हैं कि साहब अच्छा है बुरा है जो भी है, तो आपको एक वक्त उसको देना पड़ेगा, उसके बाद उसका असेसमेंट करेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि साहब कितना फर्क पड़ा है। एक फर्क ये पड़ गया कि लोग कहते थे कि अच्छा घर हमें क्यों नहीं मिला, जिनको नहीं मिला उनको इस बात की दिक्कत नहीं कि हम कैसे रह रहे हैं, उनको इस भरोसा है कि साहब ऐसा है कि देयर इज अ स्कीम अवेलेबल जिसमें हमारे बराबर के आर्थिक समानता वाले लोगों को मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहा है।

0: ये अवेयरनेस अपने आप में बताता है कि साहब इसका मतलब है कि थोड़ा सा सोच में एक का बेहतरी आई है, ये एक अच्छी बात है। तो मैं ये कह रहा था आवास योजना उनके लिए केवल वो नहीं है, वो मेंटल एंड फिजिकल बोथ, वो उनके लिए एक अपलिफ्टमेंट का
1: यानी
0: एक
1: काफी
0: टूल।
1: लेयर्ड टर्म है जब हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, और जब हम आवास की बात करते हैं तो वो केवल दीवारें नहीं है, उसकी काफी सारी लेयर्स हैं। आपके विचार क्या हैं सर इस पे?
2: मैं ये कहना चाहूंगा कि हर आवास में दो जरूरतें पूरी हों तो वो आवास पूरा है। एक है कि उसमें पानी की सप्लाई होनी चाहिए, पीने लायक पानी टैप से घर में आए, तो प्रधानमंत्री जी ने उसका कार्यक्रम बनाया, जल जीवन मिशन बनाया, हर घर नल जल की उन्होंने परिकल्पना करी। दूसरा है, और शायद उससे पहले आता है, कि टॉयलेट हो
1: जी,
2: घर में एक टॉयलेट हो, ये फंडामेंटल नीड है, एक ह्यूमन राइट वाली बात है ये। और हम इतना बड़ा काम हुआ है सिर्फ दीवार बनाने और टॉयलेट ही भूल जाना, या फंक्शनल टॉयलेट ही भूल जाना, या उस तक का इस्तेमाल ना बता पाना उस हाउस होल्ड को, तो अधूरी बात है। तो अगर हम ये दो चीजें देखें, तो प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम में स्वच्छ भारत का अभियान के अंतर्गत गाँव में 12 करोड़ टॉयलेट बनाने का संकल्प लिया और उसको सिद्ध करके दिखाया। उसके कितनी डायमेंशंस है, ईज ऑफ लिविंग है पहले, एक सिक्योरिटी है, और हमारी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, खासकर जो उनकी लाइफ इम्प्रूव होती है, आप उसके बारे में सोचिए। तो जो घर में जो बदलाव आया है, ये एक मुद्दे को अगर देखें तो ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है, जो काम पूरा नहीं हुआ था
1: जी।
2: और अगर मैं इसको स्वास्थ्य से जोड़ूं तो पब्लिक हेल्थ का जो हाईएस्ट प्रिंसिपल है वो साफ पानी है, और एक एनवायरनमेंट है जो कि सफाई वाला हाइजीनिक एनवायरनमेंट है, और टॉयलेट आती है आसपास गांव में, सारा ओपन डिफिकेशन फ्री होता है कि बाहर शौच कोई नहीं जा रहा है, तो जो जीवाणु है वो मुंह के रास्ते से, गंदगी से मुंह के रास्ते से आके बीमारी नहीं पैदा करते। दस्त नहीं की बीमारी होगी, हेपेटाइटिस नहीं होगा, टाइफाइड नहीं होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसको स्वास्थ्य से जोड़िए। यहाँ की हम पढ़ते थे बहुत जमाने पहले कि हर बच्चे को 3 एपिसोड जो है वो डायरिया के होते हैं बचपन में, अब सब बदल गया है, नेग्लिजिबल हो गया है। और इसके फॉर्मल एस्टिमेट हमारे पास हैं कि जब ये सैचुरेट हुआ काम रूरल इंडिया में, तो 70,000 बच्चों की डेथ हर साल कम हुई है, क्योंकि डायरिया कम हुआ, इन्फेक्शन डिजीज कम हुई, ओरोफिकल रूट टूटा, और इसके अलावा न्यूट्रिशन बढ़ी, और ये सब होने के साथ साथ खाफ एनवायरनमेंट से, सिर्फ ये एक सेंटिमेंट की बात नहीं है, एक नपीतुली बात है कि लाइव्स बच रही हैं, और उनको नहीं दौड़ना पड़ रहा, अपना पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ रहा है कि डायरिया के लिए और दस्तों के लिए। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और बढ़ते हुए हम इसको जोड़ेंगे कि हर घर नल जल से कितना ईज ऑफ लिविंग हुई है, वो भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा।
1: मेरा अगला सवाल इसी पर होने वाला था, जल जीवन मिशन और स्वच्छता अभियान पे। दोनों की मेरा ख्याल से एक साथ बात हम कर सकते हैं, और वो इसलिए कि इसका सीधा सीधा असर स्वास्थ्य पे पड़ता है और दूसरा असर वुमेन एम्पावरमेंट पे पड़ता है। तो अगर हम जल जीवन मिशन की बात करें, हमारे देश का एक चित्र रहा है जहां हम एक महिला को दूर जाते हुए देखते हैं मटका लेके पानी लेकर आने के लिए, और शायद ये जो काम था, ये जो कार्य था, वो से पढ़ाई से, रोजगार से दूर रखता था, और दूसरा इसका असर जो पड़ता था वो महिलाओं के स्वास्थ्य पे पड़ता था। तो जल जीवन मिशन आने से क्या ये चित्र बदलने लगा है थोड़ा सा?
0: कल्पना कीजिए, सुबह सुबह के 6 बजे हैं और गांव की महिलाएं 2 बाल्टी हाथ में लिए हुए, या पानी का कोई बर्तन जो जिसके बगल के जलाशय में गए, कुएं पे गए, या कोई और पानी का जो दूसरा स्रोत है उसके पास गए और लेके आए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर वहां से लौट के आना। ऐसा नहीं है कि कोई ये चीज हमने किताबें में पढ़ी, बाद में हमने पत्रकारिता की तो हमने देश के अलग अलग इलाकों में भी देखा, राज्य का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे सीन बहुत सारे इलाकों में थे। वो जाती थी तो क्या करती थी, वो जाती थी तो बेटी उसके साथ जाती थी, पति नहीं जाता था। पानी लाने में पुरुष का रोल नहीं होता था, पानी लाने में महिला का ही रोल होता था, वो लेके जाती थी, बेटी जाती थी उसके साथ, और वो पूरे 3 घंटे की यात्रा होती थी, निहार का जाना आना और तैयारी। ये वक्त ज्यादा लगता था, एनर्जी जाता था, इकोनॉमिक्स में बोलते ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट,
1: बिल्कुल।
0: तो आप देखिए कि क्या हालत क्या थी, वो सीन नहीं है जैसे बुंदेलखंड के इलाके में, मध्य प्रदेश के बाकी और इलाके में। यूपी गवर्नमेंट ने इस पे बहुत काम किया, जल जीवन मिशन पे। ये जल जीवन मिशन, इसमें जो सफरिंग कम्युनिटी थी वो महिलाएं थी, पुरुष नहीं था,
1: बिल्कुल।
0: टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मैं ये कहूंगा टू अ ग्रेट एक्सटेंट, महिलाओं के लिए टाइम खराब होता था, एनर्जी जाती थी, घर में बच्चों को पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता था, ये सब समय की बचत हुई। तो आप देखेंगे जल जीवन मिशन से न केवल क्वालिटी ऑफ वाटर अवेलेबल है, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज बिकम मच बेटर,
1: और शायद इसका जो प्रभाव है आगे आने वाली कई पीढ़ियों तक नजर आएगा, इसका पीढ़ीगत प्रभाव।

0: अब शायद ज्यादा होगा, शायद हमें इमीडिएट इफेक्ट देखने को इतना ना मिले, लेकिन आगे जाकर जैसे आपने शुरू में कहा था कि हर पॉलिसी का मूल्यांकन करने के लिए कुछ वक्त हमें देना पड़ता है।
1: इतना प्रभाव तो जिस दिन पानी आ गया
2: उसी
1: घर की तो दशा उसी दिन बदल गई,
0: उसी दिन बदल गई।
1: अब देखिए मैं इसके एक आंकड़े से जोड़ता हूँ, पवन जी आपने जो बातें कही है, एक स्टेज पे इसका जो स्पीड एंड स्केल है ना इस काम का, मैं थोड़ा सा उभारना चाहूंगा। उसका मतलब कि स्पीड एंड स्केल सिर्फ प्रोजेक्ट का नहीं है, काम का नहीं है, जो चेंज हो रहा है। अब स्पीड की बात करो, एक स्टेज पे पवन जी जब पीक पे चल रहा था, उस टाइम पे एवरी सेकंड एक नया टैप वाटर नए हाउस होल्ड में पहुंच रहा था, एवरी सेकंड। इसका थोड़ा सा अगर मैथ्स करते हैं, मल्टीप्लाई करिए, तो 86,000 टैप कनेक्शन एक दिन में लग रहे थे, 86,000 घरों में पानी लग रहा था। मैथ्स है ये, रिफ्लेक्ट कर आप सोचिए लाइफ कितनी बदल रही थी। 86 घरों के साथ में एस्टिमेट है कि 3.5 लाख लोग उसमें रह रहे होंगे, 3 से 4 से मल्टीप्लाई करिए आप। आप सोचो आज ये 3.5 लाख लोग पानी ला रहे हैं, जिंदगी और है, कल बदल गया, ये स्पीड है। तो इसके लिए वेट करने की और जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका स्केल देखिए, स्केल ये है कि जब शुरुआत हुई थी तो 19 करोड़ या 19.4 करोड़ रूरल हाउस होल्ड में से सिर्फ 3.23 करोड़, 17% घरों में टैप का पानी आ रहा था। आज हम ये बात ऑलमोस्ट 13 करोड़ तक पहुंच गए हैं, और वो 17% था, और आज हमें 79%, 80%। 17 से 80 की जर्नी, और रोज बदलाव हुआ होगा उस घर में एक दिन के अंदर छोटे ड्यूरेशन में, ये सोचने वाली बात। जब ये मिशन पूरा हो जाएगा तो हमने लगभग 16 करोड़ घरों में पानी की सुविधा कर दी होगी। इसको अगर मैं देखूं कि इसका मतलब क्या है, 70 करोड़ लोगों की जिंदगी बदली, मल्टीप्लाई करिए आप। और वो पता कितनी पॉपुलेशन है, आप अमेरिका की पॉपुलेशन लो, उसके साथ में जोड़ो आप ब्राजील की 21 करोड़ अमेरिका 33, ब्राजील 21, और फिर जोड़ो इंग्लैंड की पॉपुलेशन 6 करोड़। आप ये सोचिए कि 5, 6, 7 साल के अंतर अमेरिका, इंग्लैंड, ब्राजील, उतने बड़े हाउस होल्ड्स, उतनी बड़ी पॉपुलेशन को आपने पानी की, ये सर खास बात है जिस सरकार में, जो आप शुरू में बात करी ना कि अधूरे छूट जाते थे वो, तो इस स्केल पे ये काम हुआ है। और हेल्थ से जोड़ू अगर तो बिल्कुल क्लियर है कि साफ पानी आएगा, वाटर, सेफ वाटर एंड सैनिटेशन फंडामेंटल एसेट्स हैं पब्लिक हेल्थ के। पब्लिक हेल्थ शुरू ही वहां से होता है
0: जी,
1: सफाई हाइजीन पानी से ही शुरू होता है, पर्सनल हाइजीन से, इसी से शुरू होता है। तो उसमें 4 लाख बच्चों की डेथ, अगेन बच्चों पे प्रभाव ज्यादा पड़ता है, 4 लाख डेथ जो हैं वो 5 साल के दायरे में कम होंगी और हुई है। तो अगर हम इसको इस तरह से देखें तो ये जो बुनियादी बदलाव है, उस घर की दशा बदल गई और उस घर के बच्चों की दिशा बदल गई
0: जी,
1: और उस घर के में एक माहौल की दिशा बदल गई, ये दो मिशन को हम इस स्वरूप में भी सर देख सकते हैं।
0: मेरा ख्याल है हमारी परिचर्चा में अब स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात करने का वक्त आ गया है। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू किया गया था, इसको शुरू करने के पीछे का कारण और उससे आने वाले बदलावों के बारे में अब मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी।
1: स्वच्छ हो भारत, गाँव स्वच्छ हो, हमारा आसपास स्वच्छ हो, तो ये तो हमारे पूज्य गांधी जी का एक सपना रहा है, और उन्होंने देश को दशकों तक उस तरफ ले जाने का एक एग्जाम्पल पैदा किया। जैसे सर ने फिर कहा, सबने कोशिशें करी, कुछ कुछ कर पाए, कुछ कुछ अच्छा किया, कुछ कुछ नहीं कर पाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने के बाद इसमें एक टारगेट बांधा गया, टारगेट के साथ साथ एक स्ट्रेटेजी बनाई गई, फंड्स उपलब्ध किए गए, पॉलिटिकल कमिटमेंट जोड़ी गई, एक कंसेंसस बनाई गई, और सबसे बड़ी बात इसको एक जन आंदोलन बनाया गया। तो जन आंदोलन जब बना तो असली चेंज जो है तभी होती है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जबकि जन आंदोलन होता है
0: जी।
1: ठीक है, आइडिया बन जाता है, वो रिफॉर्म हो गया, फिर परफॉर्म करना शुरू किया कि चलो पाइपें बिछाओ, चलो ये टॉयलेट बनाओ, पानी लाइए, लेकिन जब जनता जुड़ती है उस, तो वो हर घर नल जल में भी जरूरी है, पानी की समितियां हैं, वो क्वालिटी एश्योरेंस देखती हैं, उन्होंने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो इतने स्केल पे इस तरह से जो काम हुआ है तो वो काम अकम्प्लिश हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ बजट दिया गया, पॉलिटिकल कमिटमेंट स्टेट ने भी दिखाई, राज्यों ने भी दिखाई, और उसको करने के लिए एक जो शैली बनी उसको एक हम बिल्कुल वो सिग्नेचर शैली की तरह मैं तो कहूँगा फॉर सोशली रेलेवेंट ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैव हैपेंड इन आवर कंट्री रिसेंटली।
0: और यदि मैं आपसे अगर पीएम उज्ज्वला योजना का जिक्र करूं तो इस योजना की ग्रास रूट लेवल पर बदलाव लाने में क्या भूमिका रही है, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आवश्यक स्कीम रही है भारत सरकार की सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना की क्या भूमिका

0: ये ग्रास रूट लेवल के जो घर हैं उन तक बिजली पहुंचाने में।
1: जैसे डॉक्टर साहब ने स्वच्छता पे बात की, अभी आप कहाँ बैठे हुए हैं? आप बैठे हुए ऑल इंडिया रेडियो में, राइट?
0: जी।
1: पर आरबीआई सामने बिल्डिंग है रिजर्व बैंक की, इस पूरे इलाके में अभी से 7-8 साल पहले, हो सकता है कि थोड़ा और पहले, लेकिन रफली 7 साल पहले, आप एक भी टॉयलेट इस आसपास में नहीं था, एक भी नहीं था। जब मैं कह रहा हूँ, अगर कहीं मेरी याददाश्त धोखा दे रही हूँ तो अलग बात है, पर कहीं एक भी टॉयलेट नहीं था। अभी इस विसिनिटी में आपको ढेर सारे टॉयलेट अप एंड रनिंग, बढ़िया अच्छी क्वालिटी के, अच्छे स्टेटस में वो मिल जाएगा आपको। कोने पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के सामने, आरबीआई के कोने पे, और थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको उद्योग भवन के कोने पे, फिर आगे जाएंगे तो आपको नेशनल मीडिया सेंटर के कोने पे, वगैरह वगैरह। ये अपने आप नहीं आया है, सरकार आपको टॉयलेट बना के दे सकती है, सरकार आपको घर से उठा के टॉयलेट तक नहीं ले जा सकती। देखिए, कुछ चीजें समझने की, हर बात के लिए हम सरकार को बोलें कि साहब आप ही जिम्मेदार हैं, ये सही तरीका नहीं है, ये रिजल्ट अच्छे आउटकम पे नहीं ले जाएगा। सरकार टॉयलेट बना के हमको दे सकती है, सरकार टॉयलेट में जबरदस्ती पकड़ के हमको नहीं ले जा सकती।
0: बिल्कुल
1: राइट। मेरा ये मानना है कि स्वच्छता में कम से कम आधा हिस्सा हमारा होगा। सरकार के पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार हमारा हैबिट्स नहीं चेंज कर सकती, सरकार हमारा बिहेवियर नहीं चेंज कर सकती। सरकार को हमारे लिए एक टॉयलेट का प्रमोशन या जो भी स्वच्छता अभियान उसका प्रमोशन कर सकती है, लेकिन हमें उसमें शरीक नहीं करा सकती।
0: बिल्कुल,
1: वो उसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है। दूसरा, जो आप पॉलिसी जिसकी बात आप कर रहे हैं, जैसे फर्ज करिए कि आपने शुरुआत की घर से, घर में स्केलेटन नहीं है, घर बनाया आपने, उसके बाद उसमें इंसान रह रहा है, उसमें घर में 24 घंटे में ज्यादातर टाइम जो है वहां पे महिलाएं देती हैं। इस बात को हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं जब घर की बात कर रहे होते हैं, तो कि उसमें पुरुष नहीं है, उसमें महिलाएं दिन भर काम कर रही हैं। उसके लिए सबसे पहले तो उसके लिए इतना बड़ा वो इंश्योरेंस है। आप किसी पुरुष से पूछिए कि घर पे कितनी खुशी है आपको, और महिला से पूछिए घर की कितनी खुशी है, आप बिल्कुल आसमान जमीन का फर्क पाएंगे दोनों
0: अलग अलग नजरियों
1: दोनों के रिस्पॉन्स में, क्योंकि घर में दिन भर वो रहती है। उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है, उसके लिए दिल की बात है, इज्जत की बात है, गरिमा की बात है, डिग्निटी की बात है, रिकॉग्निशन की बात है। अब घर है तो घर में साहब बिजली है, आधा काम आपका खत्म। घर पे बिजली है, दूसरे और काम कर सकते हैं आप, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, बिजली के और भी 10 उपयोग है। मिक्सी कैसे चलाएगा? मिक्सी से चलाएगा, पहले आप लगे रहते थे सिलबट्टे पे
0: जी।
1: आधा घंटा आपका हेल्थ खराब भी हो तो भी आप मसाला भी पीस सकते हैं, पहले वो काम नहीं कर सकते थे सिलबट्टा उठाने में ही बहुत मेहनत लगती थी। तो बिजली आ गई, पानी आ गया आपके पास। अब जिस स्कीम की बात आपने की, जैसे बिजली की बात हम लोगों ने की, आपके पास पूरा रसोई का जो पूरा नक्शा है, पूरा मैप है, पूरा रसोई का जो लैंडस्केप है वो पूरा बदला हुआ है अब। और जब पूरा रसोई का लैंडस्केप बदला हुआ है तो ये पूरी, आपको अगर इकोनॉमिक समझना हो तो किसी के रसोई में घुस जाइए, आपको समझ में आ जाएगा, और कोई तरीका दूसरा नहीं हो सकता। रसोई में घुस जाइए और इन सब पे प्रकाश डालिए, पानी है, रसोई है, बिजली है, घर में बिजली है, तो आखिर में जो सबसे बात, वो डॉक्टर साहब इस पे प्रकाश डालेंगे, इनसे सवाल पूछिएगा जरूर तैयारी करके, कि बीमारी से सुरक्षा। महिलाएं जलावन लाने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती थी, जलावन अगर मान लीजिए सिला हुआ है, धुआं निकलेगा अभी आधा घंटा, तब जाके जलावन थोड़ा कड़क होगा, तब जाके वो जलेगा, तब तक वो स्ट्रगल कर रही होगी, बेटी को पीट रही होगी, बेटी पे चिल्ला रही होगी, झुंझला रही होगी, उसके बाद उसकी आंखें खराब होगी। अगर उसका लंग खराब है, मैं तो उसका विशेषज्ञ हूं, मैं केवल आपको इंडिकेटिव बता सकता हूं। फिर वो खांसते खांसते तैयार करेगी खाना, टाइम उसका जाएगा, उसका मेंटल पीस लूज होगा, वगैरह वगैरह। उस सूरत में रसोई में अब उसके लिए कोई दिक्कत नहीं बची है। तो ये सामाजिक सुरक्षा से बढ़ के अब उसके, देखियो, बीमारी से उसकी सुरक्षा है। स्वच्छता अभियान में थोड़ी और सख्ती की जरूरत है, उसमें ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हम जैसे लोगों को करने की जरूरत है, जो जनता की कैटेगरी में। तो ये फर्क दिख रहा है साथ में जमीन पे मेरे ख्याल से।
0: डॉक्टर पॉल, हमारी इस परिचर्चा में स्वास्थ्य का बार बार जिक्र होता है, स्वास्थ्य का बार बार मेंशन होता है, और स्वास्थ्य से रिलेटेड एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस स्कीम ने ग्रास रूट लेवल पर क्या चेंज इंट्रोड्यूस किया है, और आरोग्य मंदिर का इसमें क्या रोल रहा है?
2: आयुष्मान भारत में दो मेजर प्रोग्राम लॉन्च हुए थे 2018 में, और फिर दो उसके बाद आए। पहले जो आपने बात कही वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दूसरा आपने मेंशन फिर किया आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर है, उसको थोड़ा बाद मिलाते हैं हम पीएमजे की बात। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हम ये अटेम्प्ट कर रहे हैं कि जब अस्पताल में जाने की ज़रूरत पड़े, अस्पताल में दाखिल होने की ज़रूरत पड़े, या सेकेंड, उसको हम कहें और तरह से तो सेकेंडरी टर्शरी केयर में हमें एक्सेस करनी है केयर, दाखिल होकर इलाज होना है, इन पेशेंट इलाज होना है, आउट पेशेंट वाला प्राइमरी केयर में जाता है, तो वहाँ जो सुविधाएं हेल्थ केयर की मिले, पहली बात एक्सेस हो, दूसरा

0: आएगी एक्सेस के साथ साथ मेरी जेब पे, मेरे अपने रिसोर्स पे, मेरी बचत पे बोझ ना पड़े,
1: जी
0: ये उसका मेन पर्पस है। अब सोचिए कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2004 के एस्टिमेट या 2014 के एस्टिमेट हम लेते हैं, आपको हैरानी होगी कि तरह तरह के एस्टिमेट कहते थे कि हमारे देश में 4 करोड़ से 7 करोड़ लोग, 9 करोड़ लोग, डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं, बीमारी की वजह से जो गरीबी की रेखा उसके नीचे गिरते थे,
1: जी
0: इतने लोग। और वो किस तरह से, और इंडिविजुअल पे जाइए कि वो वुमन अकेली है, उसके बच्चा बीमार है, राइट, कैंसर हो गया मान लीजिए, भयानक बीमारी, घर में कोई नहीं है, तो क्या होगा? या तो हम जाएंगे ही नहीं, बताइए कितनी दर्दनाक बात है वो,
1: जी
0: और गए तो घर बेच के जाएंगे, ज़मीन बेच के जाएंगे, गहना। तो ये सच्चाई है, सच्चाई रही है ये, कि हमें हेल्थ केयर का खर्चा इतना बोझ पड़ता रहा है, जितनी भी कोशिशें हुई उसके बावजूद भी इतना बोझ पड़ता था कि हमारे जेब से खर्च करके हम बर्बाद होके इन पेशेंट केयर हम लेते थे। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने क्या किया कि 60 करोड़ लोगों के लिए, 15 करोड़ के ऊपर हाउस होल्ड्स को लेके, ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि उनके लिए हर परिवार को हर साल 5 लाख का जो खर्चा है उसके बराबर जो हेल्थ केयर मिलनी है, उसके एवज में जो मिलनी है, वो 5 लाख का कवरेज हर फैमिली को, उन फैमिलीज को सुनिश्चित कर दिया गया है। तो एक परिवार को स्वास्थ्य के लिए, इन पेशेंट केयर के लिए 5 लाख का जो खर्चा है वो एंटाइटलमेंट की तरह उन बेनिफिशरीज को मिलेगा। अब
1: जी
0: ये बे बदलाव है और बहुत बड़ा बदलाव है। इसमें मैं सिक्योर होता हूँ। और ये जब बीमारियाँ कवर हो रही हैं ना, उसमें कोई भी छूटी नहीं है। 1900 से ज़्यादा प्रोसीजर्स, चाहे वो इंटेंसिव केयर है, चाहे क्रिटिकल केयर है, चाहे कैंसर केयर है, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट है, या चोट लग गई है उसका इलाज है, या नी रिप्लेसमेंट होना है वो है, या स्टेंट डलनी, ये सारे उसमें शामिल है। और किस व्यक्तियों के लिए, जो हमारे बॉटम के 40% लोग हैं, ये वो 15, इनको हम उस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, इन परिवारों को।
1: जी
0: तो इतना ये बदलाव है, उसकी वजह से लोगों के, एक तो उन्होंने जाना शुरू कर दिया, और अभी जो NSSO का साइकिल आया उसमें दिखाया गया है कि अब लोग छुपाते नहीं हैं, वो जाने शुरू हो गए। ये बिल्कुल कैशलेस है, आपको वहाँ पे एक पैसा ही नहीं देना है। और आप अगर इसको आंकड़ों में फिर एक बार कोशिश करो डालने की, तो हर रोज़ लगभग 90,000 से 1 लाख लोग, व्यक्ति हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है इस कार्यक्रम के अंदर। आजकल अभी तक 12 करोड़ व्यक्तियों को इसका फायदा हुआ है। और उसमें मैं कहना चाहूँगा, मेल फीमेल का प्रपोर्शन पवन जी, एग्जैक्ट
2: जी
0: जितने व्यक्ति मेल गए दाखिल हुए, या जितने कार्ड मेल्स के बने उतने ही फीमेल्स के बने हैं, उनकी एक्सेस बढ़ी है। और अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि जो लगभग 2 लाख करोड़ का जो खर्चा इस स्कीम ने उठाया है, वो बोझ अदरवाइज जनता के ऊपर था, इन 40% लोगों पे था, और अब जो है 70 और 70 से ऊपर के लिए एडिशनल, आप किसी भी तबके से हो, उनके लिए भी 5 लाख का कवरेज उपलब्ध कर दिया गया है, चाहे अमीर गरीब कोई भी है, और उसके बियॉन्ड है ये, मतलब जो शुरुआत हुई थी उसके बियॉन्ड है, और उस 60 करोड़ नंबर के अंतर्गत है। लेकिन ये वो जो लोअर सोशो इकोनॉमिक वाले हैं, डिप्राइव्ड हैं, उनके लिए नहीं है, ये सबके लिए है। तो एक ये ऐसा कार्यक्रम है, और ऐसे ही एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ एक इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है, जो कि आम जिंदगी को बहुत बेहतर करता है, और लाइफ बचती है और खर्चा बचता है।
1: और शायद पब्लिक हेल्थ पर जो तनाव रहा है इतने सालों से, शायद वो भी काफी कम हो जाएगा इन कदमों की वजह से, इन स्कीम्स की वजह से।
0: इन स्कीमों से, ये दोनों स्कीम अगर हम जोड़ें
1: जी
0: कि यहाँ तो सेकेंडरी टर्शरी अंदर, फिर प्राइमरी केयर वाली आयुष्मान आरोग्य मंदिर की हम स्कीम को जोड़ें, जिसमें कि एक जो हमारा सब सेंटर लेवल है, 6,000 की पॉपुलेशन के लिए उनकी जो दवाइयाँ जो बढ़ गई हैं वहाँ पे, डायग्नोस्टिक टेस्ट बढ़ गए हैं, और इसी तरह से जो एक्स्ट्रा वहाँ पे व्यक्ति हमारे लिए उपलब्ध हो गया है, उन सब के वजह से हेल्थ केयर

0: है वो लोगों के पास, क्या ये काम पूरा हो गया है? नहीं। क्या ये काम पूरा परफेक्ट करना है? हाँ। लेकिन इन सालों में व्यवस्था बन गई है और इसको सक्सेस करना, जैसे पवन जी ने कहा, सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, जनता को भी जुड़ना है। वो इन सुविधाओं का फैसला लें, वहाँ जाके बोलें कि मेरा ब्लड प्रेशर चेक करिए, मेरा ब्रेस्ट कैंसर चेक करिए, मेरे 3 साल हो गए हैं या पिछली बार आपने देखा, मेरा डायबिटीज़ मैंडेटेड है हर साल चेक होना। जाइए वहाँ पे, जाके लाइन में लगिए, आप भीड़ करो, उसका इस्तेमाल करिए,
1: जी
0: वहाँ टेलीमेडिसिन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दृष्टि से अगर हम देखें तो। एक्सेस बढ़ना एक फ़र्ज है उसमें, और एक्सेस हेल्थ का बढ़ने के साथ साथ जेब के ऊपर, मेरे पर्सनल खर्चे के ऊपर, मेरा फाइनेंशियली मुझे सिक्योर रहना है, ये दोनों को जोड़ते हुए एक बड़ा ही नोबल मिशन हुआ
1: बिल्कुल
0: है, बहुत हद तक सक्सेसफुल है, बहुत हद तक आप भी आगे जाना है।
1: बिल्कुल। और एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। पवन जी, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। ये नवंबर 2023 में स्कीम आई थी। जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं या जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए इस स्कीम की, इस कदम की, इस योजना की क्या भूमिका है?
2: देखिए, फिर इसमें केवल ग्रुप बदला है निहारिका, आप मतलब बाकी चीज़ें तो सबके लिए है, ये केवल आदिवासी इलाकों में है जिसमें सरकार ने आइडेंटिफाई किया था, मेरे ख्याल से 72 या 75 कुछ जनजातीय ग्रुप थे जिनके लिए लॉन्च किया था वो, इसलिए क्योंकि वो और उनकी स्थिति और थोड़ी ज़्यादा विकट है। तो ये बहुत नया इस्टेब्लिश किया है, इस पॉलिसी को थोड़ा सा और आपको टाइम देना पड़ेगा असेस करने के लिए, लेकिन सरकार का इंटेंशन वही है, सरकार की ऑनेस्टी वही है, सरकार का ऑब्जेक्टिव वही है, केवल ग्रुप लोगों का डिफरेंट है। कुल मिला के इस पे बात करिए कि देखिए, जनसेवा की कसौटी जो सरकार काम करे, जो पब्लिक सर्विस सरकार कर रही है, उसका क्या पैमाना है? उसका पैमाना है कि आम आदमी की जिंदगी में ये कितना बदलाव आया। इसमें ये भी आम आदमी है जो अभी तक जो बात डॉक्टर साहब कह रहे थे, जो बात हम कहते, वो सब आम ही आदमी के लिए है, राइट। इसमें ग्रुप केवल चेंज हुआ पड़ा है, पर ये सब आम आदमी, वो पूरा भीड़ जो है वो आम आदमी का है। आम आदमी की जिंदगी में कितना बदलाव आया है, आपकी बातचीत का आज का जो है केंद्रीय तत्व यह है, और आम आदमी की जिंदगी में कितना बदलाव आया है और महिलाओं की जिंदगी में कितना बदलाव आया है। मैं आपसे थोड़ी देर पहले ही बात कह रहा था कि जो सोसाइटी अपने 50% पॉपुलेशन को एक्सक्लूड कर दे, उसकी चिंता नहीं करे, उसको छोड़ दे अपने हाल पे, वो सोसाइटी कभी तरक्की नहीं कर सकती। इस सरकार ने आके वापस ये केंद्र में इस डिमांड को, इस अटेंशन को वापस लाया है कि इस देश में महिलाओं की स्थिति जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे, तब तक आप किसी अच्छे सोसाइटी की कल्पना नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल।
2: कवरेज क्या है? नंबर एक देखिए, आपको पता चलेगा उसका कवरेज, उसका यूसेज क्या है, कितना लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैं मेजरमेंट और अल्टीमेटली टेस्ट करने की बात कर रहा हूं कि सरकार जब टेस्ट करेगी अब से 5 साल बाद तो क्या होगा, कवरेज कितना है, यूसेज कितना है, इसका आउटकम क्या रहा है, और अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कल को जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कल को ये नहीं कहेंगे साहब कि मैं ओपन डिफेकेशन में जाऊंगा, वो पूछेंगे कि हमारे घर में टॉयलेट क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। उसको पता है कि साहब ये दिस इज द न्यू नॉर्मल, घर में टॉयलेट चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं इसको नापने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।
1: जी
2: इसीलिए बदलाव है, सरकार की सीरियस एफर्ट्स हैं, अलग अलग राज्य में उसके अलग अलग इम्पैक्ट हो सकते हैं। मेरे ख्याल से आम आदमी की जिंदगी में ढेर सारे बदलाव हैं, पॉजिटिव हैं, मेरे ख्याल से इसमें और बेहतर हो सकता है, इससे कोई इनकार करेगा क्या है? कोई नहीं,
1: कोई नहीं। बहुत खूब। मेरा ख्याल है इसी विचार के साथ हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। और धन्यवाद आपका, आप दोनों हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़े और हमारे स्टूडियो आए। थैंक यू सो मच।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 22वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा हर घर बेहतर जीवन। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य वीके पॉल और वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: मॉर्निंग दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। श्रोताओं लीजिए सुनिए देशकान।

बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी

0: आपकी हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 9:50 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधारों का किया स्वागत, कहा गिरफ्तारी के प्रावधान हटने और प्रक्रिया सरल होने से पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव। प्रदेश सरकार ने केंद्र से मांगी 5 साल तक 14% राजस्व संरक्षण की गारंटी, पर्वतीय राज्यों के लिए अलग नीति और फार्मा में टैक्स विसंगति दूर करने का भी किया आग्रह। राज्य सरकार शिमला जिला के पराला में लगाएगी एप्पल स्नेप्स प्लांट। बागवानी मंत्री ने कहा कम कीमत वाले सेब का होगा व्यावसायिक उपयोग। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा संवैधानिक पदों का सम्मान करें कांग्रेस, चुनाव आयोग के खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शन निंदनीय। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी परिषद की सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। राज्य सरकार ने केंद्र से अगले 5 वर्ष तक 14% सालाना राजस्व संरक्षण जारी करने की मांग उठाई है। नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 57वीं जीएसटी परिषद की बैठक में आबकारी सचिव यूनुस ने कहा कि राजस्व संरक्षण की अवधि समाप्त होने के बाद इसे अचानक बंद करने के बजाय वास्तविक राजस्व निर्धारित स्तर तक पहुंचने तक जारी रखा जाए। इसके अलावा केंद्र सरकार से पर्वतीय राज्यों के हितों के लिए अलग नीति और समस्याओं के समाधान के लिए मंत्रियों के समूह का गठन करने का आग्रह भी किया गया। प्रदेश सरकार ने फार्मा उद्योग में कच्चे माल पर अधिक टैक्स की विसंगति को दूर करने और एपीआई पर जीएसटी दर घटाने की मांग भी की गई। प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य शिक्षकों को राहत देते हुए सरकार को उनके पक्ष में नए सिरे से निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि प्रमोशन वाले ऊंचे पद का वेतनमान उसके निचले पद से कम या बराबर नहीं हो सकता। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने 58 स्वास्थ्य शिक्षकों की याचिका को स्वीकार करते हुए सरकार की भेदभाव वाली नीति को गलत ठहराया है। अदालत ने सरकार से 30 जनवरी 2016 के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें स्वास्थ्य शिक्षकों को निचले पद के बराबर ग्रेड पे दिया गया था। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकार इस मामले पर दोबारा विचार करें और बढ़ा हुआ वेतनमान 1 अक्टूबर 2012 से लागू माने। राज्य सरकार शिमला जिला की पराला सेब मंडी के पास एचपीएमसी के खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र में एप्पल स्नेप्स बनाने के लिए नया प्लांट स्थापित करेगी। करीब 8 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत वाली इस परियोजना को बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में शिमला में हुई एचपीएमसी निदेशक मंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। जगत सिंह नेगी ने कहा कि ये देश का पहला सक्रिय और सत्यापित एप्पल स्नेप्स संयंत्र होगा। इससे सेब के मूल्यवर्धन को बढ़ावा मिलेगा और कम कीमत पाने वाले सेब का भी व्यावसायिक उपयोग हो सकेगा। नाहन विधानसभा क्षेत्र के तहत सेनवाला कोलावाला भूड़ सड़क गुलरिया में भारी भूस्खलन के बाद यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई है। प्रशासन ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने की अपील की है। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि इस स्थान पर बार बार भूस्खलन होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
1: इलाके के लोग इस सड़क से होते हुए कालाम इंडस्ट्रियल एरिया में और अपनी अपनी नौकरी के ऊपर जाते हैं और पूरी बरसात में लगातार

0: तार ढांक के गिरने से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत नुकसान हुआ। पिछले कल बिना बरसात के गुलरिया ढांक के गिरने से और एक बहुत ही अजीब सी स्थिति बन गई है, किसी भी समय कोई भी व्यक्ति वहां से क्रॉस कर रहा हो उसके जीवन को खतरा बन गया। सरकार को इस मामले में तुरंत पहल करने की जरूरत है।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
2: अरे इतना तेज बुखार, ऊपर से खांसी और बदन दर्द, दवा ले लो।
3: हाँ वही पुरानी एंटीबायोटिक ले लेता हूँ।
2: नहीं, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं, ये इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू भी हो सकता है। चलो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
4: तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द या बहती नाक को नजरअंदाज न करें। हाथ साबुन से बार बार धोएं और खांसते छींकते समय मुंह नाक ढकें। ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवाएं। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं को संवैधानिक पदों का सम्मान करते हुए देश में अराजकता का माहौल नहीं बनाना चाहिए। मंडी में एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि देश में कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन की निंदा करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को गलतफहमी है कि अराजकता फैलाकर चुनी हुई सरकार को गिराया जा सकता है। इस बीच चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के विरोध में कांग्रेस ने ऊना में प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल व उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में भाजपा के पक्ष में एक दलीय व्यवस्था बनाने की किसी भी कोशिश का कांग्रेस विरोध करेगी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि लोकतंत्र में हर मत की गरिमा और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता सर्वोपरि है। चंबा जिला में ग्रामीण स्तर पर प्लास्टिक का डोर टू डोर संग्रहण किया जा रहा है, जिसके लिए प्रक्रिया युद्ध स्तर पर जारी है। इस कार्य को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 के प्रावधानों के तहत अमलीजामा पहनाया जा रहा है। हमारे चंबा जिला संवाददाता ने बताया कि जिले की ग्राम पंचायतों को एडॉप्ट कर यहां प्लास्टिक कचरे का प्रभावी डोर टू डोर संग्रहण सुनिश्चित किया जा रहा है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अहम भूमिका निभा रहा है। इस मिशन के तहत प्लास्टिक कचरे को घर से ले जाने की व्यवस्था की गई है। इसी मिशन के तहत चंबा जिला की 159 ग्राम पंचायतों में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए एडॉप्शन प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। जिला के विकास खंड भरमौर के तहत 2 माह के दौरान लगभग 102 टन प्लास्टिक कचरा सीमेंट प्लांट को भेजा जा चुका है, जिसमें महीने यात्रा के दौरान एकत्रित कचरा भी शामिल है। वहीं विकास खंड चंबा में करीब 30 क्विंटल प्लास्टिक कचरा एकत्रित कर सीमेंट प्लांट भेजा गया है। विभागी में इसके लिए 4 जोन चिन्हित किए गए हैं। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
1: युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए कांगड़ा में आज से 11 अक्टूबर तक फिट कांगड़ा 2026 उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। एसडीएम डॉक्टर अंजलि गर्ग ने बताया कि बाण गंगा घाट पर होने वाले इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में युवाओं को फिटनेस, योग और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ा जाएगा।
6: इसके अंदर हम बहुत सी फिटनेस एक्टिविटीज को हम इसमें कर रहे हैं, जैसे कि डिवोशनल जुम्बा है, फिटनेस एक्टिविटीज जैसे कि जो HIIT वर्कआउट होता है, फिर इसके अलावा नाटी है, भंगड़ा है, योगा है, 10 को सुबह मैराथन और योगा है, फिर शाम में फिर से जुम्बा है, महाआरती है और 11 को हमारी क्लोजिंग में हमें दिव्या महाआरती और भजन क्लबिंग करवा रहे हैं। तो इसमें हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा यूथ है वो चिट्टा से दूर हटके, ड्रग से दूर हटके फिटनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, डिवोशन में इन्वॉल्व हो।
1: और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। अमर उजाला के शब्द हैं, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की वर्दी के लिए बद्दी में बनेगा कपड़ा, विदेशों तक पहुंचेगी सप्लाई। पंजाब केसरी का शीर्षक है, पिक एंड चूज नीति पर हाईकोर्ट सख्त, स्वास्थ्य शिक्षकों को 2012 से बढ़ा हुआ वेतनमान देने के आदेश। दैनिक जागरण ने लिखा है, सुक्खू ने बच्चों से किया वादा निभाया, 2 स्कूल भवनों के लिए 4 करोड़ रुपए जारी। सुंदरता और भव्यता में देश के बड़े मंदिरों को मात देगा मां श्री चामुंडा का दरबार, दिव्य हिमाचल की एक

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं, 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आनंद लीजिए गीतों का कारवा का। जी हाँ साथियों, और अब आगे के सफर में मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी रेडियो दोस्त प्रवेश।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज़ किया हमने इस प्यारे से गीत के साथ और इसमें आवाज़ दी थी जुबीन नौटियाल ने और इसे हमने लिया था फिल्म सनक से। आइए अब अगला गीत सुनते हैं फिल्म सिम्बा से और जिसे सुनेंगे आप राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में। संगीतकार हैं तनिष्क बागची और गीतकार है रश्मि विराग।

0: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और श्रोताओं अभी आप आनंद ले रहे हैं गीतों का कारवा का। तो आइए अब आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

लव आजकल। जी हाँ श्रोताओं, ये है अगली फिल्म का नाम और इस फिल्म के गीत में आप सुनने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी सी आवाज़।

0: वो भी हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन फिलहाल सुनिए ये प्यारा सा गीत।
1: तुम ऐसी ही कोई भी लड़की नहीं हो, कैसे एक्सप्लेन करूं कि तुम स्पेशल हो?
2: ये भी मैं बताऊं, मैं कैसे स्पेशल हूँ ये मुझे बताना है? तो तुम क्या करोगे, रोल क्या है तुम्हारा?

जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत जिसे आवाज़ दी थी अरिजीत सिंह ने। शेरशाह फिल्म से बी पराग की मनमोहक आवाज़ में सुनिए ये गीत जिसमें म्यूज़िक दिया है बी पराग ने और लिरिक्स हैं जानी के।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों का कारवा। श्रोताओं, समय हो रहा है 10:30। आइए अब मिलकर सुनते हैं पहाड़ों के सुर।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं पहाड़ों के सुर, तो आइए इन सुरों में एक सुर और जोड़ते हैं। जी हाँ, पवन डोगरा का, और सुनते हैं ये अगला लोकगीत।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: आइए श्रोताओं अब सुनते हैं अशोक कुमार की आवाज में ये अगला लोकगीत।

माफ कीजिए श्रोताओं, समय हो रहा है प्रादेशिक समाचार का। तो अब हम कार्यक्रम यहीं संपन्न करते हैं। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर अभी आप सुन रहे थे पहाड़ों के सुर। आइए, अब समय हो रहा है समाचारों का, तो सुनते हैं आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार।

0: प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य शिक्षकों को राहत देते हुए सरकार को उनके पक्ष में नए सिरे से निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि प्रमोशन वाले ऊंचे पद का वेतनमान उसके निचले पद से कम या बराबर नहीं हो सकता। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने 58 स्वास्थ्य शिक्षकों की याचिका को स्वीकार करते हुए सरकार की भेदभाव वाली नीति को गलत ठहराया है। अदालत ने सरकार के 30 जनवरी 2016 के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें स्वास्थ्य शिक्षकों को निचले पद के बराबर ग्रेड पे दिया गया था। राज्य सरकार शिमला जिले की पराला सेब मंडी के पास एचपीएमसी के खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र में एप्पल स्नैप्स बनाने के लिए नया प्लांट स्थापित करेगी। करीब 8 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत वाली इस परियोजना को बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में शिमला में हुई एचपीएमसी निदेशक मंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। जगत सिंह नेगी ने कहा कि इससे सेब के मूल्यवर्धन को बढ़ावा मिलेगा और कम कीमत पाने वाले सेब का भी व्यावसायिक उपयोग हो सकेगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं को संवैधानिक पदों का सम्मान करते हुए देश में अराजकता का माहौल नहीं बनाना चाहिए। मंडी में एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि देश में कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन की निंदा करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को गलतफहमी है कि अराजकता फैलाकर चुनी हुई सरकार को गिराया जा सकता है। नाहन विधानसभा क्षेत्र के तहत सेनवाला कोलावाला भूड़ सड़क गुलरिया में भारी भूस्खलन के बाद यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि इस स्थान पर बार बार भूस्खलन होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
1: इलाके के लोग इस सड़क से होते हुए कालाम इंडस्ट्रियल एरिया में और अपनी अपनी नौकरी के ऊपर जाते हैं और पूरी बरसात में लगातार ढांक के गिरने से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत नुकसान हुआ। पिछले कल बिना बरसात के गुलरिया ढांक के गिरने से और एक बहुत ही अजीब सी स्थिति बन गई है, किसी भी समय कोई भी व्यक्ति वहां से क्रॉस कर रहा हो उसके जीवन को खतरा बन गया। सरकार को इस मामले में तुरंत पहल करने की जरूरत है।
0: इस बीच लाहौल स्पीति जिला में देर रात हुई बर्फबारी के कारण ग्रामफू बाथल और लोसर ग्रामफू सड़क यातायात के लिए बंद है। रोहतांग दर्रे से सरचू तक सुबह 6 बजे से 5 बजे तक ही वाहनों को आवाजाही की अनुमति है। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए कांगड़ा में आज से 11 अक्टूबर तक फिट कांगड़ा 2026 उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। एसडीएम डॉक्टर अंजलि गर्ग ने बताया कि बाण गंगा घाट पर होने वाले इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में युवाओं को फिटनेस, योग और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ा जाएगा।
2: इसके अंदर हम बहुत सी फिटनेस एक्टिविटीज को हम इसमें कर रहे हैं, जैसे कि डिवोशनल जुम्बा है, फिटनेस एक्टिविटीज जैसे कि जो HIIT वर्कआउट होता है, फिर इसके अलावा नाटी है, भंगड़ा है, योगा है, 10 को सुबह मैराथन और योगा है, फिर शाम में फिर से जुम्बा है, महा आरती है और 11 को हमारी क्लोजिंग में हमें दिव्या महा आरती और भजन क्लबिंग करवा रहे हैं। तो इसमें हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा यूथ है वो चिट्टा से दूर हटके, ड्रग्स से दूर हटके फिटनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, डिवोशन में इन्वॉल्व हो।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट दिसंबर 2026 सत्र के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। योग्य उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप, JRF, सहायक प्रोफेसरशिप या PhD के लिए वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है और ये परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार।
3: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। श्रोताओं, 11:05 हो चुके हैं, आइए अब मिलकर सुनते हैं जय हिंद गीत माला।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला देशभक्ति गीत आपने सुना फिल्म आनंद मठ से।
1: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
2: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
3: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
1: हमेशा पूछो WHY। Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
3: आपका साइबर रक्षक।
1: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
2: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
3: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
1: हमेशा पूछो WHY। Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
3: आपका साइबर रक्षक।
0: श्रोताओं, अगला देशभक्ति गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों फिल्म से।

0: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
1: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
2: बस यही पूछो वाई रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक वाई आपको फ्रॉड से बचाए।
0: हमेशा

103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और श्रोताओं अभी आप सुन रहे हैं जय हिंद गीत माला। तो आइए बढ़ते हैं इसकी तरफ और अब सुनते हैं मिलकर अगला देशभक्ति गीत मुकेश की आवाज़ में।

103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। आइए अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। साथ ही साथ बहुत बहुत स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
2: तो आइए करते हैं शुरुआत।

0: हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है, मेहनत हिम्मत और लगन से कल्पना और योजना साकार होती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले हमारे श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
0: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवंगन, कौशल्या देवंगन, हेमलता और डिम्पल देवंगन।
1: और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
0: गाँव ढाणी कुतुब जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना लिखते हैं।
1: कार्यक्रम उमंग की प्रस्तुतकर्ता आदरणीय विमलेश जी और अजीत जी को सादर नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: 8 सितंबर 2026 को अरुणिमा सिन्हा के संघर्ष से सफलता की कहानी सुनकर वास्तव में बहुत प्रेरणा मिली
0: जी।
1: उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति यह सिखाती है कि निरंतर प्रयास और मजबूत संकल्प के सामने कोई भी शारीरिक बाधा सफलता की राह नहीं रोक सकती। साथ ही लुका छिपी कार्यक्रम ने बचपन की खूबसूरत यादें ताज़ा कर दी। आपका कार्यक्रम मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद भी है। आपकी कड़ी मेहनत और शानदार प्रस्तुति को दिल से सलाम
0: जी। आपने आगे लिखा है, दिनांक 10 सितंबर 2026 को कार्यक्रम उमंग के अंतर्गत भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला के जीवन एवं उपलब्धियों की जानकारी अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक रही। वहीं माउंटेन मैन दशरथ पांची के संघर्ष और दृढ़ संकल्प की प्रेरणादायक कहानी ने हमें सिखाया कि कठिन परिश्रम और अटूट संकल्प से बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। आपका ये कार्यक्रम भारत की विविधता में एकता और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों से परिचित कराता है, जिसका मुझे अपने परिवार के साथ बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बेहतरीन प्रस्तुति के लिए दिल से धन्यवाद एवं हार्दिक आभार।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार, क्योंकि आप परिवार के साथ हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं
0: जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
0: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
1: आप सबके संदेशों के लिए हमारा आभार। श्रोताओं, इसी तरह से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। पुरस्कारों और सम्मानों की चर्चा के इस पड़ाव पर आज हम बात करेंगे भारत के साहित्य जगत के अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान की, ज्ञानपीठ पुरस्कार की।
0: जी हाँ श्रोताओं, ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई और इसे देने का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी अक्सर लोगों को कम होती है। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी विमलेश जी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई और इसे देने का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी अक्सर लोगों को नहीं होती। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
0: ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का एक प्रमुख साहित्यिक सम्मान है। इसकी स्थापना 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा की गई थी और पहला पुरस्कार 1965 में प्रदान किया गया।
1: तो हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला था।
0: जी बताती हूँ, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम के महान कवि जी शंकर कुरुप को वर्ष 2065 में प्रदान किया गया था। उन्हें उनके काव्य संग्रह उड़क्कुझल यानी बांसुरी के लिए सम्मानित किया गया था।
1: बहुत सुंदर, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत ही भारतीय भाषाओं के साहित्य को सम्मान देने से हुई।
0: जी बिल्कुल। श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा भारत अनेक भाषाओं और साहित्यिक परंपराओं वाला देश है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक सृजन को पहचान और सम्मान देना है। तो अजीत जी, किन किन भाषाओं के साहित्यकारों को ये पुरस्कार मिल सकता है?
1: मिमलेश जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के साहित्य से संबंधित है
0: जी।
1: समय के साथ साथ इसका दायरा बढ़ा है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ओडिया, असमिया, पंजाबी, कश्मीरी, मैथिली और अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्यकार अब तक इस सम्मान से अलंकृत हो चुके हैं
0: जी। यानी ये पुरस्कार केवल किसी एक भाषा के साहित्य को नहीं, बल्कि भारत की विविध साहित्यिक सृजन एवं परंपराओं को सम्मान देता है।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही, यही इसकी सबसे सुंदर विशेषताओं में से एक है।
0: अजीत जी, अक्सर एक प्रश्न मेरे मन में आता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम ज्ञानपीठ क्यों रखा गया?
1: बहुत सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। देखिए, ज्ञानपीठ का अर्थ है ज्ञान का स्थान या ज्ञान का आसन। नाम से ही स्पष्ट है कि यह पुरस्कार साहित्य और ज्ञान की साधना को सम्मान देने की भावना से जुड़ा हुआ है।
0: तो इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कुछ प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम भी तो बताइए, हमारे विद्यार्थी श्रोता जरूर इस जानकारी से लाभान्वित होंगे।
1: जी जरूर। हिंदी साहित्य में सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, महादेवी वर्मा, नरेश

0: मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, कृष्ण सोबती और विनोद कुमार शुक्ल जैसे साहित्यकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं।
1: जी, तो चलिए अजीत जी, अब लगे हाथों आपसे भी एक प्रश्न। और वो प्रश्न ये है कि भारतीय साहित्य में ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला कौन थी?
0: ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न है विमलेश जी। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पहली महिला आशा पूर्णा देवी थी, जिन्हें 1976 में बांग्ला साहित्य के लिए यह सम्मान मिला था।
1: जी,
0: तो अब एक प्रश्न मेरी ओर से, क्या यह पुरस्कार केवल कविता के लिए दिया जाता है?
1: नहीं अजीत जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य की विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जिसमें कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और अन्य साहित्यिक रचनाएं भी शामिल होती हैं।
0: श्रोता, आपकी जिज्ञासा तो जरूर बढ़ रही होगी कि इस पुरस्कार में मिलता क्या है। तो आपको हम बता दें, इस पुरस्कार के साथ साथ प्रशस्ति पत्र, वाग्देवी की प्रतिमा और नकद राशि भी दी जाती है।
1: आपने कहा वाग्देवी की प्रतिमा, यानी माँ सरस्वती की प्रतिमा?
0: जी हाँ, भारतीय परंपरा में माँ सरस्वती को ज्ञान, विद्या और वाणी की देवी माना जाता है।
1: जी,
0: इसीलिए साहित्य के सर्वोच्च सम्मानों में वाग्देवी की प्रतिमा का होना तो बहुत ही अर्थपूर्ण है।
1: तो श्रोताओ, आज हमने जाना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू हुआ, पहला पुरस्कार किसे मिला और इसका साहित्य में क्या महत्व है।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात श्रोताओ, भारत की विविध भाषाएं हमारी सांस्कृतिक शक्ति हैं। हिंदी हो या बांग्ला, तमिल हो या मलयालम, मराठी हो या कन्नड़, हर भाषा अपने साथ एक समृद्ध साहित्यिक प्रवाह लेकर चलती है।
1: और ज्ञानपीठ पुरस्कार उस साहित्यिक विविधता को सम्मान देने वाली एक महत्वपूर्ण परंपरा है।
0: जी हाँ, बिल्कुल। तो आइए श्रोताओ, हम भी अपनी मातृभाषा और स्थानीय भारतीय भाषाओं के साहित्य को पढ़ें, समझें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाएं।
1: क्योंकि भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी स्मृतियों, विचारों और संस्कृति की पहचान भी है। तो श्रोताओ, कैसी लगी हमारी आज की जानकारी, जरूर लिख भेजिएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा आज का प्रश्न है श्रोताओ, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला और उनकी भाषा का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला और उनकी भाषा का नाम बताइए।
0: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है सीखो।
1: ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ सिंह जी द्वारा रचित कविता सीखो का संगीत रूपक है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि हमें प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करना चाहिए और उससे शिक्षा लेनी चाहिए।
0: सीखो। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
0: भौरों से नित गाना,
2: भौरों से नित गाना,
0: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
0: सीखो शीश झुकाना,
2: सीखो शीश झुकाना,
0: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
0: कोमल भाव बहाना,
2: कोमल भाव बहाना,
0: दूध तथा पानी से सीखो,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
0: मिलना और मिलाना,
2: मिलना और मिलाना,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: जगना और जगाना,
2: जगना और जगाना,
0: लता और पेड़ों से सीखो,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
0: सबको गले लगाना,
2: सबको गले लगाना,
0: दीपक से सीखो जितना,
2: दीपक से सीखो जितना,

0: हो सके अंधेरा हरना,
1: हो सके अंधेरा हरना,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: सच्ची सेवा करना,
1: सच्ची सेवा करना,
0: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
0: जीवन पथ में बढ़ना,
1: जीवन पथ में बढ़ना,
0: और धुएं से सीखो हरदम,
1: और धुएं से सीखो हरदम,
0: ऊंचे ही पर चढ़ना,
1: ऊंचे ही पर चढ़ना।
0: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख

0: सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम सीखो, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: ये कार्यक्रम भारतीय सेना के महानायक और वीर योद्धा सूबेदार जोगिंदर सिंह जी के जीवन और भारत चीन युद्ध के समय उनके द्वारा प्रदर्शित असाधारण वीरता और शौर्य का विवरण देता है। उन्हें मरणोपरांत भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, हमने अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्धवीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
1: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
0: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
1: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
2: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या वॉर शुरू हो गई?
3: हाँ।
1: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
0: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
1: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे

0: पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
1: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
0: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
1: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
2: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
3: जी सुबेदार साहब।
2: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
3: जी सुबेदार साहब।
2: बोले सोनिहाल।
3: सत श्री अकाल।
0: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय। कड़ाके की ठंड थी।
4: तेजा सिंह, और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
5: हां साहब।

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के लहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
2: जो बोले सो निहाल।
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
3: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप

0: देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थीं और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
1: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
2: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
1: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी।
1: उनका अस्थि कलश मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और वहां उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
2: सूबेदार जोगिंदर सिंह, आपको हमारा शत शत नमन।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
4: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार, इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
5: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
4: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती।

0: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हों। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
1: श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है।
2: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी सूचना। इस रविवार दिनांक 11 अक्टूबर 2026 को सुबह 9 बजे से 9:50 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का विषय होगा कटे होंठ का समाधान और दिवाली के पटाखों से होने वाली जलन का उपचार। इस विषय से संबंधित जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर ठाकुर थुसु। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी धर्मशाला के FM 103.4 MHz पर सुन सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट कर लें। रविवार दिनांक 11 अक्टूबर 2026 समय सुबह 9 बजे से 9:50 तक। और प्रश्न पूछने के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 01892224391। और हमारा ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन EIR पर भी। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए, जिसे लिखा है नीलेश मिश्रा ने, धुन बनाई है MM करीम ने और इस गीत को गाया है श्रेया घोषाल ने। जिस्म फिल्म का ये गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।

सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत जो हमने लिया है फिल्म मर्डर से, और इस गीत को गाया है कुणाल गांजावाला ने।

कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए, समीर का लिखा हुआ है और नदीम श्रवण का संगीतबद्ध किया हुआ। इस गीत को गाया है कुमार सानू और सारिका ने। फिल्म का नाम है हाँ मैंने भी प्यार किया।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए दिल से फिल्म का ये नगमा। आवाजें हैं AR रहमान, अनुराधा श्रीराम और अनुपमा की।

श्रोता सखियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के कार्यक्रम सुनो सखी में। साथियों, कभी कभी ज़िंदगी की भागदौड़ में हम बहुत कुछ पीछे छोड़ आते हैं, वो छोटी छोटी बातें जो कभी हमारे दिन को खास बना दिया करती थी। किसी अपने का हाल पूछने के लिए दरवाजे तक जाना, मिलने पर घंटों बातें करना, पुरानी फ़ोटो निकाल कर

यादों में खो जाना और किसी की आवाज़ सुनने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करना। आज हमारे पास अपनों से जुड़े रहने के इतने साधन हैं कि दुनिया की कोई भी दूरी बड़ी नहीं लगती। मोबाइल उठाइए, मैसेज भेजिए और कुछ ही पलों में जवाब आपके सामने होता है। लेकिन सखियों, क्या आपको कभी लगता है कि इस तेजी में हमने इंतज़ार की मिठास को कहीं खो दिया है? सखियों, एक समय था जब अपनों से बात करने का सबसे खूबसूरत जरिया हुआ करती थी चिट्ठियाँ। जी हाँ, लेटर। और आज इसी खूबसूरत याद से जुड़ा है हमारा विषय, क्योंकि आज है विश्व डाक दिवस। हर साल 9 अक्टूबर यानी आज ही के दिन विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। और ये दिन हमें डाक व्यवस्था की उस महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है जिसने वर्षों से लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखा है। याद कीजिए वो समय जब घर के दरवाजे पर आपका डाकिया आता था और उसकी आवाज़ सुनते ही दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। किसी को मायके से माँ की चिट्ठी का इंतज़ार होता था, किसी को दूर शहर में पढ़ रहे बेटे की खबर का, और किसी के लिए किसी अपने के हाथों से लिखे हुए कुछ शब्द ही सबसे बड़ी खुशी होते थे। चिट्ठी सिर्फ कागज़ पर लिखे शब्द नहीं होते थे, इसमें लिखने वाले की भावनाएं, उसकी चिंता, उसका प्यार और उसकी यादें समाई होती थी। लोग उन चिट्ठियों को पढ़कर संभाल कर रखते थे और कई सालों बाद भी वही कागज़ पुरानी यादों का दरवाज़ा खोल देता था। आज मैसेज कुछ सेकंड में पहुंच जाते हैं, लेकिन चिट्ठी लिखने और उसे पाने का एहसास शायद आज भी सबसे अलग है। तो सखियों, इस विश्व डाक दिवस पर क्यों ना हम भी किसी अपने के नाम दो शब्द लिखें बिना किसी खास वजह के, सिर्फ इसलिए कि वो रिश्ता हमारे लिए खास है। कुछ एहसास कहे नहीं जाते, लिखे जाते हैं। कुछ रिश्ते दूर होकर भी दिल के पास रहते हैं। चिट्ठी भले ही पुरानी हो जाए, उसमें लिखे जज्बात कभी पुराने नहीं होते। सखियों, इसी खूबसूरत एहसास के साथ हमारे आज के कार्यक्रम सुनो सखी से जुड़े रहिए और अपनों को समय देते रहिए। फिलहाल हम लेकर आए हैं आपके लिए मनोरंजन का पिटारा, तो आइए मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

जी हाँ श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप सुनो सकी। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं अब हम अपने कार्यक्रम की तरफ और इस ब्यूटीफुल सॉन्ग के बाद एक बार फिर से सुनाते हैं आपसे बातें, करते हैं जानकारियाँ साझा। ख्वाब आँखों में सजाने से कहाँ पूरे होते हैं, उन्हें सच करने के लिए कदम भी बढ़ाने होते हैं। रास्ते चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, हौसलों से चलने वाले ही मंजिल तक पहुंचते हैं। सखियों, जिंदगी भी कितनी खूबसूरत और अनोखी है ना। कभी धूप की तरह तपाती है तो कभी ठंडी हवा की तरह हमारे मन को सुकून दे जाती है। कभी रास्ते इतने आसान लगते हैं कि हम मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, और कभी ऐसा महसूस होता है जैसे हर कदम पर कोई नई चुनौती हमारा इंतज़ार कर रही है। ये हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है, गिरने के बाद संभलना सिखाती है और टूटने के बाद फिर से अपने सपनों को जोड़ने का हौसला देती है। सखियों, हम सभी के मन में कोई ना कोई सपना ज़रूर होता है। कोई अपने परिवार को बेहतर जीवन देना चाहता है, कोई अपने ऊंचे करियर की सोचता है, कोई अपने बच्चों का फ्यूचर संवारने में लगे होता है, तो कोई उम्र के किसी भी पड़ाव पर अपने अधूरे सपनों को फिर से जीने की पूरी कोशिश करता है। कभी कभी हम अपने सपनों को दिल में तो बहुत संभाल कर रखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की राह में आने वाली मुश्किलों से डर जाते हैं। हमें लगता है कि शायद हम में वो काबिलियत ही नहीं है, शायद हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं देगी या शायद अब देर हो चुकी है। लेकिन सखियों, याद रखो, सपनों की कोई उम्र नहीं होती और उन्हें पूरा करने की शुरुआत के लिए कभी देर भी नहीं होती। साथियों, मेहनत, धैर्य और खुद पर विश्वास, यही आपके सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन उन सपनों को सच करने का साहस जो है वो हर किसी में नहीं होता। वो कहते भी है ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता सखियों, हौसलों से ही उड़ान होती है। बिल्कुल सखियों, एक दिन में सफलता कभी नहीं मिलती, उसके पीछे होते हैं अनगिनत छोटे छोटे प्रयास। असफलताओं के बाद भी कोशिश करते रहने का जज्बा, अपने मन को समझाकर आगे बढ़ने का साहस और खुद पर विश्वास बनाए रखने की ताकत। जैसे कई बार हम किसी सफल व्यक्ति को देखकर कहते हैं, वाह, इसकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। लेकिन सखियों, हमें उसकी सफलता तो दिखाई देती है, उसके पीछे उसकी छिपी मेहनत नहीं दिखती। हमें उसके अचीवमेंट, उसकी खुशी तो नज़र आती है, लेकिन उसके एफर्ट्स जो हैं वो हमें नहीं दिखाई देते। क्योंकि अगर आज आपकी ज़िंदगी में कोई सपना है और रास्ता मुश्किल लग रहा है, तो घबराइए मत और रुकिए मत। हो सकता है मंजिल अभी थोड़ी दूर हो, लेकिन विश्वास रखिए, आपका हर छोटा कदम आपको आपकी मंजिल तक ज़रूर लेकर जाएगा। श्रोताओं, कभी कभी मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आपकी मेहनत वेस्ट हो गई। बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है, उसी तरह सपनों को हकीकत में बनाने में भी जो है आपको थोड़ा समय, धैर्य और निरंतर प्रयास

0: की जरूरत होती है। याद रखिए, थककर बैठ जाना हार नहीं है, हार तो तब है जब हम चलना ही छोड़ देते हैं। मुश्किलें चाहे जितनी भी आए, हम अपने हौसलों को कम नहीं करेंगे, यही सोच हमारी होनी चाहिए। सखियों, अपने सपनों को छोटा कभी मत समझो। अपने लिए सोचना बहुत बड़ी बात है, और अगर आपको खुद पर यकीन है तो आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो सखियों, हमारा आज का संदेश बिल्कुल सरल लेकिन दिल से जुड़ा हुआ है। आप सपने देखिए, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, उन्हें अपना लक्ष्य बनाइए और फिर पूरे मन से, पूरी ईमानदारी और पूरे विश्वास के साथ मेहनत कीजिए। क्योंकि जब मेहनत सच्ची होती है ना, तो इरादे जो है ना, वो खुद ब खुद मजबूत हो जाते हैं। और सफलता देर से ही सही, लेकिन एक दिन श्रोताओं दस्तक ये ज़रूर देगी। याद रखिए, आपके सपने ही आपकी असली पहचान हैं, आपकी मेहनत है, आपकी ताकत है, और सबसे बड़ी बात, आपका हौसला आपकी सबसे बड़ी उड़ान है। जी हाँ श्रोताओं, सुनो सखी कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने श्रोता सखियों से बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं और कहते भी हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप उन बातों को सुन करके ज़रूर कहीं ना कहीं तो ये सोचती होंगी कि ये काम तो बहुत आसान है, हम भी कर सकते हैं। तो फिर ठीक है सखियों, बिल्कुल कीजिए आप ये, और हमारे ये कार्यक्रम सुनो सखी से यूं ही जुड़े रहिए। अब हम आपको एक गीत सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय।
2: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर, बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क, अ टाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई। गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय।
2: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर, बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क, अ टाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई। गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय।
2: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर, बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क, अ टाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।

0: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
1: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
2: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
1: आपका साइबर रक्षक।
3: हर बैंक के अलग अलग KYC पेपर्स, काश एक चाबी होती।
4: एक चाबी है CKYC ID।
3: CKYC मतलब?
4: बैंक आपके KYC रिकॉर्ड CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14-डिजिट CKYC ID। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट।
3: वाह, RBI कहता है
4: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
0: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
1: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और

0: रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है, इसलिए
1: हमेशा पूछो WHY Why कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
0: आपका साइबर रक्षक।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
3: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: जी हां सखियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सुनो सखी के आखिरी पड़ाव में, जहां बात करते हैं स्वाद की। सब्जियों के रंग जब मिल जाए, मसालों की खुशबू संग खिल जाए, कुरकुरा सा स्वाद जो मन को भाए, तो क्यों ना आज वेज कटलेट बनाया जाए। जी हां सखियों, अब अगर आप भी रोज़ रोज़ एक ही नाश्ते से बोर हो चुकी हैं, तो अब बनाइए वेज कटलेट जो बच्चों बड़ों और सभी को पसंद आते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। उबले हुए आलू आप 2 से 3 लें, बारीक कटी हुई 1 गाजर, बारीक कटी हुई 1 शिमला मिर्च, आधा कप उबले हुए मटर, बारीक कटी फ्रेंच बीन्स वो आधा कप लें, बारीक कटा हुआ प्याज वो भी 1 लें, हरा धनिया जो है वो 2 बड़े चम्मच लें, हरी मिर्च 1, अदरक पीसा हुआ 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला आधा छोटा चम्मच और नमक जो है वो आपने स्वाद अनुसार लेना है। और इसके अलावा आपको ब्रेड भी लेनी है जो कि पीसी हुई हो, वो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकती हैं, और थोड़ा सा नींबू का रस, और तेल आपको चाहिए फ्राई करने के लिए। अब सखियों विधि नोट कीजिए। सबसे पहले आप गाजर, मटर और फ्रेंच बीन्स को हल्का उबाल लें। अब उबले हुए आलू को अच्छी तरह से मैश कर लें और बाकी की सभी सब्जियां इसमें मिक्स कर लें। अब बाकी के मसालों को और नींबू का रस जो है वो इसमें अच्छी तरीके से मिला लें। और अब ब्रेड का चूरा जो आपने लिया है वो इसमें आपको डालना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सखियों ब्रेड का चूरा जो है ना वो आपके कटलेट को कुरकुरा बनाएगा। फिर अपने हाथों पर तेल लगाकर मिश्रण की छोटी छोटी लोइयां बना लें और उन्हें चपटा करके कटलेट का आकार दें। अब एक नॉन स्टिक पैन में थोड़ा सा तेल गरम करें और कटलेट को धीमी आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेक लें। बस सखियों तैयार हैं हमारे स्वादिष्ट और रंग बिरंगे वेज कटलेट। अब इन्हें प्लेट में निकालिए और साथ में रखिए हरा धनिया, पुदीने की चटनी या मीठी इमली की चटनी, और साथ में मज़ा ले इस गीत का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना जरा हट के जरा बच के फिल्म से ये गीत, और अब अपनी रेडियो सखी प्रवेश को कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए अनुमति। कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग रहा अंकित धीमान का और कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर दोपहर के 1 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: दो बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दिल्ली में दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर भारी यातायात की आशंका को देखते हुए लिया गया है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
2: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
1: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को

मंगलवार को मतदान हुआ था। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत के दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी बीमा दावों पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट EDAR, वाहन और सारथी पोर्टल तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। ब्रिटेन का प्रतिनिधिमंडल 12 से 16 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर रहेगा। इसमें उत्तरी इंग्लैंड के विभिन्न हिस्सों से करीब 200 प्रतिनिधि शामिल होंगे। ग्रेट नॉर्थ ट्रेड मिशन का उद्देश्य भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA के अंतर्गत व्यापार तथा निवेश के अवसर तलाशना है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय विदेश सेवा दिवस के अवसर पर विकसित भारत के संकल्प और देश तथा उसके नागरिकों की सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 756 अंक बढ़कर 72,350 पर, जबकि निफ्टी 253 अंक बढ़कर 22,485 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। बहुत सारे श्रोताओं से हमने पूछा कि भाई आपने भी कभी फूल भेजा था, तो अभी तक तो जवाब नहीं आया, लेकिन अगर हाँ आपने कभी पत्र में फूल रखकर भेजा था तो ज़रूर बताइए। और फूल मुरझा जाते थे लेकिन उसकी खुशबू बाकी रहती थी। जब कभी कई साल बाद वो चिट्ठी निकाली तो उसमें मुरझाया हुआ फूल, लेकिन ऐसे लगता था वो ताजगी वापस लौट आई है, वो खुशबू वापस लौट आई है। हमने पूछा था कौन है हीरोइन, नूतन। सभी श्रोताओं ने इसका जवाब सही दिया, और मनीष और साथ में सुलोचना भी हैं इस फिल्म में। एक श्रोता ने लिखा है कि बस कुछ ही लम्हों के बाद लाजवाब प्रस्तुति में सुरीला सफ़र शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही शुरू होगा ममता जी द्वारा पूछे जाने वाले एक से बढ़कर एक दिलचस्प सवालों का सिलसिला। तो हम भी कमर कस के आपके पूछे जाने वाले हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो फिर दीजिए उत्तर फटाफट। और जब ये हम पहली पूछते हैं तो पहली का जवाब तो आप फटाफट दे ही देते हैं, साथ में ये भी बताते चलिए कि चिट्ठी आप अभी भी लिखते हैं या नहीं। किसका पत्र आपके नाम आया और बड़ा लंबा हुआ करता था पत्र? क्योंकि कई लोग पत्र लंबे लिखने के आदि होते हैं, कि जैसे किसी के घर में भाई होते हैं, लंबा पत्र लिखते हैं, कुछ कविताएँ भी उसमें लिख देते हैं, कुछ थोड़े से किस्से भी बयां कर देते हैं, बहुत तफसील से और फुर्सत से पत्र लिखते हैं। ऐसा कोई पत्र आपके पास है, संभाल कर रखा है आपने, कोई चिट्ठी संभाल कर रखी है तो ज़रूर बताइए। अब जो श्रोता हैं उन्होंने लिखा है कि आपके द्वारा पूछा जाने वाला पहला प्रश्न शायद यही होगा कि बताइए अपनी पहली बार सबसे पहले खत किसको लिखा था। क्या बात है भाई, ज़रूर बताइए। और अब दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि बताइए आपने विविध भारती में कभी कोई पत्र लिखा है? बिल्कुल, ये भी हम पूछ रहे हैं। और हमारी ओर से जो आप सवाल कर रहे हैं ये हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर बताइए, क्योंकि हमने तो विविध भारती के नाम पत्र लिखे थे, पत्रावली कार्यक्रम में शामिल भी हुआ था, तो आपकी कोई याद है तो ज़रूर साझा कीजिए। और मन चाहे गीत कार्यक्रम में भी आप पत्र लिखते ही होंगे, तो वो भी आप बता सकते हैं। और आगे इन्होंने लिखा है कि एक से बढ़कर एक गीत सुनवाए जा रहे होंगे और हम भी आनंदित होकर कार्यक्रम का लुत्फ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपका कि आप इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और शुरू से आखिरी तक इस कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि डाकिया जो खाकी वर्दी में होते थे, बरोठे की कुंडी खड़खड़ा कर जोर की आवाज़ लगाते थे, सारे घर के लोग सब काम छोड़कर घर के दरवाजे पर दौड़ पड़ते थे, किसकी चिट्ठी है, किसके नाम आई है, फिर डाकिया एक एक करके जो पोस्ट आती थी दे देकर चले जाते थे, फिर सब पहले चिट्ठी पढ़ते थे, बाद में बाकी काम, और बहुत अच्छी बुरी खबर देने का काम तार करता था। पति या घर के और आदमी जो बाहर काम करते थे तो पहली तारीख को मनी ऑर्डर का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से होता था। वो हड़बड़ाहट, वो बेचैनी, वो सिर्फ एक डाकिया की वजह से ही संभव होता था, पर अब वो ज़माना कहाँ, एक सेकेंड भी नहीं लगते खबर पैसा और हालचाल आदान प्रदान करने में। बिल्कुल सही बात है, रक्षाबंधन में राखी हो या भाई दूज में टीका, सब डाकिया ही बाहर पहुँचाते थे, और डाकिया का बड़े बेसब्री से इंतज़ार होता था। डाकिया का लोग स्वागत करते थे उन्हें, गाँव में तो बाकायदा गुड़ की डली ले आते थे, गुड़ और पानी पिलाया करते थे, कई लोग दरवाजे पर अपने खाट बिछाकर उनका स्वागत करते थे। अगर कोई अच्छी खबर ले आते थे तो

उनके साथ देर तक गुफ्तगू होती थी, फिर पूरे परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर सुनते थे पत्र। पढ़ने वाला कोई एक होता था, सुनने वाले सभी, और सबकी आंखें नम होती थी। कोई अपने आंचल से आंसू पोंछ रहा होता था, कोई रुमाल से। बहरहाल बहुत सारी यादें, आप अपनी यादें साझा कीजिए। और अब अगला गाना ये।

फिल्म का नाम बता दीजिए। आसान सा सवाल है, फिल्म का नाम पूछना है आपको। और ये भी बताते चलिए, किसके पत्र आपके नाम ज्यादा आते थे?

अर्धांगिनी फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज़ थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, वसंत देसाई का संगीत था। और श्रोताओं ने सही जवाब दिया, कुछ श्रोताओं ने ये भी लिखा है कि हमें फिल्म का नाम नहीं पता, बता दिया हमने। और एक श्रोता ने लिखा है कि लंबा पत्र प्रेमिकाओं और पत्नी को लिखी जाती थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने अपने गर्लफ्रेंड को गुलाब फूल दिया और वो फूल एक दिन अपने पिता के सामने मिल गया, खोलते समय मैंने बुक में दिया था, अब वो मेरे साथ है। और एक श्रोता ने लिखा है कि पत्रों में फूल आदि चिपका कर देने की असफल कोशिश मैंने भी बहुत बार की है, मगर बदले में हर बार मेरे मुंह पर किसी न किसी का हाथ ही चिपका है। और एक श्रोता ने लिखा है कि चिट्ठी ना आने का दर्द बॉर्डर फिल्म में देखा था, और जब चिट्ठी आती है तो पढ़कर सुनाने का वाकया भी बड़ा मज़ेदार है। गाना बजता है, संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, ये पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। सचमुच ये चिट्ठी वाली बातें और चिट्ठी वाले गाने बेहद मार्मिक हो जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि वो खुशबू से भरी चिट्ठियाँ महका देती थी, रोम रोम को संवेदनाओं से भरे शब्द कितने सुकून भरते थे, और हाँ, हर रोज़ 11 बजे पोस्टमैन का इंतज़ार सबको रहता था। और एक श्रोता ने बताया है कि उपन्यास गोवर्धन राम माधवराम त्रिपाठी के उपन्यास से बनी फिल्म थी सरस्वती चंद्र। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी मम्मी ज़्यादातर खत मामा जी को राखी पर भेजती थी और मुझसे लिखवाती थी, उसमें सबसे पहली लाइन होती थी, आदरणीय मामा जी, यहाँ सब कुशल मंगल है, आशा करती हूँ वहाँ भी सब कुशल मंगल से होंगे, मुझे बहुत याद आता है वो सब। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं एक बंगालन हूँ, सिर्फ और सिर्फ विविध भारती के पत्रावली कार्यक्रम में चिट्ठी लिखने के लिए मैं अपने आप बगैर हिंदी की कोई औपचारिक तालीम के हिंदी सीखी, वो भी विविध भारती सुन सुनकर। क्या बात है भाई, बड़ा अच्छा लगा ये जानकर। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत ज़्यादा उस दौर में आने वाले हल्के पीले रंग का पोस्ट कार्ड और उसके साथ जवाबी पोस्ट कार्ड भी साथ में आते थे, जब पोस्ट कार्ड को अन्य व्यक्ति भी पढ़ सकते हैं। अंतर्देशीय पत्र जो नीले रंग का चारों तरफ से पैक हो जाता था, उसे दूसरा नहीं पढ़ सकता था। इसके अलावा बैरंग चिट्ठी, ये एक सफ़ेद कागज़ पर लिखे जाने वाला अपनी व्यथा का पत्र होता था, जिसका पेमेंट पेनल्टी के रूप में पहुँचाने वाले जिसके पास पहुँचता था वो अदा

करते थे। कई बार बहुत आर्थिक तंगी के कारण भी कुछ चिट्ठियां बैरंग आती थीं जो आपको अदा करना पड़ता था, जिसकी कीमत अदा करनी पड़ती थी। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे नाम अभी भी पत्र आते हैं, वे बहुत अच्छे इंसान हैं, अपने कार्य में बहुत ही कुशल हैं वो जो चिट्ठी पहुंचाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि सगाई और शादी के बीच 6 माह का गैप होने के कारण हम दोनों का पत्रों का सिलसिला चला। वो चिट्ठियां हमने आज भी सहेज कर रखी हैं, उस लिफाफे को हमने दिया है अमोल लेने दी, और 36 बरस हो गए। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने अमीन साहनी साहब को पत्र लिखा था। और भी बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं अपनी बातें, अपने जज्बात। तो आप भी अगर आपने नहीं लिखा तो लिखिए और ज़रा बताइए फिल्म का नाम और कौन है हीरो हीरोइन।

कन्यादान फिल्म का ये गाना था और हमने पूछा था कौन है हीरो कौन है हीरोइन। शशि कपूर और आशा पारेख हैं और सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया है। इधर हमने सवाल पूछा नहीं कि उधर जवाब आने शुरू हो गए। वही साथ में अपनी बातें और यादें भी

साझा करते चलिए कि किन के पत्र आपने संभाल के रखे हैं। बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि हमने तो आज भी कुछ चिट्ठियां संभाल के रखी हैं, क्या आपने भी रखी हैं? वैसे जब ये बात आती है, संभाल के रखने की बात आती है, तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अब जगह नहीं बची है। भाई, बाकी चीज़ों के लिए आपके पास जगह है, लेकिन किसी की लिखी चिट्ठी के लिए जगह नहीं है। किसके पत्र आपके पास ज़्यादा आते थे, ज़रा ये बताइए। सहेलियों के पत्र, पिता के पत्र, पति का या फिर किसी और का? क्या एक ही शहर में रहते हुए एक दूसरे को पत्र लिखा है? कई बार एक ज़माना था जब लड़कियां बहुत जल्द से घर से नहीं निकलने पाती थी, तो वो पत्रों से अपनी बात एक दूसरे से, अपनी सहेलियों से साझा करती थी। क्या आपने भी ऐसा किया है? एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे पास मेरे पापा जी का पत्र है, अब वो नहीं है पर पत्र में उनकी यादें हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज छत्तीसगढ़ के एक डाकिये की याद आ गई जो ठीक 11 बजे आया करता था। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मैंने विविध भारती के नाम पत्र लिखे मनचाहे गीत में, अब तो पोस्ट कार्ड आसानी से नहीं मिलते हैं और पत्र वाला डब्बा भी नहीं मिलता है, मतलब पोस्ट बॉक्स भी आसानी से नहीं मिलते हैं। भाई, अगर शौक है तो विविध भारती के नाम तो आप पत्र लिख ही सकते हैं। वैसे भी अभी लंबी तादाद में श्रोताओं के पत्र आज भी आते हैं मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तो पहली बार और सिर्फ एक ही खत मेरी दीदी ने मेरे लिए भिजवाया था, मेरी छोटी बहन के हाथों। वो खत आज भी मेरे पास है, पर अब न ही मेरी दीदी मेरे साथ है न छोटी बहन। मैं जब भी उसे पढ़ती हूँ आँखें नम हो जाती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आपका खत मिला फिल्म शारदा रामेश्वरी पर ये फिल्माया गया हुआ है, मतलब जो मैंने पूछा था कि कोई फिल्म की सिचुएशन जहाँ पर खत है, पत्र पढ़ा जा रहा है, हकीकत फिल्म में भी एक दृश्य आता है। एक श्रोता ने लिखा है कि ये बात बहुत हंसी की है, मैं आप सबको लेकिन बताऊंगा। उस समय 16 बरस का रहा होऊंगा, मैंने एक लड़की को चुपके से एक पर्ची में कुछ लिखने के बाद उस पर्ची को किसी बच्चे के हाथों उस लड़की को देने के लिए कहा, लेकिन वो पर्ची लेकर उस लड़की की मम्मी को दे आया। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि ऐसे विषय को आज आपने छेड़ दिया है जिससे 90% श्रोताओं का अतीत जुड़ा हुआ है, अतः सभी अपने अतीत को खंगाल अनुभवों को साझा करने में जुटे हुए हैं। तो ज़रा जल्दी अतीत को साझा कीजिए, क्योंकि अब घड़ी की ओर देखिए 1:30 हो रहे हैं, तो अब आधे घंटे और हैं आपके पास। जल्दी जल्दी अपनी अतीत की बातें साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी का अहम हिस्सा रहा है पत्र, गांव से शहर पढ़ने आया तब घर वालों से खत के द्वारा ही संदेश का आदान प्रदान होता था और तब उन संदेशों का बड़ी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता था। चलिए अब अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। आपको बूझना है एक बार फिर कौन है हीरो कौन हीरोइन।

तीन देवियां फिल्म का गाना था और सभी श्रोताओं ने सही बूझा है, देव आनंद और नंदा पर फिल्माया गया था ये गाना और सचिन देव बर्मन का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी का गीत था। और बहुत सारे श्रोता अपनी यादें साझा कर रहे हैं, सचमुच हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी यादें और बातें पढ़ते हुए और आपको पढ़कर सुनाते हुए। ऐसे लग रहा है कि हम भी कोई पत्र लिए हैं पढ़कर सुना रहे हैं और आप सभी हमारी आंखों के सामने माइक्रोफोन के सामने बैठे हुए हैं विविध भारती के स्टूडियो में। सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तो काफ़ी पत्र उनको लिखा है, मतलब हमारे एक श्रोता ने लिखा है, ये लिखी है ये बात बहुत पहले, पर वे उन्हें संभाल कर रखे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि ये एक तरफा डैश डैश डैश रहा है। भाई पता कर लेना चाहिए था ना चिट्ठियों के माध्यम से। एक श्रोता ने लिखा है कि आर्मी में ड्यूटी के दौरान अरुणाचल प्रदेश की बर्फीली इलाकों में घर वालों की चिट्ठियां बहुत देर से मिलती थी, पढ़ने के बाद सुकून मिल जाता था। और एक श्रोता ने लिखा है कि फरमाइशी कार्यक्रम में एकमात्र पत्र लिखा गया जो शामिल भी हुआ था आकाशवाणी ग्वालियर में। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे मेरे साथी दोस्तों के पत्र ज़्यादा आते थे, हम जब पढ़ाई करते हुए स्कूल से कॉलेज गए तब बिछड़ गए थे। इस समय हम एक दूसरे को खत लिखा करते थे। एक श्रोता की टिप्पणी है, जब मेरी शादी होकर राजस्थान गई, दिल्ली से मम्मी पापा खत लिखते थे, मैं भी उन्हें लिखती। मेरे माँ बाबूजी के खत आज भी मेरे पास संभाल कर रखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक मेरे कमेंट ना पढ़ें कोई बात नहीं, पर विविध भारती से शिकायत वाला पत्र तो पढ़िए। दो अन्य बहनों ने भी विविध भारती के अक्षम्य लापरवाही बताई है। दरअसल आपको ये भी बता दें कि ये शिकायती प्रोग्राम नहीं है। अगर आपको विविध भारती के किसी कार्यक्रम से शिकायत है तो कृपया मेल पर आप शिकायत भेज सकते हैं। ये तो सुरीला सफ़र इसका नाम है, सुरीली बातें सुरीली गाने। अगर हाँ इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई कोई बात है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन उसमें हम शामिल करें ना करें ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़रूरी है। कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई बात हम ज़रूर शामिल करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हमने आज भी अपना अपॉइंटमेंट लेटर संभाल कर रखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि अब कोई पत्र नहीं भेजता है। एक श्रोता की टिप्पणी है, हमने तो सबसे ज़्यादा पत्र लिखे अपने दादाजी को, वो बहुत रोते थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैंने प्यार किया फिल्म देखी थी तो वो कबूतर वाले गाने को देखकर हमने पोस्ट कार्ड को कबूतर के आकार में काट कर चाचा चाची को पत्र लिखते थे। क्या बात है भाई। एक श्रोता की टिप्पणी है, खत के बारे में मेरी एक याद है जो बहुत ही मजाकिया है। एक लड़के ने मुझे खत लिखा था और मैंने पढ़ने के बाद उसको जमीन में दबा दिया था। उसके बाद मैं भूल गई वो जगह कहाँ थी। क्या बात है भाई, लगता है घर वालों से छुपाई होगी बात। बेहतर बात ये होती कि आप घर वालों को बता देती कि ये पत्र आया है फलाने की ओर से या जो भी नाम था।

बहरहाल चलिए, अब बहुत सारी बातें आ रही हैं और हम गानों के बीच बीच में पढ़ते जाएंगे। ज़रा ये गाना सुनिए और बूझिए कौन है हीरो कौन है हीरोइन। फिल्म का नाम तो बता ही सकते हैं आप।

शक्ति फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत था, अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल पर फिल्माया गया था ये गाना। सभी श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया है इसका भी। एक श्रोता ने लिखा है कि जब खत की बात होती है तो बशीर साहब का एक शेर याद आता है, जिस पर हमारी आँख ने मोती बिछाए रात भर, भेजा तुझे कागज वही हमने लिखा कुछ भी नहीं। क्या बात है भाई, अब ज़माना और है, ईमेल और व्हाट्सएप के ज़रिए ही मोहब्बत का इजहार हो जाता है, लेकिन उसमें वो रूह नहीं। आज भी हम ख़त पर विश्वास करते हैं, माँ पिता का पत्र, प्रेमी या किसी सहेली का पत्र, क्योंकि उन पत्रों के शब्दों में होती है आत्मीयता, लिखावट से पता चलती है प्रेषक की तन्मयता, और पत्र पढ़ते समय पत्रों में से झांकता है चेहरा लिखने वाले का। क्या बात है भाई, अब तो मोबाइल के ज़रिए अगर प्रेम का इजहार होता है तो तुरंत इमोजी के ज़रिए पता चल जाता है, या तुरंत शब्दों के ज़रिए, वाक्यों के ज़रिए। तब जब पत्र लिखे जाते थे, प्रेम पत्र, तो इंतज़ार होता था, इंतज़ार में रात भर आँखें तकती थीं कि कब वो उस पत्र का जवाब आएगा। कभी ऐसा भी अनुभव आपके साथ हुआ होगा, और ये इंतज़ार होता था कि लिखने वाला कब लिखेगा, क्या लिखेगा, जाने कौन सी बात होगी, ये भी जिज्ञासा हुआ करती थी। एक श्रोता ने लिखा है कि पत्र केवल कागज़ का टुकड़ा नहीं होते थे, उनमें लिखने वाले का प्यार, आशीर्वाद, भावनाओं और स्नेह का स्नेह छिपा होता था। उन पत्रों का इंतज़ार और उन्हें पढ़ना भी कितना खूबसूरत होता था। एक श्रोता ने लिखा है कि ख़त में एक ऐसा शब्द है जो बरसों जैसे लगते हुए इंतज़ार की घड़ियों को ख़त्म कर देता ज़रूर है, पर आगे इंतज़ार को बहुत पीड़ादायक बना देता है। ख़त को लिखते हुए हर उस शख्स के उंगलियों का स्पर्श, उनके ख्वाब, उनके भाव और प्यार, सभी उस लिफाफे में बंद होकर हम तक पहुंचाया जाता रहा है, जिसके आते ही धड़कनें बढ़ जाती थीं। सचमुच कुछ

पत्र पढ़ते हुए दिल की धड़कनें तेज़ हो जाया करती थीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या आपने इस गाने के बारे में सोचा था। और हाँ, आगे कुछ श्रोता अगर गाने सुझा रहे हैं तो वो गाना हम आपको सुनवाएंगे। सुनिए ये गाना और बताइए कौन है हीरो, कौन है हीरोइन।

फिल्म थी आए दिन बहार की, आशा भोसले की आवाज़ थी, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया। आशा पारिख हीरोइन होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि डाक प्रणाली का आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया बल्कि इसका विकास प्राचीन सभ्यताओं के साथ धीरे धीरे हुआ है। और बहुत सारे श्रोता अपनी बात लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक गज़ल याद आती है, प्यार का पहला ख़त लिखने में देर तो लगती है। सच में ऐसा ही होता था, कई पन्ने फाड़कर ख़त लिखे जाते थे, सचमुच संतुष्टि नहीं होती थी दोबारा तिबारा। अब तो ऐसा धीरज बचा ही नहीं है, जैसे तैसे एक पत्र लिख दिया बस काफ़ी है, फिर ये समझ में नहीं आता दो लाइन लिखने के बाद कि अब क्या लिखें। एक श्रोता ने लिखा है कि पत्र की शुरुआत हम करते थे अत्र कुशलम तत्रास्तु। बहुत सारे लोग ऐसे लिखा करते थे, हम भी ऐसे ही शुरुआत करते थे, पहले सामने वाले का नाम और संबोधन, प्रणाम नमस्कार, उसके बाद ये। एक श्रोता ने लिखा है कि जब मेरा जन्म हुआ उस दिन मेरे दादा ने अपने ही घर के एड्रेस पर शुभकामना का पोस्ट कार्ड भेजा था ताकि पोस्ट कार्ड पर जो तारीख का स्टैंप लगाया जाता है ये प्रूफ अपने पास रहे। क्या बात है भाई। एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने हेलो फरमाइश आपके अनुरोध पर कार्यक्रम में अपनी बातचीत और अपनी पसंद शामिल होने पर हर बार व्यक्तिगत आभार के पत्र लिखे थे, पर हाँ एक बात ज़रूर की थी कि किसी महिला प्रस्तुतकर्ता को पत्र लिखा था, तब पते में उनका नाम नहीं पर अन्य कोई साथी उद्घोषक का नाम लिखकर उनको पहली लाइन में विनती की थी। एक श्रोता ने लिखा है कि जब ख़त की बात होती है तो बशीर साहब का एक शेर याद आता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि एक इस रक्षाबंधन पर हमने 100 से

दादा पोस्ट कार्ड अपने सैनिक बंधुओं को लिखे और राखी भेजी थी। क्या बात है भाई, सलाम करते हैं आपकी इस बात को। और एक श्रोता ने लिखा है कि पहली बार जब पत्नी का खत मेरे कॉलेज के पते पर आया, दरअसल शादी के कुछ महीने बाद पत्नी की विदाई हो गई, वे मायके चली गई थी, मैं कॉलेज में पढ़ने में व्यस्त हो गया। अचानक एक दोस्त ने एक खत एक दिन दिया, तुम्हारा खत मेल काउंटर पर रखा है, ले आता हूँ। खत को ले जाकर लाइब्रेरी में कोने में बैठ कर पढ़ने लगा। तमाम शायरी दोहे पढ़ते ही मन ही बदल गया, उनकी याद ने माहौल ही बदल दिया। और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं इन्होंने। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का विषय बहुत ही बढ़िया लगा, सुरीला सफ़र का आज, खतों की बात, मुझे तो गाने भी बहुत सारे याद आ रहे हैं और गानों की फेहरिस्त इन्होंने लिखी है। अब चलिए अगला गीत सुनते हैं, बूझिए ज़रा फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम भी बूझना है आपको।

हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था और संगीतकार का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। फिल्म थी दुल्हन और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं तो सिर्फ नियुक्ति पत्र ही संभाल के मैंने रखा है। एक श्रोता की टिप्पणी है निदा फाजली का शेर, सीधा सादा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। क्या बात है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आज का सुरीला सफ़र बहुत बढ़िया लग रहा है। खतों की बात है, मुझे बहुत सारे गाने याद आ रहे हैं और गानों की लिस्ट इन्होंने लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का प्रोग्राम ख़ास है क्योंकि बहुत सारी यादें ताज़ा हो रही हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है कि हम मेरे घर आ रहे चिट्ठी डाकिया डाक लाया, एक डाक और डाकिया एक दूसरे के पर्याय।

आए हैं दोनों को देखकर चेहरे पर चमक आ जाती थी। और मेरे घर आ रही चिट्ठी आए या ना आए, लेकिन हमें इंतज़ार रहता था। डाक वाले का पूरा शहर सम्मान करता था। अब वो ज़माना गुजरे ज़माने में सालों में तब्दील हो गया। दिवाली के ग्रीटिंग कार्ड, शादी के निमंत्रण, कुशलता का समाचार, कोई अन्य खबर, नौकरी से संबंधित सूचनाओं के पत्र भी, और भी बातें, बहुत कुछ यादें ताज़ा हो गई जब लोग चिट्ठी लिखने को कहते और आई चिट्ठी को पढ़कर सुनाया करते थे। तो ऐसी तमाम चिट्ठियां होती थी जब, और ये भी आपको याद होगा कि अड़ोस पड़ोस की महिलाएं जब, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, जिन्हें पत्र पढ़ने नहीं आता था, वो पत्र लेकर आती थी घर में और कहती थी कि ज़रा ये पत्र पढ़कर सुना दो। और उसमें कई बार मजाक भी होता था, बच्चे शरारत भी करते थे, चिट्ठी लेकर भागते थे इधर उधर, वो दादी काकी दौड़ती थी पीछे पीछे, वो भी एक अलग आनंद था। एक श्रोता ने लिखा है कि क्या वो खूबसूरत दौर था जब किसी अपने के नाम चिट्ठी लिखना अपने ही मन के आंगन में उतरने जैसा हुआ करता था। कलम की नोक से कागज़ पर उतरते शब्दों में न जाने कितनी भावनाएं घुल जाया करती थीं। शब्द केवल पढ़े नहीं जाते थे बल्कि जिए जाते थे। आज तो डिजिटल युग में उंगलियों के एक स्पर्श से संदेश पहुंच जाते हैं, पलक झपकते ही जवाब आ जाते हैं, लेकिन वो चिट्ठी वाली स्पर्श कहाँ मिलती है। चलिए अब सुनिए ये गाना और बताइए हमें फिल्म का नाम, और गीतकार और संगीतकार का नाम भी पूछिए।

0: हिना फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, गीतकार संगीतकार का नाम हमने पूछा था नक्श लालपुरी और संगीतकार रविंद्र जैन, और आज उनकी याद का दिन है रविंद्र जैन साहब का। तो आज का ये प्रोग्राम का आखिरी गाना उन्हीं के नाम था। बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब लिखा है और अभी भी टिप्पणियां आ ही रही हैं श्रोताओं की, पढ़े देते हैं, थोड़ा सा वक्त है। चिट्ठी लाने वाले डाकियों को हर बड़े त्यौहार जैसे होली दिवाली पर विशेष उपहार देकर उन्हें सम्मानित किया जाता था। एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने आकाशवाणी जलगांव से प्राप्त ग्रीटिंग कार्ड कुछ दोस्तों के पत्र संभाल कर रखे हैं, और एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने कुछ पुराने खत अभी रखे हैं संभाल कर, मेरी जेब में पड़ा मोबाइल बहुत जलता है इस बात से। क्या बात है भाई। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि चिट्ठियों का इंतज़ार रहता था, अब ज़माना बदल गया है, विश्व डाक सेवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक श्रोता ने लिखा है, गारे की लंबी फेहरिस्त लिखी है इन्होंने, और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि अत्र कुशलम तत्रास्तु से होती थी शुरुआत पत्र की, और चिट्ठी महज कागज़ का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हृदय की धड़कनों और आपसी प्रेम का लिखित जीवंत दस्तावेज हुआ करता था, जो प्रेम प्रतीक्षा धीरे के रंगों से जुगलबंदी करता हुआ एक भावुक और दिल से दिल को जोड़े रखने के एहसास लिए होता था। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रियतम प्रियजनों से भी ज्यादा प्रतीक्षा डाकिये की होती थी, पोस्टकार्ड अंतरदेशीय लिफाफों में सिमटे संवादों का आदान प्रदान ने डाकियों को प्रत्येक घर का सदस्य बना दिया था। गांव में माँ की सुनी आंखें, पत्नी की पलकों, पिता की आशा को, इंतजार को, खुशी और मायूसी दोनों डाकिये से ही होती थी। क्या बात है भाई, आप सब ने आज अपनी यादें खंगाली और ताज़ा की हैं, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अब प्रोग्राम का ये सुरीला सफ़र यहीं ख़त्म होता है। सुरीला सफ़र आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवादक जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 49वीं कड़ी।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह राष्ट्र मंत्र अपना सा लगा। क्रांतिकारियों से लेकर सत्याग्रहियों तक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हर किसी में वंदे मातरम शब्द के प्रति एक आकर्षण पैदा हो गया। इससे यहाँ के कलाकार भी अछूते नहीं रहे। अवनींद्रनाथ ठाकुर, राव बहादुर धुरंधर, दीननाथ दलाल, रघुवीर मुड़गांवकर और अल्लाह बख्श जैसे अनेक चित्रकारों ने भारत माता की चित्र बनाकर वंदे मातरम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। फिर संगीत क्षेत्र का इसमें पीछे रहना संभव ही नहीं था। संगीत क्षेत्र के दिग्गजों को राष्ट्रीय आंदोलन का आकर्षण होने लगा। इस क्षेत्र के अनेक कलाकार

0: भारतीय संगीत के बदलते स्वरूप को सुना जा सकता है। एक ही गीत की इतनी संगीत रचनाएं और इतनी बड़ी संख्या में नामी कलाकारों द्वारा गाया गया वो गीत, ऐसा उदाहरण पूरे विश्व के संगीत इतिहास में किसी अन्य गीत के बारे में देखने को नहीं मिलता है। ऐसा संगीत में सौभाग्य और एकमात्र अद्वितीय गौरवपूर्ण स्थान केवल वंदे मातरम गीत को ही प्राप्त हुआ है। वंदे मातरम की ये संगीत यात्रा मनोरंजक और रोमांचक है। ये कलाकारों द्वारा देश प्रेम के लिए दिखाए गए स्वाभिमान का प्रतीक है।
1: इस गीत को लिखने वाले ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अंग्रेजों की सेवा में डेप्यूटी मजिस्ट्रेट जैसे न्याय विभाग के उच्च पद पर काम कर रहे थे। उसी समय साहित्य के क्षेत्र में उनका काम ऊंचाइयों पर पहुंच रहा था। उनके उपन्यास बेहद लोकप्रिय हो रहे थे। बंकिम चंद्र की गिनती बांग्ला के श्रेष्ठ लेखकों में होने लगी थी। उन्हें संगीत में भी अच्छी रुचि थी। वे उत्तम हारमोनियम बजाते थे, ऐसा उनके मित्रों ने लिख कर रखा है। 1875 में यह गीत लिखा गया। उस समय बंकिम चंद्र जी को संगीत सिखाने के लिए आने वाले यदुनाथ भट्टाचार्य ने वंदे मातरम की पहली संगीत रचना की। जिस आनंदमठ उपन्यास में वंदे मातरम पिरोया गया है, उस आनंदमठ के पहले संस्करण में इस रचना का उल्लेख राग मल्हार ताल कव्वाली के रूप में किया गया है। दुर्भाग्य से इसकी स्वर लिपि उपलब्ध नहीं है। यही यदुनाथ भट्टाचार्य आगे चलकर रविंद्रनाथ के भी संगीत में मार्गदर्शक बने।

उसी दौरान बंकिमचंद्र की तरह ही सरकारी अधिकारी रहे उनके संगीतज्ञ मित्र क्षेत्रनाथ मुखोपाध्याय ने भी वंदे मातरम की एक संगीत रचना की थी। 1882 में नेपाल चंद्र धर नामक युवा गायक ने राग देश और राग मल्हार के मिश्रण वाले देश मल्हार राग में वंदे मातरम की संगीत रचना की थी। 1882 में ही आनंद मठ नाटक में तिलक कामोद राग और छपताल में निबद्ध वंदे मातरम भवानंद की भूमिका करने वाले देवचंद्र बागची इस अभिनेता ने गाया था। संगीत रचना भी उन्हीं की थी। रंगमंच पर हुआ ये पहला सार्वजनिक गायन था। बंकिम चंद्र के निधन के दो ही साल बाद 28 दिसंबर 1896 को कलकत्ता में हुए राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन की शुरुआत रविंद्रनाथ द्वारा गाए गए वंदे मातरम से हुई। वंदे मातरम का ये सार्वजनिक कार्यक्रम में पहला गायन था। सन 1900 से राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन में नियमित रूप से वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ। 1905 में रविंद्रनाथ ठाकुर की आवाज में वंदे मातरम का पहला रिकॉर्डिंग जारी हुआ। 1905 के बनारस अधिवेशन में सरला देवी चौधुरानी द्वारा गाया गया वंदे मातरम बहुत प्रसिद्ध हुआ।

1905 से 1910 के दौरान नरेंद्र चंद्र मुखर्जी, आर एन बोस, नारायण चंद्र मुखर्जी, हेमचंद्र सेन और सत्यभूषण गुप्ता जैसे बंगाली गायकों की आवाज में वंदे मातरम की रिकॉर्डिंग्स जारी की गई। विशेष आश्चर्य की बात यह है कि इसी काल में राष्ट्रीय सभा के प्रसिद्ध नेता सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की आवाज में भी वंदे मातरम की रिकॉर्डिंग निकाली गई। दुर्भाग्य से समय के साथ आज ये रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध नहीं है। वंदे मातरम के उपलब्ध ध्वनि मुद्रणों में सबसे पुरानी नारायण चंद्र मुखर्जी की आवाज में 120 साल पहले की दुर्लभ रिकॉर्डिंग ये है।

0: वंदे मातरम की संगीत यात्रा को देखते हुए पिछली सदी के भारतीय संगीत के बदलते प्रवाह उसमें सुनने को मिलते हैं। वंदे मातरम के प्रसार में बंगाल जितना ही महाराष्ट्र का योगदान भी बड़ा रहा है। जैसे शास्त्रीय संगीत के घराने दिखते हैं, वैसे ही महाराष्ट्र और बंगाली ऐसे दो संगीत प्रवाह इस यात्रा में स्पष्ट दिखते हैं।
1: बंगाल शैली। वंदे मातरम के संदर्भ में बंगाल शैली को हम बंगाली स्कूल कह सकते हैं, क्योंकि वंदे मातरम का निर्माण जैसे बंगाल में हुआ, वैसे ही वंदे मातरम के संगीत प्रचार की शुरुआत भी बंगाल से यदुभट्ट और रविंद्रनाथ के रूप में ही हुई। रविंद्रनाथ ने संगीत क्षेत्र में जो काम किया है वो उनके नाम से यानी रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। वंदे मातरम के बिल्कुल शुरुआती दिनों में वंदे मातरम गाने वाले सभी बंगाली गायकों पर रविंद्रनाथ की शैली की छाप स्पष्ट दिखती है।
0: १९२० के बाद भी अनेक बंगाली संगीतकारों ने वंदे मातरम की संगीत रचनाएं की। हरिपद चटर्जी, भवानीचरण दास, कमल दास गुप्ता, आर एन भट्टाचार्य, सूर सागर, जगमोहन, राजन सरकार, अनादि दस्तीदार जैसे बंगाली संगीत निर्देशकों ने अपने अपने तरीके से वंदे मातरम को संगीतबद्ध किया, फिर भी उसमें रविंद्रनाथ के संगीत की छाप को कोई भी ज्यादा मिटा नहीं पाया। इसमें अपवाद रहे संगीतकार हैं तिमिर बरन भट्टाचार्य, सुबल दास गुप्ता और हेमंत कुमार मुखर्जी। कमल दास गुप्ता के मातृसेवक दल के नाम से प्रकाशित इस रिकॉर्डिंग में बंगाली खोल और पखावज जैसे वाद्यों का उपयोग करते हुए ध्रुपद गायकी का प्रभाव दिखता है।

विख्यात बंगाली संगीत निर्देशक पंकज मल्लिक द्वारा की गई संगीत रचना तो तत्कालीन फिल्मी रचना जैसी है। उसके वाद्य वृंद के कारण फिल्मिस्तान कंपनी के फिल्मी गीतों की याद आती है। अत्यंत बड़े संगीतकार होने के बावजूद वंदे मातरम की उनकी यह रचना राष्ट्रगीत को न्याय देने वाली नहीं बन पाई है।

इसके अलावा 1950 के दशक की विख्यात गायिका गीता दत्त का जीएम दुर्रानी के साथ गाया हुआ रिकॉर्ड भी कुछ अलग है। इसका संगीत ज्ञान दत्त का है।

वंदे मातरम को अत्यंत अलग संगीत रचना में प्रस्तुत करने वाले हेमंत कुमार और तिमिर बरन भट्टाचार्य भी बंगाली ही हैं। वंदे मातरम की संगीत यात्रा में बंगाली संगीतकारों के समान ही मराठी गायकों और संगीतकारों का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

0: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 49वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रेकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रेकर और मंदाकिनी जोशी। वंदे मातरम की दुर्लभ रिकॉर्डिंग्स मिलिंद सबनीस जी के संग्रह से साभार। तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता। प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टांचावडी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। विदेश मंत्रालय ने कहा अमेरिका के पीईआरएम आवेदनों पर लगाए गए प्रतिबंध से मौजूदा H-1B वीजा की वैधता प्रभावित नहीं होगी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने चेतावनी दी है कि कानून का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर आज रात 9 बजे से 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद करने का प्रस्ताव दिया है। पुलिस ने इस संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजा है। पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में संवेदनशील स्थानों की ओर भीड़ के अनियंत्रित रूप से बढ़ने की आशंका व्यक्त करते हुए मेट्रो ट्रेनों की संख्या और फेरों को कम करने का भी अनुरोध किया है। जिन मेट्रो स्टेशनों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव है उनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने

0: बताया कि ये प्रतिबंध आज से लागू करने का प्रस्ताव है और स्थिति सामान्य होने तक कल तक जारी रह सकते हैं। रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर यातायात की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। इस बीच विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान मध्य दिल्ली में यातायात प्रतिबंधों के चलते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़कें बंद होने से कल करीब 5,000 यात्री स्टेशन तक नहीं पहुंच सके। प्रभावित यात्रियों में आईआईटी जोधपुर के 56 छात्र भी शामिल थे जो शाम 4 बजे रवाना होने वाली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस नहीं ले सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कनॉट प्लेस एक रेस्तरां में आयोजित दोपहर के भोज के बाद विपक्षी सांसद और कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए राजघाट पर एकत्र हुए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत के दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। उन्होंने बताया कि 1 GB डेटा की कीमत 268 रुपये से घटकर 8 रुपये से भी कम रह गई है।
3: 550 मिलियन यूजर्स। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब करना है। इसके बाद भारत पूरी तरह 5G तकनीक पर आधारित नेटवर्क की ओर बढ़ेगा। ये तकनीक 6G की शुरुआत का रास्ता तैयार करेगी। 6G के लिए भारत पहली बार वैश्विक स्तर पर तकनीकी मानक तय करने की प्रक्रिया में शामिल होगा।
0: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज सूरत में वस्त्र उद्योग से जुड़े उद्यमियों के साथ बैठक की। इस दौरान स्थानीय उद्योगपतियों ने उन्हें विभिन्न मांगों और सुझावों से जुड़े ज्ञापन सौंपे। श्री सिंह ने देश के प्रमुख विस्कोस वितरकों और बाजार विकास से जुड़ी कंपनियों के निदेशकों से भी मुलाकात की। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल की है। अशोक आनंद ने करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 8,482 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे हैं। तमिलनाडु के वदुरांतकम और दारापुरम सीटों पर सत्तारूढ़ टीवीके के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी बीमा दावों पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। एक रिपोर्ट।
4: इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट, EDAR, वाहन और सारथी पोर्टल तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो शामिल हैं। इनके जोड़ने से दुर्घटना की रिपोर्ट, गाड़ी और बीमा के रिकॉर्ड और पहले के दावों के बारे में जानकारी को आसानी से साझा किया जा सकेगा। इसमें हिट एंड रन के मामले और प्रधानमंत्री राह

0: राहत योजना भी शामिल होगी। न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे बिना देरी किए EDAR पोर्टल पर जरूरी डेटा अपलोड करें, क्योंकि अभी तक कुछ ही राज्यों ने ऐसा करना शुरू किया है। न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कुछ बीमा कंपनियों के प्रमुखों को न्यायालय के पिछले निर्देशों का पालन न करने के लिए अवमानना का नोटिस भी जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: सरकार ने डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं के विज्ञापनों पर नियंत्रण करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत अनुसूची HH1 और अनुसूची X में शामिल दवाओं के विज्ञापन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेने की मौजूदा अनिवार्यता को दवाओं की बिक्री और वितरण का लाइसेंस रखने वाली संस्थाओं पर भी लागू करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करने तथा उन्हें समान अवसर देने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की थी। पिछले एक दशक में यह अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है।
2: भारत में लंबे समय तक कन्या भ्रूण हत्या, लिंग आधारित भेदभाव और बेटियों की शिक्षा में असमानता जैसी गंभीर सामाजिक चुनौतियां रही है। इनसे निपटने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया। इसका मूल मकसद केवल बेटी को बचाना नहीं बल्कि उसके जीवन, सुरक्षा, शिक्षा और विकास को सुनिश्चित करना है। इसके तहत लिंग आधारित भ्रूण हत्या की रोकथाम, लिंग अनुपात में सुधार, बेटियों के स्कूल में नामांकन और माध्यमिक स्तर और आगे की पढ़ाई जारी रखने को प्रोत्साहित करना, सुरक्षित मातृत्व तथा मासिक धर्म, स्वच्छता के प्रति जागरूकता जैसे विषयों पर काम करना है। योजना में सरकार, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य कर्मी, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाओं और समुदाय को साथ लेकर व्यवहार एवं सामाजिक सोच में बदलाव पर जोर दिया जा रहा है। पिछले एक दशक में इस योजना से बेटियों के प्रति आम लोगों की सोच और उनके शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार देखने को मिला है। देश में जन्म के समय प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 2014-15 में 918 थी, जो 2023-24 में बढ़कर 929 हो गई। वहीं माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 75.51% से बढ़कर 80.2% तक पहुंच गया है। संस्थागत प्रसव भी 61 से बढ़कर 98% से अधिक हो गया है। इस योजना से राजस्थान में भी व्यापक बदलाव आया है। प्रदेश में जन्म के समय लिंग अनुपात 929 से बढ़कर एक दशक में 941 हो गया है। राज्य में बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाकर समाज में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि बेटी बोझ नहीं बल्कि परिवार और समाज की ताकत है। 10 साल पहले शुरू हुआ यह अभियान आज केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि बेटियों के सम्मान और समान अवसर का सामाजिक संदेश बन चुका है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने दोहराया कि डाक सेवा जन सेवा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के श्रम विभाग द्वारा कुछ कंपनियों के स्थायी श्रम प्रमाणन PERM कार्यक्रम पर लगाई गई रोक H1B वीजा कार्यक्रम से पूरी तरह अलग है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि PERM आवेदनों पर रोक लगाने से मौजूदा H1B वीजा की वैधता या H1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि इससे प्रभावित कंपनियों के पात्र कर्मचारियों को ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया पर कुछ असर पड़ सकता है। इस मामले में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के टिप्पणियों का जिक्र करते हुए मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी अनुचित है। भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार को इसराइल के सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने घोषणा की कि कैप्टन मच्छार के स्वस्थ होने के बाद उन्हें नागरिक वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

0: घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1.2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 878 अंक बढ़कर 72,471 पर, जबकि निफ्टी 282 अंक की उछाल के साथ 22,514 पर था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल तक तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। दक्षिण आंध्र, कर्नाटका और उत्तराखंड में भी आज ऐसी स्थिति रह सकती है। इसमें कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

0: आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में राजा मेहदी अली खां का लिखा ये गाना। फिल्म थी वो कौन थी और संगीतकार थे मदन मोहन।
1: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
2: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ प्लस वन। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
1: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
2: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छा से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
1: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे थे फागुन फिल्म का गाना, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। कमर जलालाबादी के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
5: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
6: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं, और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
5: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नागिन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, हेमंत कुमार का संगीत था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: प्रेम धवन का लिखा गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की आवाजों में। फिल्म थी सावन।
1: वो देते हैं कागज में लिखे किरदारों को शक्ल।
2: जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो आई थिंक।
1: कैसे होता है कई एक्टर्स में से एक का चुनाव?
2: जो कल्की का पार्ट है चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी। वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ट्राई भी नहीं करना।
3: तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार।
1: कास्टिंग से जुड़े अनुभव और अपने जीवन की कई बातें हमसे साझा करने आ रहे हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी। जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज 10 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
6: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

गुमराह फिल्म का गाना था महेंद्र कपूर की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत था। ये महुआ फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज।

महुआ फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। कमर जलालाबादी के बोल थे सोनिक ओमी का संगीत था। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम ख़त्म होता है और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। दिन के 3 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से शिक्षा, राष्ट्रभक्ति व सामाजिक कर्तव्यों का पालन करके समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने का आह्वान किया है। सोलन जिला के वाकनाघाट स्थित निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान उन्होंने उम्मीद जताई कि युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाएंगे। राज्यपाल ने कहा कि युवा पीढ़ी अनुशासन में रहकर कार्य करेगी तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को सफल बनाने में अहम भूमिका युवाओं की होगी।
1: प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत 2047 की पहले भी बात हुई है, युवाओं की आवाज पहल के माध्यम से युवाओं को इस राष्ट्र संकल्प को केंद्र बना करके रखा गया है। जो युवा है, युवाओं से जो हमारी अपेक्षा है, वही इस देश को आगे ले जाने वाली है। अपने विचार, जो अपनी ऊर्जा है, अपनी जो प्रतिभा है और अपना नवाचार को विकसित भारत के निर्माण के लिए जोड़ेंगे।
0: इस दौरान राज्यपाल ने विभिन्न संकायों के 577 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। इस बीच सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने आज लोकभवन शिमला में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से भेंट की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश में बीआरओ द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों व पहलों की जानकारी दी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में सिंधिया ने दोहराया कि डाक सेवा जनसेवा है और डिजिटल संचार के इस युग में भारतीय डाक सेवा लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बदलाव का प्रयास कर रहा है। हिमाचल प्रदेश डाक परिमंडल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल संजय सिंह ने बताया कि विश्व डाक दिवस के अवसर पर 9 से 15 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभाग का फोकस डाक संचालन में तकनीक और नवाचार के बढ़ते उपयोग पर है, ताकि सेवाएं हर नागरिक के लिए और सुलभ व सरल बन सकें। संजय सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय डाक सप्ताह के तहत सभी डाकघरों में बैनर और डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से डाक सेवाओं के बारे में व्यापक प्रचार किया जा रहा है।
2: इस वर्ष का सप्ताह डाक संचालन में प्रौद्योगिकी और नवाचार के बढ़ते उपयोग पर केंद्रित है, ताकि डाक सेवाएं हर नागरिक के लिए और अधिक सुलभ, सरल एवं सुविधाजनक बन सकें। इस वर्ष का जो हमारा थीम है वह है एक डाक नेटवर्क, अनंत संभावनाएं। इस डाक सप्ताह की प्रमुख गतिविधियां रहेंगी आज 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस का आयोजन करना और राष्ट्रीय डाक सप्ताह का उद्घाटन, सभी डाकघरों में बैनर और डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से विश्व डाक दिवस व डाक सप्ताह का व्यापक प्रचार प्रसार करना, एक डाक

0: आर्थिक स्थिति व रोजगार सहित जन समस्याओं के समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, जबकि वे अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को दरकिनार कर बार बार राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं। राकेश जम्वाल ने दिल्ली में राजनीतिक प्रदर्शन में शामिल होने के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर के कथित इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए हैं। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में कल देर रात बर्फबारी होने से कुछ सड़क मार्ग प्रभावित हुए हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
1: लाहौल स्पीति में पिछले कल देर रात हुई बर्फबारी के चलते सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्राम्फू से लेकर बाथल और लोसर से लेकर ग्राम्फू तक का सड़क मार्ग फिलहाल यातायात के लिए बंद है। वहीं रोहतांग दर्रे से सरचू और दाचा से शिंकुला तक सड़क खुली है। रोहतांग दर्रे से सरचू तक सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही वाहनों को आवाजाही की अनुमति है। वहीं उदयपुर क्षेत्र में तांदी से लेकर कड़ूनाला तक सड़क पर यातायात जारी है। फिलहाल जिले में बाढ़, भूस्खलन और पेयजल योजनाओं में रुकावट से संबंधित कोई घटना दर्ज नहीं की गई है। प्रशासन ने यात्रियों और वाहन चालकों से यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद प्रस्तुत है सामयिक चर्चा, जिसका विषय है नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी, भारत के विकास में अहम कदम। वाचक स्वर राजकुमारी चंदेल का।
3: विकसित राष्ट्र बनने के भारत के संकल्प के लिए एक ऐसी अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें हर स्तर और आकार के उद्यम फल फूल सकें, चाहे उनकी शुरुआत कहीं से भी हुई हो। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने इन अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण के लिए निरंतर कार्य किया है। वर्ष 2017 में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से अप्रत्यक्ष कराधान के लिए एक साझा राष्ट्रीय ढांचा स्थापित हुआ। नेक्स्ट जनरेशन का जीएसटी 9 वर्षों के क्रियान्वयन तथा करदाताओं और राज्यों के अनुभवों के आधार पर इसी प्रयास को आगे बढ़ाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी की परिकल्पना 2 परस्पर जुड़े उद्देश्यों के साथ की गई थी, कर दरों को कम व तर्कसंगत बनाना और अनुपालन को अधिक सरल बनाना। दरों में किए गए संशोधन 22 सितंबर 2025 से प्रभावी हुए। इन प्रयासों का उद्देश्य परिवारों को राहत देना, व्यवसायों को अधिक निश्चितता प्रदान करना और करदाताओं के लिए एक ऐसी प्रणाली सुनिश्चित करना है जिसमें वे बिना किसी अनावश्यक कठिनाई के अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। जीएसटी की प्रगति प्रत्येक सरकार के उत्तरदायित्वों का सम्मान करते हुए एक साझा राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने की इसी तत्परता पर टिकी है। अक्टूबर 2025 से जुलाई 2026 के बीच दर्ज की गई कर योग्य आपूर्ति के मूल्य में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 25.8% की वृद्धि हुई। कर दरों की हल्की संरचना के साथ साथ दर्ज आर्थिक गतिविधियों में भी व्यापक विस्तार देखा गया है। ये उस सुधार के लिए एक अत्यंत उत्साहवर्धक आधार है जिसका उद्देश्य उद्यमों और सार्वजनिक वित्त दोनों को संबल प्रदान करना है। यह सुदृढ़ता हालिया राजस्व आंकड़ों में स्पष्ट दिखाई देती है। अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान सकल जीएसटी संग्रह 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि से 11% से अधिक है। जून से सितंबर तक के प्रत्येक महीने में वार्षिक आधार पर दोहरे अंकों में भी वृद्धि दर्ज की गई। कर वापसी के बाद शुद्ध संग्रह में भी इस छमाही के दौरान 10.4% की वृद्धि हुई। इस प्रकार करदाताओं को दी गई राहत और विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि साथ साथ हुई है। भारत जैसी विविध अर्थव्यवस्था में ये व्यापक प्रसार अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक हिस्सों में होने वाली ये वृद्धि अधिक से अधिक व्यवसायों को विस्तार लेते बाजारों में भाग लेने का अवसर देती है और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न मांग, निवेश तथा रोजगार से अधिकाधिक समुदायों को लाभान्वित करती है। सुधार के बाद की अवधि की तुलना में उपभोक्ताओं को की गई प्रत्यक्ष बिक्री में भी 26.7% की बढ़ोतरी हुई। जब कर राहत का प्रभाव कीमतों में दिखाई देता है तो परिवारों के पास अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने या बचत करने के लिए अधिक गुंजाइश होती है। उपभोक्ता राहत और उद्यम विकास आपस में गहराई से जुड़े हैं। परिवारों की क्रय शक्ति व्यवसायों द्वारा दी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मांग मांग को बनाए रखती है। इसका लाभ परिवार से लेकर खुदरा विक्रेता, आपूर्तिकर्ता और उत्पादक तक सभी तक पहुँच

0: का है। लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक राष्ट्रीय बाजार तभी सार्थक होता है जब वो उनके स्थानीय परिवेश में परे ग्राहकों तक पहुंचने का व्यावहारिक मार्ग प्रशस्त करे। द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों के व्यवसायों को स्थानीय स्तर पर निवेश और रोजगार जारी रखते हुए ऐसे संबंध बनाने में सक्षम होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इन शहरों में विस्तार करने वाले उद्यम स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं और वितरकों के लिए नए अवसर सृजित कर सकते हैं। जीएसटी का साझा ढांचा इन कड़ियों को सुदृढ़ करता है और सरल प्रशासनिक व्यवस्था को इन्हें बचाए रखना और भी सहज बनाना होगा। अगस्त के अंत तक इस केंद्र और राज्य क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत कुल जीएसटी पंजीकरण लगभग 1,71,00,000 तक पहुंच गए, जो एक वर्ष पहले की तुलना में लगभग 15% से अधिक है। अप्रैल से जुलाई 2026 की कर अवधियों के लिए निर्धारित तिथि तक दाखिल किए गए जीएसटीआर रिटर्न पिछले वर्ष की समान अवधियों की तुलना में 12.6% से अधिक हैं। इसी के साथ सामयिक चर्चा समाप्त हुई। नमस्कार।
1: राजकुमारी चंदे,
2: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। दिन के 3:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
3: इतने प्यार से सुनती हैं और कितने समय तक सुनती हैं, ये बहुत अच्छी सी बात आपने बताई। और आप अपनी पसंद के बारे में बताइए कुछ, या आप क्या कहना चाहती हैं?
4: मैं तो इतना कहूंगी कि आपका वो गीतों भरी कहानी है ना, वो मुझे बहुत भाती है।
3: जी, बहुत अच्छा लगा आपने।
4: इतना अच्छा लगता है वो कि आप बीच बीच में जो बोल लेते हो ना, वो मेरे मन को इतना भाता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। और मुझे आज इतना आनंद हुआ है कि पूरे 6 महीने हो गए मैं इतना लगातार कोशिश कर रही हूँ, आज जाके मेरा कॉल लगा है। अभी
3: देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि आपकी कॉल लग गई और आपकी मेरे से बात भी हो रही है।
4: और आपके लिए मुझे एक कहना है कि जब भी ऑन करोगे रेडियो तब कुछ भी नया ही पाओगे, ऐसा विविध भारती का है। और संगीत जो रहता है ना
3: जी,
4: सबके दिलों की धड़कन विविध भारती, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। दिन भर रेडियो के सिवा मेरा कोई सखा नहीं रहता, इसलिए सखी भी वही है और सखा भी मेरा रेडियो है।
3: क्या बात
4: इसलिए
3: है।
4: मैं दिल से यही कहूंगी, जब तक सूरज चांद रहे ना तब तक विविध भारती रेडियो हमेशा बजता रहे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी प्यारी सी बात कही है। और बताइए, और क्या आपके शौक हैं या क्या आप करना पसंद करती हैं?
4: मैं तो गेहूं और नाचनी का बिस्किट बना के देती हूँ, घर में छोटा सा उद्योग खोल रखा है मैंने।
3: क्या बात है, मतलब घर के लिए बनाती हैं या आप बिजनेस भी करती हैं इसका कुछ?
4: बिजनेस भी करती हूँ मैं, दूसरों को बना के देती हूँ।
3: हमारी तो यही शुभकामनाएं हैं दिल से आपके लिए कि आपका जो व्यवसाय है ये बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े।
4: जी, खोल के आपके लिए धन्यवाद।
3: लेकिन ये बताइए कि आज आप हेलो सैली में कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
4: 16 बरस की बाली उम्र को सलाम।
3: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गाना आपने चुना है और हमें ऐसा लग रहा है कि हम 16 साल में पहुंच गए, है ना? जी। तो चलिए जयश्री जी, आपको आपकी पसंद का गाना सुनाते हैं।

0: हूँ सहेली में अंतराल के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो, नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार,
1: मैं सोनिका बात कर रही हूँ मैडम, हिसार हरियाणा से।
0: सोनिका जी, हेलो सहेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, आपका शहर कैसा है, वहाँ की क्या खास बात है?
1: जी, शहर मेरा बहुत अच्छा है मैडम, साफ सफाई बिल्कुल रहती है वहाँ पे।
0: जी
1: वैसे मैं गांव से हूँ।
0: अच्छा,
1: वैसे जिला तो मतलब मेरा हिसार है, गांव में रहते हैं मैडम। वैसे हम
0: गांव तो बहुत खूबसूरत होते हैं, बड़े हरे भरे खेत होते हैं, है ना?
1: जी मैडम,
0: तो आपके यहाँ क्या होता है काम?
1: हमारे यहाँ पे मैडम फसल में धान वगैरह होते हैं और मैडम नरमा की कपास होती है,
0: अच्छा,
1: गेहूँ भी होती है मैडम।
0: जी दाल गेहूं वगैरह होता है।
1: जी मैडम,
0: और सोनिका जी, आज हम बात करने वाले हैं कि आपके दादी बाबा या मम्मी पापा की यादों को ताज़ा करने वाले हैं। आपने जो वक्त गुजारा है उन लोगों के साथ में, तो कुछ उनकी यादें, किस्से, कहानियाँ, कुछ सीख, वो अगर आपको याद है तो आप हमें बताइए।
1: जी दादा दादी तो मैडम मैंने देखे नहीं,
0: जी
1: ये पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। पापा
0: जी
1: भी एक्सपायर हो चुके और मम्मी है भी फिलहाल। तो
0: तो मम्मी से आपने क्या क्या चीज़ें सीखी?
1: खाना बनाने में जो डिश होती है मैडम वो सीखी
0: जी
1: मैडम, जैसे आलू के परांठे है, मेरी मम्मी बहुत अच्छे बनाते हैं मैडम, उसी से मैंने सीखा मैडम। मतलब मैं यहाँ पे बनाती हूँ तो बहुत अच्छे बनाते हैं मैडम आलू के परांठे।
0: ये क्या बात है। और सोनिका जी, ये बताइए कि आपको भी कुछ कढ़ाई, कशीदाकारी का शौक वगैरह रखती हैं क्या आप?
1: नहीं मैडम, मैं ये नहीं करती। जैसे मैं ग्रुप में काम करती हूँ मैडम, हरियाणा में जैसे एक स्कीम है NRLM की तरफ से, तो उसमें जैसे 10 लेडीज होती है, 10 लेडीज इकट्ठा करके उनका समूह बनाते हैं हम,
0: जी
1: और उस समूह में जैसे लेडीज को बचत करना सिखाते हैं। जैसे हर महीने वो 100 रुपये जमा करे या 200 रुपये जमा करे,
0: जी
1: उनका एक अकाउंट खुलवा देते हैं मैडम किसी नाम के, तो उसका अकाउंट बैंक में खुलवा देते हैं। और बैंक से अगर लेडीजों को जरूरत होती है पैसों की तो उनका मतलब लोन वगैरह भी करवा देते हैं मैडम। मैं
0: क्या
1: ये
0: बात
1: काम करती हूँ मैडम,
0: जी
1: कढ़ाई बुनाई का नहीं करती।
0: जी बस सोनिका जी, जो आप काम करती हैं वो तो बहुत अच्छा है कि आप महिलाओं की मदद करती हैं, इस तरह से बचत भी करवाती हैं, खाते भी खुलवाती हैं, तो ये तो बहुत अच्छा है कि आप लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करती हैं।
1: मैडम हमारी यहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी यूपी में अमेठी जिले में।
0: जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप हमारे विविध भारती के कौन कौन से प्रोग्राम सुनती हैं?
1: मैं मैडम सुबह से सुनती हूँ सखी सहेली और हेलो सहेली, तो मैडम फोन कार्यक्रम तो सुनती हूँ, और जैसे 1 बजे वो कमेंट वाला फेसबुक वाला आता है ना,
0: जी जी जी
1: वो भी कार्यक्रम मैडम सुनती हूँ
0: क्या
1: और उसमें
0: बात,
1: कमेंट भी करती हूँ मैडम।
0: अच्छा, बहुत अच्छा लगा, आप कमेंट भी करती है। और सोनिका जी,
1: जी मैडम
0: आपको कुछ गाने वाने का भी शौक है क्या?
1: जी, गीत मैं सुनती रहती हूँ मैडम, ज्यादातर ओल्ड गीत ही पसंद है मैडम।
0: तो आज जो आप मुझे गाना बताएंगी कि हेलो सहेली में आप ये गाना सुनना चाहती हैं, तो थोड़ा सा गुनगुना के बताइए तो मज़ा आ जाएगा।
1: एक पत्थर दिल को मैं दिल दे बैठी, ये यही गीत सुना दीजिए।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना सोनिका जी।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हाँ मैम, मैं मरका खंडा से जिला गोंदिया महाराष्ट्र से बोल रही हूँ।
0: जी, आपका क्या नाम है?
1: वो मिंद्रा नोनार है।
0: तो उमिंद्रा जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए अपने बारे में कुछ मन की बातें।
1: हाँ मैम, हम ग्राम सालेकसा तहसील में रहते हैं।
0: जी
1: सालेकसा से लगभग 10 किलोमीटर दूर हमारा गांव है
0: जी
1: और
0: और
1: हम खेती किसानी का काम करते हैं मैम।
0: अच्छा, खेती किसानी में आपने खेत में क्या बोया है इस समय?
1: हमने खेत में धान बोया है मैम।
0: अच्छा, बहुत अच्छा है। तो यानी कि फिर आप उसको अपने लिए रख लेती होंगी कुछ, और कुछ भाग आप उसको बाजार में निकाल देती होंगी, बेच देती होंगी, है ना?
1: हाँ मैम, कुछ यानी आधी फसल बेचने के लिए रहती है और आधी फसल खाने के लिए घर में।
0: अच्छा, और बताइए आपके परिवार में कौन कौन है?
1: परिवार में सास है, 2 बेटे हैं और हम पति पत्नी 2 जन हैं।
0: क्या बात है, यानी कि भरा पूरा परिवार है। और आज हम बात करने वाले थे कि अपने माता पिता की और दादी बाबा की, या आपकी सास ससुर हैं जो परिवार में, उनकी कुछ यादें जो आप बताना चाहेंगी, क्या आपने उनसे सीखा?
1: हाँ मैम, सीखा तो बहुत कुछ है, काम वाम सीखा है, कुछ खेती किसान का काम सीखे है।
0: जी, बहुत अच्छा लगता है जब कोई बड़ा सिखाता है और हम उस काम को अच्छे से सीख जाते हैं और करने लग जाते हैं, है ना?
1: हाँ मैम,
0: तो आप अपने बच्चों को किस तरह से काम सिखाती हैं?
1: हाँ मैम, बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं,
0: अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे?
1: एक फाइनल ईयर में है, एक फर्स्ट ईयर में है।
0: अच्छा, तो बताइए आप विविध भारती के कौन कौन से प्रोग्राम सुनती हैं?
1: मैम मेरे को हेलो फरमाए सबसे अच्छा लगता है, और हेलो सहेली, सखी सहेली,
0: जी, क्या बात
1: मन
0: है।
1: चाहे गीत,
0: अच्छा,
1: और सबसे फेवरेट प्रोग्राम हेलो सहेली और हेलो फरमाए।
0: क्या बात है, यानी कि आज आपके फेवरेट प्रोग्राम में आपकी कॉल लग गई है ना?
1: हाँ मैम,
0: तो बताइए आज आप क्या गाना सुनना चाहती हैं?
1: मुकद्दर का सिकद्दर का, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? प्रिया
1: मैं प्रिया बोल रही हूँ, दिल्ली से।
0: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। तो बताइए अपने बारे में कुछ हमें।
1: बस अपनी ऐसे ही प्राइवेट जॉब है,
0: अच्छा, तो किस तरह की आप जॉब करती हैं?
1: कपड़ों की दुकान है, जैसे छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं ना,
0: जी जी
1: वो।
0: जी यानी कि आप शॉप पे काम करती हैं, तो बहुत अच्छी
1: हाँ जी
0: बात
1: हाँ जी हाँ जी, वेद भारती के
0: जी।
1: सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं
0: एक
1: मुझे,
0: मिनट।
1: इतना पसंद है तो मैं अभी थोड़े दिन पहले मैं रेडियो भी लेके आई एक नया।
0: अच्छा, कौन कौन से प्रोग्राम आप सुनना पसंद करती हैं?
1: मैं सखी सहेली और जो प्रोग्राम सुनने को मिल जाते हैं तो सारे ही, लगभग रेडियो चलता ही रहता है।
0: क्या बात है। तो अपने बारे में और बताइए कि आपकी पढ़ाई आपने कितनी करी?
1: पढ़ाई तो मैंने बीए बीएड सब कुछ किया हुआ है
0: बीए और बीएड भी कर रखा है।
1: जी।
0: तो बीएड करने के बाद आपने ये नहीं सोचा कि आप टीचर बनने के लिए आगे जाएं?
1: बहुत कोशिश की लेकिन जिस क्षेत्र में जाना चाहते थे जा नहीं पाए।
0: कोई बात नहीं, आप जो काम कर रही हैं आप उससे खुश हैं, ये बहुत बड़ी बात
1: जी बिल्कुल।
0: है ना? बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: गाना अलका याग्निक का है, शायराना सी है जिंदगी की फजा।
0: शायर

0: अंतराल के बाद हम हाजिर हैं, आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं जयपुर से रहमाना बानो बोल रही हूँ।
0: रहमाना जी, आप जयपुर से बोल रही हैं, आपका हेलो सहेली कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए अपने बारे में, अपने शहर के बारे में बताइए, कैसा है आपका जयपुर शहर?
1: जयपुर बहुत अच्छा है मैडम, सब घूमने आते हैं यहाँ पे। हाँ,
0: पिंक सिटी कहलाता है जयपुर।
1: तस्वीर बढ़िया है, आप भी आइए। हाँ
0: बिल्कुल, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा बस जयपुर घूमने आएंगे।
1: मैडम,
0: और बताइए अपने बारे में, क्या करती हैं आप?
1: बस बच्चों को संभालना, घर का काम करना। हम 5 बहनें 1 भाई हैं।
0: जी, तो और आप क्या क्या करती हैं इसके अलावा? कुछ आप कढ़ाई वगैरह करती हूँ, कुछ ऐसा?
1: हाँ, कढ़ाई भी करती हूँ, साड़ी भी करती हूँ, साड़ी पे सितारे लगाना,
0: जी
1: और कड़े जो होते हैं कड़ों पे सितारे लगाना, कड़े पहनते हैं ना
0: जी जी जी
1: चूड़ियों के साथ,
0: लाख
1: वो
0: के कड़े
1: लगाते
0: होते
1: हैं,
0: जो,
1: लाख के कड़े होते हैं जो, वो वाला काम करते हैं हम।
0: मुझे सुनकर के अच्छा लग रहा है कि रंग बिरंगे कड़े होते हैं और उनमें आप नग वगैरह
1: हाँ,
0: लगाती हैं।
1: और मैडम फराकों में ना बटन भी लगाते हैं हम,
0: जी जी
1: कमीज होती है ना जो पहनने
0: जी जी
1: की, और क्या कहते हैं कुर्ते होते हैं उस पर बटन लगाती हूँ मैं, निशान लगा के। तो
0: क्या बात है, तो एक
1: जैसे
0: दिन में कितनी कमीजों में आप बटन लगा सकती हैं?
1: मैंने 1,000 फराकों में निशान लगाए तो मेरे
0: जी
1: 800 रुपये हो गए। खाना
0: क्या बात है। और खाना वाना क्या बनाती हैं आप? अच्छा,
1: गिरी मिस्टू बनाती हूँ,
0: मीठे में क्या बनाती हैं?
1: मीठे में खीर,
0: अच्छा, खीर, यानी किस चीज़ की खीर बनाती हैं आप?
1: कान की, दूध की, और उसमें चावल डलते हैं मैडम।
0: अच्छा, चावल वाली खीर बनाती हैं, यानी कि
1: हाँ
0: तो उसमें मेवा वगैरह डाल के बड़ा स्वाद हो जाता होगा
1: हाँ
0: उसमें तो।
1: हाँ चाहे आप उसमें सवैया डाल लो।
0: हाँ जी, बड़ा अच्छा लगा, मैं तो स्वाद आ गया यहाँ पर बैठे बैठे।
1: आप आइए, खिलाएंगे आपको पका के। मैडम
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए रहमाना जी, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं, अपनी पसंद बताइए।
1: मैं किरांति फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ, जिंदगी की ना टूटे लड़ी।
0: क्या बात है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: हेलो मैडम, मैं इंदौर से बोल रही हूँ। मैं दुर्गा नाम है मेरा
0: दुर्गा जी, हेलो सहेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये
1: जी। मैम,
0: बताइए कि और आप क्या करती हैं?
1: दोनों बच्चे जॉब करते हैं, हस्बैंड भी जॉब करते हैं।
0: जी
1: मैं ब्लाइंड हूँ, घर पे रहती हूँ, घर का काम कर लेती हूँ।
0: अच्छा, और साथ में रेडियो भी सुनती जाती हैं?
1: हाँ, रेडियो चलते रहता मेरा, अभी बंद कर दिया मैंने
0: अच्छा, यानी कि आप हमसे बात कर रही हैं इसलिए बंद किया है।
1: जी मैडम।
0: अच्छा, तो हमारे विविध भारती के बहुत सारे प्रोग्राम जो आप सुनती हैं उनमें से आपको कौन कौन से प्रोग्राम सबसे पसंद आते हैं?
1: हेलो सहेली आता वो सुनती हूँ मैं, और रोज सखी सहेली आता वो भी सुनती हूँ,
0: जी
1: मन चाहे जीत आता वो शनिवार रविवार वो भी सुनती हूँ।
0: जी जी बहुत अच्छा लगा।
1: तभी सुबह 6 बजे चालू करती है तो
0: जी
1: अपना काम तो हो जाता, तो रेडियो भी सुनती
0: दुर्गा जी, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: हूँ। 20 साल बाद का फिल्म का गाना है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे।
0: जी दुर्गा जी, चलिए हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना, और कॉल लगाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: हाँ, मैं सिकंदरा से सुनीता उइके। जी
0: जी सुनीता जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। क्या करती हैं आप?
1: मैं ग्रहणी हूँ दीदी।
0: सुनीता जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपकी यादों को ताज़ा करना चाहते हैं। माता पिता के संग बिताई हुई, दादी बाबा के संग बिताई हुई, तो कुछ यादें हैं जो आप बता सकती हैं?
1: हाँ दीदी, बचपन में तो हम बहुत थे, ये सब करते थे। मतलब वो खेलते थे, वो जैसे डिब्बे वाला खेलते थे ना,
0: जी,
1: खो कबड्डी ये सब खेला करते थे।
0: जो सारे खेल होते हैं, लंगड़ी है या सिकड़ी है या रस्सी कूद है ना, इस टाइप के
1: हाँ,
0: खेल।
1: रस्सी कूद है, हाँ, छिपन छिपाई, ये सब खेला करते थे। अभी भी मैं अपने बच्चों के साथ कभी कभी खेला खेलती हूँ।
0: जी
1: छोटे हैं तो उनको कभी ज्यादा टीवी में देखना, आप चुप जाओ, मैं आपको ढूंढती हूँ, ऐसा
0: बिल्कुल,
1: कभी
0: अपने बच्चों के साथ आप उनको अपने समय में जो आप खेल खेला करती थी, वो बच्चों को बताइए कि टीवी बंद करो, मोबाइल हटाओ और अब मेरे साथ आके तुम लोग ये खेलो खेल। तो उससे क्या होगा,
1: हाँ
0: एक आपस में जो संबंध बनता है प्यार का बच्चों के बीच में, वो बहुत अच्छा
1: हाँ
0: बनेगा।
1: दीदी,
0: और दोस्त जैसा अगर आप बन के रहेंगी, उनके साथ खेलेंगी, इंजॉय करेंगी, तो वो बच्चे भी बहुत खुश होंगे, है ना?
1: हाँ दीदी दीदी, हम मेरे घर मोबाइल बहुत कम देखते हैं बच्चे, बस
0: जी
1: ज्यादा खेलते कूदते हैं।
0: सुनीता जी, ये तो बहुत अच्छा लगा कि आप अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारती हैं, और उससे क्या होता है, बच्चों को एक अच्छी शिक्षा भी मिलती है।
1: हाँ जी, उनके साथ तो यहाँ तक कि मतलब कभी कभी बैट बॉल खेल लेती हूँ ऐसे। हाँ
0: बिल्कुल, आप थोड़ी देर क्या, आप तो एक नियम बना दो कि 1 घंटे हमारे साथ तुम लोग को खेलना है ना? तो आप भी एक्टिव रहेंगी और बच्चे तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना? तो सुनीता जी, आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करती हैं?
1: मुझे वो अलग गीत सुना था दीदी, चलो बुलाया आया है, माता ने बुलाया है।
0: जी सुनीता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं अहमदाबाद से जरीना बात कर रही हूँ
0: जरीना जी, और बताइए आप कैसी हैं?
1: जी। मैं अच्छी हूँ।
0: अहमदाबाद का मौसम कैसा है इस समय?
1: अहमदाबाद का मौसम तो अभी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है
0: अच्छा, और अपने बारे में और
1: जी।
0: कुछ बताइए।
1: मैं स्टोर चलाती हूँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस है मेरा।
0: अच्छा जरीना जी, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आप बनवाती हैं?
1: बनवाती नहीं हूँ, होलसेल में लाती हूँ मुंबई से और यहाँ पे मार्केटिंग करती हूँ। हमारा जो नवरात्र आने वाला है ना, तो
0: जी
1: उसका सीजन चल रहा है, उसमें मैं बैंगल्स है,
0: जी
1: फिर नेकलेस है, वो सब लोग हम लाते हैं
0: जी
1: और उसको बिक्री करते हैं, स्टोर में रखते हैं।
0: क्या बात है, यानी कि सीजन आते ही बिजनेस बहुत तरक्की करता है ना?
1: जी। आप मंजरी जी बात कर रही है ना?
0: हाँ, मैं मंजरी वर्मा बोल रही हूँ
1: जी,
0: जी।
1: बहुत खुशी हुई आपसे बात करके।
0: चलिए धन्यवाद, अच्छा लगा। जरीना जी, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी?
1: वो गीत नहीं है बल्कि वो भजन है, मैं अम्बे जगदम्बे, क्योंकि अभी नवरात्र आने वाला है ना,
0: जी जी जी जी
1: तो मैं वो गीत सुनना चाहूंगी।
0: जरीना जी, बिल्कुल, आपको हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना, और आपने कॉल किया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं बबीता कुर्मी, जिला सागर।
0: बबीता जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, सागर के क्या हाल हैं?
1: बस मैम जी बढ़िया है। आप सुनाओ, आपकी मुंबई की क्या हाल है मैम?
0: मुंबई बहुत अच्छी है, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो बबीता जी, अपने बारे में बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: पढ़ाई करते हैं दीदी, और घर में रहते हैं तो माता पिता का हाथ बटाते हैं, जैसे खेती किसानी होती है हम लोगों को यहाँ
0: जी
1: पे।
0: जी
1: तो दीदी उसमें अभी हम लोगों के यहाँ पे वो करता है सोयाबीन और उड़दा बज जाते हैं यहाँ पे उड़द। कभी आओ तो दीदी, यहाँ की मूंगफली है बहुत फेमस अर्जिनी की।
0: क्या बात है। फिर देखिए, जब कभी मौका मिलेगा, ऐसा सौभाग्य होगा, तो जरूर आएंगे और जरूर खाएंगे वहाँ की मूंगफली। मूंगफली के साथ में जो नमक मिलता है, उसका स्वाद भी अलग होता है ना?
1: हाँ दीदी, और दीदी देसी मूंगफली की तो बात ही अलग है दीदी। हम लोगों को यहाँ पे वैसे तो दीदी बुंदेली भाषा जानती हो आप?
0: हाँ जी, बोलिए बोलिए, बुंदेली में क्या कहना चाहती हैं आप?
1: तो बुंदेली में मतलब बोलती तो मूंगफली है जो हम लोगों को वो रहती है यहाँ पे, हर खेतों में लगती है दीदी।
0: जी,
1: यहाँ पे दीदी जो बेर होते हैं अभी तो मतलब नहीं फरे हैं, यहाँ पे फरने वाले हैं बस।
0: बेर जो उबाल के
1: दीदी
0: खाते हैं, छोटे वाले बेर होते हैं ना, लाल लाल।
1: हाँ, वो उबाल के दीदी जब वो फरते हैं, जब वो पक जाते हैं उनको तुरंत खाते दीदी, इतना अच्छे लगते हैं वो बेर।
0: जी। और बबीता जी, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो आप बुंदेली में कोई गीत गुनगुना सकती हैं?
1: जी दीदी, बुंदेली में एक छोटा सा गाना है दीदी, बेटी के ऊपर से। बिटिया
0: सुनाइए।
1: को अगर बच्चे होने तो

0: आप दीदी ऐसे गाना गाए जाते हैं लोगों जी।
1: नहीं, बहुत प्यारा सा गाना है बिटिया के बारे में कि बिटिया की क्या अहमियत होती है परिवार में।
0: जी दीदी, दीदी सबसे पहले तो आपके लिए और विविध भारती की पूरी टीम के लिए आने वाली नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: बिल्कुल, आपको भी हमारी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बबीता जी, आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी आज?
0: दीदी सुहाग फिल्म का गाना सुनवा देना, नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरो वाली।
1: बबीता जी, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: 0024662 यानी 4002462। दूसरा नंबर है 2867-0288 यानी 2867-0288। तो बस हेलो सहेली में लगाइए ये नंबर्स और कीजिए अपनी दोस्त से बातें। प्रोग्राम हर शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है। आप सुनना ना भूलिएगा हेलो सहेली। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, कभी ना कभी आपकी कॉल लग जाएगी। जिन सखियों की कॉल आज लग गई है उनसे निवेदन है कि 2 महीने तक कॉल नहीं लगाएं। आज हेलो सहेली कार्यक्रम में सहयोग संपादन रहा झरना सोलंकी का और तकनीकी इंजीनियर समृद्धि नायक, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो हेलो सहेली कार्यक्रम से दीजिए अब मंजरी वर्मा को अनुमति। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: वो देते हैं कागज में लिखे किरदारों को शक्ल।
1: जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो आई थिंक।
0: कैसे होता है कई एक्टर्स में से एक का चुनाव?
1: जो कल्की का पार्ट है चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी। वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ट्राई भी नहीं करना है।
2: तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार।
0: कास्टिंग से जुड़े अनुभव और अपने जीवन की कई बातें हमसे साझा करने आ रहे हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी। जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज 10 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
3: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं?
4: हाँ जी।
3: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं?
4: हाँ जी हाँ।
3: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
4: नहीं नहीं अभी नहीं।
3: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा
5: कुछ लिखा
3: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
6: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 4 बजने को हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
7: विविध भारती गीतों भरी कहानी। आज हम आपको सुनवा रहे हैं ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का दूसरा और अंतिम भाग। स्वर है ममता सिंह का।
8: अब तक आपने सुना आज अचानक ठंड बढ़ गई है, गुनगुनी नरम धूप बदन को सहला रही है। दिव्या अपनी नोटबुक और किताब लेकर हॉस्टल का बरामदा पार करते हुए लॉन में आ गई है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी बनाई डॉक्यूमेंट

एंट्री एंटरटेनमेंट चैनल पर अप्रूव हो गई है। चुनौतियां बढ़ गई हैं। कल जब मंच पर प्रणव सर ने सबके सामने हाथ मिलाकर उसे कॉन्ग्रेट्स किया तो कितना रोमांच हुआ था, मारे खुशी के जैसे पंख लगाकर वो उड़ चली हो आकाश में। हर इंसान अपनी बेहद खुशनुमा बात किसी आत्मीय अपने घर वालों से शेयर करना चाहता है, लेकिन दिव्या अपनी खुशी का इजहार किससे करे? जब साइबर क्राइम जैसे विषय पर उसे डॉक्यूमेंट्री बनाने की सलाह दी गई थी तो वो कितना घबराई थी, लेकिन जब प्रणव सर ने उसे छोटी सी बाइट बनाने को कहा तो दोस्तों ने भी फोर्स किया तो उसने ये प्रोजेक्ट ले लिया। प्रोजेक्ट बनाने के दौरान दिव्या को कितनी दिक्कतें पेश आई थीं, कितने पापड़ बेलने पड़े थे। आखिरकार दिव्या के अथक परिश्रम ने रंग लाया और पायलट प्रोजेक्ट तैयार हुआ। उसके सपनों की किताब का पहला अध्याय लिखा गया और उसके नाम डॉक्यूमेंट्री अलॉट हुई। सब्जेक्ट खौफनाक था, चुनौती बड़ी थी। सही मायनों में तो प्रणव सर जो उसके मेन गाइड हैं, उन्होंने ही काफी सहायता की। रात रात भर जाग जाकर इस डॉक्यूमेंट्री की एडिटिंग मिक्सिंग की। टीचर्स का ये पैनल और अच्छे दोस्तों का सहयोग और साथ न मिलता तो दिव्या डॉक्यूमेंट्री तो क्या, छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी नहीं बना पाती। बचपन से लेकर अब तक के उसके जीवन की ये पहली घटना है जिस पर उसे अपने आप पर गर्व हो रहा है। उसे याद आ गए वो दिन जब क्लास में हर कॉम्पिटिशन उसके लिए सजा थी। वो परफॉर्म ही नहीं कर पाती थी, नजरें नीचे झुकी हुई होती और मम्मी का चेहरा आंखों के सामने होता था। चाचा की बंदिशें आवाज को जब्त कर लेती थीं। काश आज वो अपने घर में होती तो कितना अच्छा होता। घर वालों की याद आते ही दिव्या मायूस हो गई। एक ऐसी तलहटी में पहुंच गई जहां जाने का रास्ता तो है लेकिन वहां से लौटना नामुमकिन। वो दिन जहन में ताजा हो गया। सूर्यास्त हो रहा था। दिव्या उदास होकर रूठ कर कमरे में बंद हो गई थी। दिव्या के लिए इस तरह का संघर्ष रोजमर्रा में शुमार हो गया था। अपनी एक भी बात मनमाने के लिए उसे ऐसे ही रोजाना जूझना पड़ता था। कॉलेज के फंक्शन में डांस और गाने में पार्टिसिपेट करने का सोचना भी पाप था। दिव्या के घर में कॉलेज का मतलब सिर्फ पढ़ाई, किताबें, इम्तिहान पास करना। एक्स्ट्रा करिकुलर की कोई जगह नहीं थी इस घर में। गुड गर्ल बनकर सिर झुकाकर कॉलेज जाना और घर लौटकर रोजाना आने वाले मेहमानों का स्वागत करना और बड़ी निपुणता से घर के कामकाज करना, यही उसकी बेहतरीन जिंदगी थी। अपनी राय दी नहीं कि 10 मिनट का भाषण सुनने को मिल जाता था। दिव्या के घर वाले इतने पारंपरिक और रूढ़िवादी हैं, अरे समय के साथ विचारों की रिसाइकलिंग करना बहुत जरूरी है। विचार, उसूल, ये सब दिव्या के घर वालों के लिए महज किताबी अल्फाज हैं। अक्सर ही दिव्या सपनों की एक चमकीली दुनिया में खो जाती थी जहां युवा मन के रोशन चिराग होते हैं और हर ख्वाब मुकम्मल होता है। हर रास्ते की तयशुदा मंजिल होती है। रास्ते में आई हर अड़चन और रुकावट को युवा मन चुटकियों में दूर भगाना

इसके लिए उसे चाहे जो करना पड़े, घर वालों का विरोध भी वो अफोर्ड कर लेगी। कामयाबी मिल जाना भी कई बार बेहद एकाकी बना देता है। अब सुनिए आगे की कहानी।

इरफान ने घड़ी देखी, उसके लेक्चर का टाइम हो रहा था, वो वहां से चला गया। इरफान के जाते ही दिव्या फिर स्मृतियों की कटीली सघन झाड़ियों में

0: इस घाट जा रही थी। कई दिनों की सिफारिश के बाद दिव्या को परमिशन तो मिल गई, पर उससे पहले उसे घर की अदालत के मुकदमे में तमाम जिरह पर खरा उतरना पड़ा था।
1: कितने लोग, कौन कौन जा रहे हैं मां? वो लड़के संस्कारी और कुलीन तो है ना? लड़कों से जरा डिस्टेंस मेंटेन रखना। हाँ, वे हाथ मिलाने के बहाने लड़कियों के करीब आते हैं और फिर दोस्ती की कड़ी जोड़ लेते हैं। समझ में आ रही बात ना? पर हमारे यहाँ लड़कों से लड़कियों की दोस्ती नहीं चलती, हम खानदानी लोग हैं। वैसे भी तुम्हें मजबूरी में को एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना।
0: समझाइश की ये पुड़िया चाचा ने थमाई थी। चाची ने कपड़ों पर सवाल उठाया था। झरने में भीग जाओगी, पारदर्शी कपड़ों पर लड़कों की नजर फिसलती है। मोटे कपड़े का कॉटन सूट पहनना।
1: समझ गई बच्ची, बाइक पर तुम्हारे चाचा के साथ बैठकर हम भी इतना घूमे हैं, लेकिन मजाल क्या कि सिर का पल्लू कभी उतर गया हो।
0: चाची ने ज्ञान की घुट्टी कुछ यूं पिलाई थी। दिव्या ये कहने से नहीं चूकी,
1: चाची जब विनोद भैया घर से इतनी दूर मनाली 4 दिन के ट्रिप पर गए थे तो ग्रुप में लड़कियां ज्यादा थीं, पता है आपको, लेकिन विनोद भैया से इतनी जिरह किसी ने नहीं की थी, क्योंकि वो इस घर के सुपुत्र हैं, है ना चाची?
0: जिस घर में सवाल पूछने की मनाही हो वहां इस जुर्रत की सजा के तौर पर दिव्या को सबके सामने थप्पड़ खाना पड़ा था। जन्म देने वाली मम्मी का तो सबसे बड़ा हक बनता था। वो हाथ पकड़कर बेडरूम में खींचती हुई ले गई थीं, लेकिन अंदर जाकर उन्हें जाने क्या हुआ कि वो पुचकारने लगीं।
1: बेटी, कुदरत ने जो लड़की और लड़के में फासला बनाया है ना, उसे कोई नहीं पाट सकता है। हम संस्कारी लोग इतना आगे नहीं बढ़े हैं बेटा, हम कितनी भी सभ्यता सीख लें, हमारी सोच तुम्हारी पीढ़ी की तरह मॉडर्न और खुली नहीं हो सकती है ना।
0: हमें पता है तू दोहरी जिंदगी जीती है, घर में अलग और कॉलेज में अलग। घर की दहलीज पार करते ही पूरी संस्कृति तेरी बदल जाती है। पर बेटी हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं ना, हम भी तो हिंदी में एमए किए हैं, फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी किए थे, लेकिन क्या मिला? वही खाना बनाना खिलाना, घर वालों के काम करना। हम लड़कियों को अपनी राय या सिद्धांत बनाने की आज़ादी हमारे समाज ने अभी भी हमको नहीं दी है। तेरे पापा और तेरे चाचा की सोच हम नहीं बदल पाएंगे ना बेटी।
1: बस मैं सोच बदलती रहूं, आप लोगों की दकियानूसी रास्तों पर चलती रहूं मम्मी, है ना? यही चाहती हैं आप? क्यों पढ़ाया मुझे इंटरनेशनल स्कूल में? सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया होता तो बेहतर होता।
0: दिव्या आंसू और गुस्से को जज्ब करते हुए बोली,
1: आपको पता है मम्मी, पूरी क्लास में मेरा पहनावा, टिफिन, बोलचाल का तरीका सब कुछ एकदम अलग है, एकदम अलग। मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की टांग खींचते हैं, वे कहते हैं मैं हिंदी में इंग्लिश बोलती हूँ। पर अब नहीं, मुझे अपने दकियानूसी थोपे गए पिछड़े घिसे पिटे संस्कारों से बाहर आना होगा। आप लोगों की थोपी गई परंपराओं से मुझे अब चिढ़ होने लगी है, ऊबने लगी हूँ मैं। एक तो इतने छोटे से घर में इतने सारे लोग भरे हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है यहाँ। मैं सारे दोस्तों के घर जाती हूँ, पर मैं अपने फ्रेंड्स को घर नहीं बुला सकती क्योंकि उनमें लड़के भी हैं, है ना? इस घर में मेरे स्वस्थ और आधुनिक विचारों का आखिर गला क्यों घोटा जाता है? इसमें बुराई क्या है? लड़की लड़के सब बराबर हैं आजकल। ऐसा लगता है कि हम किसी गांव या टापू में रह रहे हैं। आखिर जब आप इतना आगे बढ़ गए हैं तो अपने विचारों में भी तब्दीलियां ले आइए ना।
0: बहरहाल तमाम पूछताछ के बाद आखिर में दिव्या को मालशेज घाट पर वनडे पिकनिक जाने की अनुमति मिल ही गई। कैसा सुखद था वो सफर। पहाड़ों से उतरती पगडंडी सरीखी पानी की दूधिया पतली धारा, कुदरत के तराशे पत्थरों को स्पर्श करती हुई नीचे आकर एक सुरीला संगीत पैदा कर रही थी। नीचे तक आते आते झरने का वेग इतना तेज हो जाता कि उसके नीचे नहाते हुए बदन चोटिल हो जाए। झरने के सफेद फेनिल पानी को जब दिव्या ने छुआ तो रोमांच से भर गई। झरने में दिव्या ने पूरे ग्रुप के साथ जी खोलकर मौज मस्ती की। मालशेज घाट की गगन छूती ऊंची पहाड़ियों के खूबसूरत दृश्यों को दिव्या अपने मन में खूब

गहराई तक बसा लेना चाहती थी। पहाड़ियों और घाटियों की अनगिनत तस्वीरें उसने अपने मोबाइल में कैद कीं। बाकी दोस्त जब पहाड़ों के और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उस समय पेड़ों के झुरमुट की ढलान पर बैठकर दिव्या फटाफट कुछ वीडियोज ले रही थी और अपने मोबाइल में वर्ड फाइल खोलकर इस खूबसूरत नज़ारे का ब्यौरा टाइप कर रही थी। पत्तियों की सरसराहट, जुगलबंदी करती कूकती कोयल की तान रिकॉर्ड कर रही थी। दूर दिखते कचनार गुलमोहर के पेड़ों को जूम मोड पर अपने कैमरे में जीवंत कर रही थी। फूलों की वादियों से आती चंपा चमेली की खुशबू को अपने भीतर वो समो लेना चाहती थी। उस वक्त दिव्या की आंखें गुलाब सी खिली थीं। टी टी करती टिटहरी का गान भी रिकॉर्ड कर रही थी। दिव्या इन वादियों में एक पंछी की तरह

0: ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें।
1: मन से बहुत बिंदास अल्हड़ दिव्या के चेहरे के पीछे एक संवेदनशील रचनाशील सृजनकर्मी भी छिपा है। शायद उसकी संवेदनशीलता, उसकी रचनात्मकता ही उसे बार बार टेलीविजन की दुनिया में जाने को उकसा रही थी। पहले मास मीडिया की पढ़ाई पूरी करनी है और कम से कम इंटीग्रेटेड कोर्स कंप्लीट हो, ताकि बाद में पीएचडी की जाए और फिर तैयारी से टेलीविजन की दुनिया में काम किया जाए। उसकी तमन्ना है कि वो खुद लिखे और खुद ही प्रोड्यूस करे। सिर्फ धारावाहिक ही नहीं बल्कि एनिमेशन फिल्म भी बनाने के सपने का अंकुर उसके मन में फूट गया था। दिव्या की आंखों में अनगिनत चमकीले सपने परवाज लेते हैं। उसका हर सपना

0: वालों के विचारों की वेदी पर झोंक दिया जाता है। उसके घर वालों के लिए ये सब कोरी बकवास के सिवा कुछ नहीं। उनका मानना है कि पढ़ाई कोई भी कर लो, पढ़ाई के बाद ब्याह करके घर गृहस्थी तो संभालनी है। जबकि दिव्या ने गृहस्थी को कहीं तीसरे या चौथे पायदान पर रखा था। पहाड़ों के सर्पीले रास्तों से गुजरते हुए जब दिव्या अपने दोस्तों के साथ लौटने लगी तो सामने से विनोद भैया आते दिखाई दिए। मन तो किया कि झटके से वो गाड़ी में बैठ जाए, लेकिन उन्हें अनदेखा नहीं कर सकी। विनोद भैया आकर दिव्या के कान में फुसफुसाकर बोले,
1: उस लंबू से सट सट कर ताली दे देकर इतना खींचे क्यों निपोर रही थी तू, हैं?
0: विनोद भैया, दिव्या को जलती आंखों से लिलोरते हुए विनोद भैया बाइक स्टार्ट करके पल भर में आंखों से ओझल हो गए। दिव्या तिलमिलाकर रह गई।

पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज गए थे। इस घर में ये वक्त लड़कियों के लिए बाहर से लौटने का नहीं है। छोटे भाई सोनू ने दरवाजा खोला और अपने स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ने में वो मशगूल हो गया। चाचा हाथ में रिमोट लिए टीवी के चैनल बदल रहे थे। टीवी बंद करते हुए उन्होंने दिव्या को ऐसे देखा जैसे वो कोई बड़ा अपराध करके लौटी हो। कॉरिडोर पार करती हुई वो बेडरूम तक पहुंची भी नहीं थी कि चाचा की रौबदार आवाज ने कानों में चोट पहुंचाई। बेतरह थकी हुई दिव्या का मन कर रहा था कि चाचा की पुकार को अनसुना करके सीधे बिस्तर पर पड़ जाए, लेकिन चाचा की हैसियत इस घर में पापा से भी बढ़कर थी। इसकी एक वजह तो ये थी कि चौल में इतनी लंबी जिंदगी बिताने के बाद जब से टावर में घर लेने का सपना पूरा हुआ तो घर की एक मुश्त रकम का इंतजाम चाचा ने किया था। लोन अमाउंट भी उनका ज्यादा था। घर खरीदने में पापा की पूंजी कम लगी थी, जबकि दिव्या 3 भाई बहन मिलाकर 5 लोग हैं और चाचा के परिवार में विनोद भैया, चाचा चाची, कुल मिलाकर 3 लोग। मतलब ये एक आदर्श संयुक्त परिवार था। दिव्या सिर झुकाकर अपराधी की तरह सामने सोफे पर बैठ गई। विनोद भैया की लगाई आग चाचा की जबान के जरिए घर में धधक रही थी। उनकी लाल आंखें शोले उगल रही थीं और उसमें वो जल रही थी। ऊपर से तो वो बुद्ध बनी थी, लेकिन उसके मन में विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ रहा था। दिव्या अपने आप से ही पूछ रही थी कि आखिर उसका दोष क्या है, जमाना कहाँ पहुंच गया है। स्त्रियां धरती के हर छोर पर पहुंच गई हैं, स्पेस तक में अपना परचम लहरा रही हैं। ये संकुचित सोच के चाचा लड़कों के साथ घूमने क्या चली गई, घर सिर पर उठाए हुए हैं। खुद तो चाची की सहेलियों से मुस्कुरा मुस्कुरा कर रस ले लेकर बतियाते हैं, हाँ, लेकिन दिव्या इस घर की बेटी है और वो लड़कों के साथ घूमने गई तो गलत करार दिया गया और उसे चाचा से बेवजह मार भी खानी पड़ी। इस आदर्श परिवार में बड़े होकर भी बात बात में पिट जाना आम बात है और ये उनके संस्कार में शुमार है। विनोद भैया ने दिव्या और इरफान को लेकर अफसाना गढ़कर चाचा और पापा से कह सुनाया था, वो भी इस तरह जैसे दिव्या कई दोस्तों के साथ न गई हो बल्कि अकेली इरफान के साथ गई हो, जबकि इरफान भी अन्य लड़कों की तरह महज एक दोस्त था। मम्मी ने भी चाचा पापा के पंचम सुर में अपना मंद्र सप्तक का सुर मिला दिया था। दिव्या, ए दिव्या, लड़की हो, इरफान से मिलना जुलना कम करो, समझी कि नहीं। लड़की का चरित्र सफेद चादर की तरह होता है, एक छींटा भी दाग लगा देता है उसमें। तुम जानती हो हमारे यहां ये सब नहीं चलता है। उस दिन दिव्या का दिल दर्द से कराह रहा था, अनगिनत खरोंचे लगी थीं। मालशेज घाट में देखे फूल मुरझा गए थे। बेचैन मन आंसुओं का झरना बन बहता रहा बहुत देर तक। कमरे का दरवाजा अंदर से उसने बंद कर लिया

रोने के बाद मन हल्का हुआ तो दिव्या ने मोबाइल उठाया, फेसबुक पर मालशेज घाट की पहाड़ियों की तस्वीरें अपलोड की और व्हाट्सएप पर अपनी सहेलियों से बहुत देर तक चैट करती रही और तस्वीरें भेजती रही। इसी बहाने अपना जी बहलाती रही। दिव्या हमेशा ऐसा करती थी, जब उसे ज्यादा डांट पड़ती या मार पड़ती तो पहले खूब रोती थी, लेकिन उसके आंसू उसे सख्त बनाते थे और फिर इस तरह परिस्थितियों से जूझने का हौसला उसके भीतर पैदा हो जाता था। उस दिन के मार के बाद दिव्या ने अपने आप को काफी निस्संग पाया। डांट और मार का असर भी अब कम होने लगा था। उस दिन वो चाचा की डांट और मार से पिकनिक का सुखद एहसास कसैला नहीं करना चाहती थी, इसीलिए सोशल नेटवर्किंग का दामन थाम कर सुकून महसूस कर रही थी। उन दिनों घर में एक सिलसिला सा बन गया था। बात बात में दिव्या को एहसास कराया जाता कि वो एक लड़की है, उसे सलीके से रहना चाहिए। इसके उलट दिव्या कॉलेज के माहौल के अनुरूप खुद को बदल रही थी और ढाल रही थी। रायमा अक्सर उसे खुलेपन की तरफ खींचती। वो कहती, अरे यार थोड़ी आजाद ख्याल बनो, वरना किसी भी मर्द के पल्लू में बांधकर कैद कर दिया जाएगा और सारी जिंदगी गृहस्थी की चक्की पीसती रहोगी। समझ में आई बात?

दिव्या, ओ दिव्या, हाय हाय स्वीटहार्ट, तुझे क्या हुआ? किन ख्यालों में कहाँ खोई है तू? दिव्या, तुझे कब से आवाज दे रही हूं मैं? एवी रूम में सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं, ड्रामा की रिहर्सल है और इस बार प्रणव सर और तानिया मैम भी ड्रामा में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना? अच्छी बात, चल चल। ओ अरे हाँ, अरे तेरा लिखा अधूरा ड्रामा इरफान ने पूरा कर दिया। जानती है कितना अच्छा लिखा है उसने? तानिया मैम अपने रोल से इतनी खुश हैं कि उन्होंने इरफान को आज खूब कस के गले लगा लिया। दिव्या की आंखों के सामने वो दृश्य कौन गया जब उसे तुषार से हाई फाई करते हुए विनोद भैया ने देख लिया था। घर जाकर कैसी चुगली की थी उसने, और इस बात को लेकर भी घर में हंगामा हुआ था। चाचा का लंबा चौड़ा भाषण सुनना पड़ा था। चाचा की डांट एक अनपढ़ की तरह थी जिसे सुनना बुखार सी पीड़ा देता था। उस घर में विनोद भैया की भूमिका महज एक जासूस की थी। अगर घर वाले कॉलेज का ऐसा ओपन माहौल देख लें तो जाने क्या हो जाएगा, दिव्या सोचती है। घर और बाहर की दुनिया कितनी अलग है, कितनी अलग। घर में जो गलत है वही बाहर कॉलेज में नॉर्मल है, रूटीन है। इन सब बातों पर तो आजकल किसी का ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन दिव्या के घर में ये एक तरह का अपराध है, बुराई है ये। चल चल दिव्या, चल, तू ड्रामा की हीरोइन है और जानती है हीरो का रोल कौन अदा कर रहा है, पता है? दिव्या ने कोई उत्साह नहीं दिखाया ये सुनने के बाद भी। अरे बाबा, पूछ तो सही, कौन है? पूछेगी नहीं? दिव्या अपनी पलकें प्रश्नवाचक मुद्रा में ऊपर उठा देती है। प्रणव सर, पता है? प्रणव सर। अनमनी सी दिव्या उठकर अपने रूम की ओर चल देती है। जाते जाते कहती है, राइमा सुनना, सर और मैम को मैसेज दे देना प्लीज, आज मैं रिहर्सल पर नहीं आ पाऊंगी, प्लीज। क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ तुझे? चल ना, चल। नहीं, मैं नहीं चलूंगी, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, कहते हुए दिव्या बरामदे की ओर मुड़ जाती है। रायमा उसका मन टटोलने की कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब रहती है। हॉस्टल के कमरे में जाकर दिव्या ड्रामा के स्क्रिप्ट निकालती है। कल तो रिहर्सल में जाना ही होगा। रिहर्सल में नहीं जाऊंगी तो रीडिंग कैसे होगी, और एक रीडिंग बहुत ज़रूरी है, अपने आप से ही वो गुफ्तगु करती है। आखिर ये चमकीला सपना मैंने ही

देखा है, मेरे ही सपने का हिस्सा है ये। फिर मेरा मन क्यों घबरा रहा है? क्यों क्यों घबरा रही हूं मैं? अगर अपनों से दूर होने की कसक आज इतनी ज्यादा क्यों सता रही है? आखिर समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? भारी मन से स्क्रिप्ट के पन्ने पलटने लगती है दिव्या, साथ में अपनी डायरी लेकर बैठ जाती है। जब भी मन के भीतर तूफान मचा हो, हवाओं का रुख बार बार एक ही दिशा में भागा जा रहा हो, तो मन को संभालना, समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आज दिव्या का मन खुद से ही जद्दोजहद कर रहा है कि कहीं उसने गलत फैसला तो नहीं कर लिया। अगर डॉक्यूमेंट्री टेलीकास्ट नहीं हुई तो अगले सेमेस्टर के लिए फीस के पैसे कहाँ से आएंगे? पिछले सेमेस्टर में भी स्कॉलरशिप के पैसे से फीस पूरी नहीं हुई थी। इरफान और रायमा ने मिलकर बाकी फीस ऑनलाइन भर दी थी। उनका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी मैं? अगले दोनों सेमेस्टर में ज्यादा फीस की जरूरत होगी, प्रोजेक्ट वर्क भी ज्यादा होगा। प्रोजेक्ट वर्क में लगने वाली सामग्री बहुत महंगी होती है, कहाँ से आएगी ये रकम? दिव्या का तनाव बढ़ता ही जा रहा है। वो जब मन से परेशान होती है तो अपने आप को अकेलेपन के महासागर में डुबो देती है। अपने एकाकीपन से खुद को बाहर नहीं निकालना चाहती। अपनी पीड़ा को वो तार तार महसूस करती है, अपनी बेचैनी को सहलाती है और उससे जूझती भी है। उसे अपने आप पर गुस्सा आता है, अपने हालात पर भी, घर वालों पर भी। लेकिन एकाकीपन के उसके ये लम्हे उसके प्रिय होते हैं। ऐसे में वो या तो अपनी डायरी उठाती है या फिर खिड़की से बाहर खाली खाली नजरों से दूर तक देखती है।

शून्य में देखती हुई वो अपनी डायरी उठाती है। पन्नों के बीच एक मुड़ा तुड़ा कागज मिलता है। मुंबई से वर्धा तक का टिकट होता है, वो भी जनरल टिकट। अजीब थी वो रात, ऊंची अट्टालिकाओं के ऊपर आंधा आसमान, जैसे कुछ नीचे सरक आया हो। आसमान में टंगे चांद और जगमग करते सितारे यूं लग रहे थे जैसे कि दिव्या हाथ बढ़ाकर उन्हें अपने बैग में रख लेगी। खाली आंखों के साथ

सामने वो दृश्य तिर जाता है जब घर से अकेली निकल आई थी दिव्या। दिव्या ने बैग में थोड़ा सा सामान रखा था। इरफान और राइमा को भी उसने अपनी योजना के बारे में नहीं बताया था। एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गई थी। लेटर आया, उसे मास कम्युनिकेशन इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन मिल गया था। टेलीविजन प्रोडक्शन मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए उसे 5 साल के लिए वर्धा में रहना पड़ेगा। सुनते ही जैसे घर में तूफान आ गया। 5 साल पढ़ते पढ़ते बूढ़ी हो जाओगी, पराए शहर में जाकर कैसे गुजारा होगा तुम्हारा? और किसके साथ रहोगी हैं? वहां न कोई नातेदार न रिश्तेदार। हॉस्टल में रहने के नाम से पापा और चाचा ने ऐसे 10 हादसों का जिक्र किया था जिनकी खबर अखबार में छपी थी। हॉस्टल में रहना लड़कियों के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हम लोग तुम्हें दूसरे शहर जाकर पढ़ाई करने की इजाजत कतई नहीं देंगे। अगले दिन राइमा घर आई थी समझाने। इरफान और तुषार ने भी फोन पर मम्मी से बहुत इसरार किया था। आंटी, दिव्या को जाने दीजिए ना, हम सब साथ रहेंगे, उसकी देखभाल कर लेंगे। दिव्या ने घर वालों को बहुत समझाया, मम्मी मेरे साथ राइमा रहेगी, कोई भी परेशानी होगी तो हम दोनों एक दूसरे से शेयर कर लेंगे। फिर मम्मी, आजकल तो फोन का जमाना है, मान जाओ ना बात। टेक्नोलॉजी के इस जमाने में हम दिन में कई कई बार बात कर सकते हैं। अरे वीडियो कॉल करेंगे, वेबकैम के जरिए हम एक दूसरे से चैट करेंगे। मम्मी अभी आप भी वीडियो कॉल कर लेती हो ना। मम्मी प्लीज एक बार इजाजत दे दो। बोझिल कदमों से चलती हुई दिव्या का मन अपने करियर के लिए उत्साहित था, लेकिन घर वालों को छोड़कर यूं चुपके से आना उसके कलेजे पर जैसे आरी चल रही थी और वो पीड़ा से कराह रही थी। रास्तों का पता नहीं, नदी के उस पार टिमटिमाते हुए दिए की मध्यम रोशनी, कैसे जाएगी वो उस पार? कोई साथ नहीं, कोई सहयोगी नहीं, सिर्फ एक स्कॉलरशिप के बूते पर पूरी पढ़ाई कैसी होगी? क्या होगा मेरा? कैसे रहूंगी मैं अपने घर वालों के बिना? वो विचारों की गहरी खाई में उतरती गई। चलते चलते दिव्या स्टेशन पहुंच गई थी। सीढ़ियां उतरकर उसने सामने खाली पड़ी एक बेंच पर अपनी काया को जैसे धकेलते हुए बिठा दिया था। प्लेटफॉर्म पर दूर टिकी आंखों के सामने रात का अंधेरा था। गुलाबी ठंड थी, मौसम पर धुंध छाई थी और दिव्या की आंखों पर भी गहरी धुंध थी। दिव्या खाली निचाट आंखों से दूर देख रही थी। डीजल इंजन वाली ट्रेनें आ रही थीं, जा रही थीं। सारी गाड़ियों का वक्त और गंतव्य बिल्कुल निर्धारित था, पर दिव्या की ट्रेन का ना तो नियत समय था और ना ही नियत मंजिल। किस शहर में जाना है ये तो पता है, लेकिन किस ट्रेन से जाना है ये तो दिव्या ने भी नहीं सोचा था। न तो उसके पास यात्रा का टिकट था और न ही पराए शहर में पहुंचने के बाद का कोई ठिकाना। मंजिल इतनी दूर थी कि वो ऊहापोह में थी। पता नहीं मंजिल मिलेगी भी या नहीं, क्या यूं ही मैं टूटकर घर लौटूंगी? नहीं, यूं टूटकर घर नहीं लौटना है। उस रात कई गाड़ियां आती और जाती रहीं। अंत में अपने भीतर हौसला पैदा करती हुई खुद ही हौसले से डग भरती हुई वो एक ट्रेन में बैठ गई। यही वो टिकट था जिसने उसे वर्धा पहुंचाया था। हाथ में पकड़ा हुआ टिकट कड़कड़ाती सर्दी में भी पसीने से गीला हो गया था। उसे घबराहट सी हो रही थी। वर्तमान की धूप और अतीत का कोहरा, उसने आंखें मिचमिचाकर कसकर अपनी हथेलियां रख ली थीं। हथेलियों पर कुछ सर्द बूंदें चिपक गई थीं। हॉस्टल की कैंटीन में बजने वाली बेल से दिव्या की तंद्रा टूटी। रोज शाम को चाय के वक्त यही बेल बजती है। कोहरे से डूबी शाम अब अंधेरे की काली चादर ओढ़ रही है। लॉन के लैंप पोस्ट की मध्यम रोशनी किलेटी के उस जोड़े पर झिलमिल कर रही है जिसने अभी अभी बसेरा लिया है। पक्षियों के झुंड पेड़ों की पत्तियों में छिप गए हैं। सोने से पहले का उनका संवेद गान बज रहा है और दिव्या के कान में
नाटक के गीत,

का वो हिस्सा गूंज रहा है जो उसे मंच पर गाना है। इस नाटक की वीडियो रिकॉर्डिंग कॉलेज की लाइब्रेरी में संग्रहित की जाएगी और उसके करियर में एक और सुनहरा पन्ना जुड़ जाएगा।

गीतों भरी कहानी में आज आप सुन रहे थे ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का दूसरा और अंतिम भाग। स्वर था ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
4: अभी तक आप सुन रहे थे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से

0: बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। 5 बजने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। पहले हिंदी में समाचार, उसके तुरंत बाद अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नुपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि पार्टी द्वारा पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और स्वयं की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने तथा कानून व्यवस्था की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस समेत अन्य स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये पाबंदी अगले आदेश तक लागू रहेगी। उधर रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि स्टारलिंक जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और यूटेलसेट वनवेव सहित 3 कंपनियों को सैटेलाइट संचार लाइसेंस दिए गए हैं। नई दिल्ली में आयोजित 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस में श्री सिंधिया ने कहा कि सरकार राजस्व साझाकरण के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। उन्होंने कहा कि निर्धारित सुरक्षा मानदंडों और अन्य नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही ऑपरेटरों को सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और इथियोपिया की रणनीतिक साझेदारी साझा मूल्यों, समान आकांक्षाओं और विकासशील देशों के बीच ऐतिहासिक एकजुटता पर आधारित है। डॉक्टर जयशंकर ने आज अदीस अबाबा में इथियोपिया के विदेश मंत्री गेदियोन तिमोथेवोस हेस्मोन के साथ बैठक की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान व्यापार, निवेश, विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री सिंगापुर के राष्ट्रपति तरवन षणमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्ले को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए आज नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पिल्ले संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: जिंदगी के सपने तभी सच होते हैं जब आप करते हैं स्मार्ट प्लानिंग।
3: LIC लाया है एक नया प्लान, नव जीवन श्री रेगुलर प्रीमियम प्लान। एक ऐसा प्लान जो दे आपको डुअल बेनिफिट, इंश्योरेंस भी, सेविंग्स भी। इसमें आपको मिलता है फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शंस के साथ अट्रैक्टिव गारंटेड एडिशंस एंड एनहांस्ड गारंटेड एडिशंस टू एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स।
2: अपने गोल्स के लिए चुनिए एक प्लान जो हो सिंपल, सिक्योर और स्मार्ट। LIC नव जीवन श्री रेगुलर प्रीमियम प्लान के साथ। अधिक जानकारी के लिए अपने LIC एजेंट से संपर्क करें या www.licindia.in पर विजिट करें। LIC हर पल आपके साथ।
4: डायबिटीज यानी मधुमेह या शुगर रोग एक खतरनाक बीमारी है।
5: इसमें बार बार पेशाब आना, थकावट महसूस होना, ज्यादा भूख लगना इत्यादि इसके लक्षण हैं। इसका शुरुआत में ही पता लगाना बहुत जरूरी है।
6: प्रदेश के हर स्वास्थ्य उपकेंद्रों में शुगर की मुफ्त जांच का प्रावधान है, अतः आप तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी शुगर की जांच करवाएं और अपनी आंखों और गुर्दे की गंभीर बीमारी होने से बचाएं।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
7: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
8: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
9: बस यही पूछो व्हाई। रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक व्हाई आपको फ्रॉड से बचाए।
10: हमेशा पूछो WHY, व्हाई कहता है कैप्टन व्हाई ऑफ SBI,
9: आपका साइबर रक्षक।

ये तो थी भक्ति संध्या कार्यक्रम की आखिरी भक्ति रचना। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम युवा मंच।

सपना देखिए, मेहनत कीजिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का साहस भी रखिए। युवा साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हैं प्रोग्राम युवा मंच में और आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की ऐसी प्रेरणादायक फिल्म की जिसने न केवल दर्शकों का मनोरंजन किया बल्कि युवाओं को मेहनत, अनुशासन और अपने सपनों के लिए संघर्ष करने का भी संदेश दिया। ऐसी ही प्रेरणादायक सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है दंगल और आज की फिल्मी फ्राइडे में दंगल फिल्म की ही बात हम आपसे करेंगे। और चलिए, तो आज के प्रोग्राम में मैं हूँ आपके साथ पवन शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत हम दंगल फिल्म के इस गीत के साथ करते हैं और उसके तुरंत बाद बातचीत और गीत संगीत जारी रहेगा।

युवा साथियों, फिल्मी फ्राइडे के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं दंगल फिल्म के गाने। और दंगल फिल्म सिर्फ एक फिल्म ही नहीं थी, बल्कि मेहनत, संघर्ष, आत्मविश्वास और जीत की प्रेरणादायक कहानी है। इस फिल्म को बनाते वक्त क्या क्या चुनौतियां, क्या क्या किस्से सामने आए, उसकी बात भी आज हम आपसे करेंगे। इसके फिल्मांकन का काम 1 सितंबर 2015 से शुरू हुआ था। फिल्म के लिए साइट लुधियाना के गांव को चुना गया और उसे हरियाणवी रूप दिया गया। इसके अलावा फिल्माने का कार्य किला रायपुर, पंजाब, हरियाणा में किया गया। इसमें पहलवान की भूमिका निभाने के लिए आमिर खान ने अपने वजन को बढ़ाया। सितंबर 2014 और दिसंबर 2015 के बीच आमिर खान ने अपना 9% फैट से 30% तक का फैट बढ़ाया और 97% तक अपना वजन किया। और फिर वापस फिल्म के शुरुआत वाले दृश्यों के लिए उन्होंने युवा महावीर फोगाट को दर्शाना था, तो उसके लिए अपना वजन वापस 97 किलो से 70 किलो उन्होंने अपना वजन किया। साथ ही में हरियाणवी भाषा भी उन्होंने सीखी। इस फिल्म के लिए सारा संगीत प्रीतम का है और गानों के बोल जो हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं। साल 2016 में रिलीज़ हुई दंगल फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया। फिल्म में आमिर खान ने पहलवान महावीर सिंह फोगाट की भूमिका निभाई, जबकि फातिमा सना शेख और सानिया मल्होत्रा ने गीता फोगाट और बबीता कुमारी की भूमिका निभाई। फिल्म की कहानी हरियाणा के पहलवान महावीर सिंह फोगाट और उनकी दोनों बेटियों के इर्द गिर्द घूमती है। महावीर का सपना था कि उनका बेटा अगर हो तो वो देश के लिए कुश्ती में स्वर्ण पदक जीते। बेटा न होने के बावजूद वे अपनी बेटियों को पहलवान बनाने का फैसला लेते हैं। शुरुआत में समाज की सोच और लोगों की बातें उनके रास्ते में आती हैं, लेकिन महावीर अपनी बेटियों की प्रतिभा पर विश्वास करते हैं। आगे क्या होता है सुनते हैं, लेकिन उससे पहले एक गाना आपको सुनवाते हैं।

0: 당글 당글
1: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
2: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
3: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
4: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: सावधान, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, नेवला या किसी भी जानवर के काटने को कभी हल्के में न लें। रेबीज का वायरस जानवर की लार से फैलता है और समय पर इलाज न मिले तो जानलेवा साबित हो सकता है।
6: घाव को तुरंत बहते पानी के नीचे साबुन से झाग बनाकर पूरे 15 मिनट तक धोए, फिर एंटीसेप्टिक या स्पिरिट लगाएं। इससे रेबीज का वायरस नष्ट हो जाता है।
5: फिर बिना देर किए नजदीकी सरकारी अस्पताल जाएं। रेबीज से बचाव का टीका सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है।
6: रेबीज जानलेवा है लेकिन समय पर टीकाकरण से बचाव संभव है।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
7: शाम के 5:38 हुए हैं और फिल्मी फ्राइडे के अंतर्गत युवा साथियों आज आप सुन रहे हैं दंगल फिल्म के बारे में कुछ रोचक जानकारियां और कुछ कहानी हम इस फिल्म की आपको सुनवाएंगे जो बिल्कुल सत्य घटनाओं पर आधारित है। जी बिल्कुल, सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्म दंगल की बातचीत हम कर रहे हैं और 1 से 2 या 2.5 घंटे की फिल्म में हम एक व्यक्ति के जीवन के कड़े संघर्ष को समझ पाते हैं कि किस तरह से उन्होंने दुनिया के विरोध को सहते हुए अपनी बेटियों को बेटों की तरह पाला और समाज में एक अलग पहचान दिलवाई। युवा साथियों, हमारी मेहनत हमारे परिश्रम के आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए, हमारे सपने बड़े होने चाहिए। दंगल फिल्म बेटियों की क्षमता और आत्मविश्वास का संदेश देती है। ये हमें याद दिलाती है कि अवसर मिलने पर बेटियां भी बेटों से बड़े लक्ष्य हासिल कर सकती हैं और ये अवसर नकारात्मक सोच को भी पछाड़ती हैं कि ये लड़कियां भला क्या कर सकती हैं, समाज में इनका क्या लाभ है। लड़कियों का काम तो केवल चूल्हे चौके तक या बच्चे पैदा करने तक ही सीमित रहता है या परिवार का ख्याल रखना बस यहीं तक सीमित रहता है, तो इस सोच का बदलाव करती है ये दंगल फिल्म। आज हमारी बेटियां जल सेना, थल सेना, वायु सेना सभी में अपने साहस का परचम लहरा रही हैं। ऐसा कोई भी क्षेत्र, कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ बेटियाँ बेटों के पीछे हों।

0: सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्म दंगल की कहानी की अगर हम बात करें तो इस फिल्म की कहानी में महावीर सिंह फोगाट एक पहलवान होता है, लेकिन घर चलाने के लिए और अच्छी नौकरी के चक्कर में वो कुश्ती छोड़ देता है। इस कारण भारत के लिए स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल लाने का सपना उसका अधूरा रह जाता है। वो सोचता है उसका यह अधूरा सपना उसका बेटा पूरा करेगा, लेकिन उसके घर लगातार 4 बेटियाँ पैदा होने पर वह निराश हो जाता है, क्योंकि उस समय मानसिकता ये थी कि बेटियों को कुश्ती नहीं बल्कि घर के कामकाज सिखाने चाहिए। लेकिन उनकी सोच में परिवर्तन उस समय आता है जब उसकी बेटियां गीता फोगाट और बबीता फोगाट अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लड़कों को पीटकर घर आती हैं, तो उन्हें उन दोनों में भविष्य के पहलवान दिखाई देते हैं। महावीर उन दोनों को कुश्ती सिखाने लगता है। उसके द्वारा कठोर तरीकों को सिखाने, बाल छोटे कटवाना, सुबह सुबह कसरत करना वगैरह। शुरू में दोनों बहनों को अपने पिता पर बड़ा गुस्सा आता है, परंतु जल्दी ही उन दोनों को ये एहसास हो जाता है कि उनके पिता उन्हें केवल गृहिणियों के रूप में जीवन बिताने के लिए नहीं बल्कि देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों खुशी से महावीर से कुश्ती के दांव पेंच सीखती हैं। महावीर उनको प्रतियोगिताओं में भी ले जाते हैं, जिसमें गीता और बबीता मिलकर कई लड़कों को हरा देती हैं। प्रतियोगिताओं में जीते हुए गीता को पटियाला में प्रशिक्षण लेने का मौका मिलता है, जिसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में खेलने का भी वो मौका पाती है। कहानी में आगे क्या होता है, एक गाना सुनते हैं और फिर कहानी हम जारी रखेंगे।
1: चाल चाल और तेज भाग बबीता।

0: तो छोरों को पीटना की इतनी बड़ी सजा आज तक पूरे विश्व में किसी को ना मिली होगी।
1: काली तो उसने मने दी थी ना, तन्ने आदरणी की जरूरत थी है?
0: अब बता रही है

0: जो भी कहेगी सब कराएंगे।
1: बस इस पहलवानी से बचा ले।
2: साल भर के लिए भूल जो कि थारी कोई माँ।
3: रे इतनी जल्दी भूलगी?
4: जो के बात कर रहा है माँ? अभी छोरियां और अखाड़े में इस उम्र में पाप करवा देगा के?

दंगल फिल्म की कहानी श्रोताओं हम आपको सुनवा रहे हैं। गीता पटियाला के प्रशिक्षण संस्थान में जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर अनुशासन की उपेक्षा करती है। वे अपने पिता के सिखाए गए तरीकों को भी हल्के में लेती है। हर समय टीवी देखना, लंबे बाल रखना जो उनके पिता को पसंद न थे वो सब करती हैं, और सड़क पर मिलने वाली चाट पकौड़ियों को दिलचस्पी से खाती हैं जो एक खिलाड़ी के लिए ठीक नहीं होता। ये सब गीता उस समय करने लगी। उस संस्थान के ट्रेनर की सिखाने की टेक्निक महावीर सिंह से थोड़ी सी अलग थी। गीता को लगने लगा कि उसके पिता की सिखाई तकनीक और तरीके पुराने हो चुके हैं और उनके ट्रेनर की टेक्निक बहुत अच्छी है। जब वो घर लौटती है तो वह महावीर सिंह के सिखाए खेलने के टेक्निक्स की बजाय अपने ट्रेनर की सिखाई बातों के हिसाब से खेलती है। इसके बाद पिता और बेटे के बीच दंगल होता है। अपनी बढ़ती उम्र के कारण महावीर उससे हार जाता है। उसकी छोटी बहन बबीता गीता से कहती है कि आज तुम जिस जगह पर हो अपने पापा की वजह से हो, उसे उनके सिखाए गुर कभी नहीं भूलने चाहिए। बाद में गीता की तरह बबीता भी उस

ट्रेनिंग सेंटर में जाती है। गीता लापरवाही की वजह से लगातार मैच हारती रहती है क्योंकि अब वे अपने पिता के सिखाए गए रास्तों पर नहीं चलती। उसने उस समय अपने नाखून बढ़ाए होते हैं, उन पर तरह तरह के नेल पेंट्स वो लगाने लगती है, उसका ध्यान उसी में रहता है। हेयर स्टाइल बनाने को वो बहुत अहमियत उस समय देती है, लेकिन लगातार हार के बाद उसे ये एहसास हो जाता है कि वे गलत थी। वो महावीर से माफ़ी मांगती है, महावीर उसी संस्थान में आ जाते हैं, उन्हें प्रशिक्षण देते हैं, लेकिन जब उनके कोच को, ट्रेनर को इस बात का पता चलता है तो वो दोनों को बाहर निकालने के लिए हेड से शिकायत कर देता है। इसके बाद ये निर्णय दिया जाता है कि दोनों बहनों को उस संस्थान में तभी रखा जाएगा जब महावीर यानी उनके पिता उस संस्थान में ना आए और ट्रेनिंग ना दें। इसके बाद महावीर गीता को उन मैचेस को दिखाता है जिनमें गीता ने हार का सामना किया था और उसे उसकी गलतियां बताता है ताकि वो आगे ऐसी गलतियां ना कर पाए।

कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गीता इस बार हिस्सा लेती है और महावीर उसके कोच के निर्देशों के विपरीत दर्शकों के बीच बैठकर उसे खेलने के निर्देश देता है। गीता अपने कोच के दिए निर्देशों का पालन नहीं करती बल्कि अपने पिता के दिए हुए संकेतों को फॉलो करती है और हर बार जीत जाती है। उस कोच को महावीर से जलन होती है कि जीतने का सारा क्रेडिट सारा श्रेय उसके पिता ही ले जा रहे हैं, तो वे महावीर को मैच वाले दिन कमरे में बंद कर देते हैं। महावीर की अनुपस्थिति में भी गीता अपने पिता के सिखाए गए निर्देशों को याद करती है और स्वर्ण पदक जीत जाती है और भारत की पहली महिला पहलवान बन जाती है जिसने स्वर्ण पदक जीता हो। सही समय पर महावीर उस कमरे से निकलने में सफल हो जाता है और समाचार मीडिया के सामने कोच मैच को जीतने का श्रेय अपने नाम नहीं कर पाता। इसके बाद फिल्म के अंत होने से थोड़ा पहले ये दिखाया जाता है कि बबीता भी कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में स्वर्ण पदक जीत जाती है और गीता पहली महिला पहलवान बनती है जो ओलंपिक्स में हिस्सा लेती है। इस तरह ये कहानी खत्म हो जाती है।

इतनी ही प्रेरणादायक कहानी हमारे भारत देश के हर हिस्से में छुपी पड़ी है, जो बहुत से लोगों के सामने भी उजागर नहीं है। किसी के जीवन का संघर्ष उसे कहां तक, कहां की ऊंचाइयों पर ले जाता है, ये उसकी मेहनत पर निर्भर करता है। युवा साथियों, आज का फिल्मी फ्राइडे बिल्कुल समाप्ति की ओर है। आज का प्रोग्राम आप सुन रहे थे अपने रेडियो दोस्त पवन शर्मा के साथ, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:55 हुए हैं। आइए अब सुने आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। शाम 6:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरमई सांझ। 6:30 पर

जंगरेंदिया कार्यक्रम पेश किया जाएगा। शाम 7 बजे के समाचारों में पहले 7 बजे हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बाड़ी। आकाशवाणी शिमला से 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात 8 बजे सुनिएगा विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। 8:30 पर देशभक्ति गीत प्रसारित किए जाएंगे। समाचार संध्या 8:45 पर रात 9 बजे News@9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। रात 9:15 पर आज आप सुनेंगे एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म है आशिकी। 9:30 पर कार्यक्रम होगा कारवां सुरों का। रात 10 बजे कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स पेश किया जाएगा। चित्रपट संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत रात 10:30 पर पुरानी फिल्मों के सदाबहार गीत प्रसारित किए जाएंगे। सभा के अंत में रात 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। श्रोताओ, ये तो थी आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आइए अब जानते हैं कल प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सुहानी। दोपहर 12:30 पर सुनेगा कार्यक्रम सुनो सखी। कल शाम 5:30 पर युवा मंच कार्यक्रम आप सुन पाएंगे।

ये तो थी कार्यक्रमों संबंधी रूपरेखा। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:58 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में यानी शाम 6 बजे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे और रिले के लिए कीजिए कुछ ही पलों का इंतज़ार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में सड़क सुविधाओं, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक अवसरों के विस्तार के लिए निरंतर निवेश और सहयोग उपलब्ध करवा रही है। आज बिलासपुर में उन्होंने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों, ग्रामीण सड़कों, रेल नेटवर्क, स्वास्थ्य, ऊर्जा और औद्योगिक

0: क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के बाद एक पत्रकार वार्ता में ये बात कही। जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि प्रदेश में 25 राष्ट्रीय राजमार्गों के तहत 2592 किलोमीटर का सड़क नेटवर्क बनाया जाना है। उन्होंने कहा कि एनएचएआई परियोजनाओं में कुल 55,103 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा निवेश किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कीरतपुर मनाली पठानकोट मंडी परवाणु शिमला और शिमला मटौर चार कॉरिडोर की प्रगति की भी आज समीक्षा की गई।
1: 25 नेशनल हाईवेज हैं हिमाचल के, जिसमें से 2,592 किलोमीटर की सड़कें बननी है। लगभग 1,244 किलोमीटर ये नेशनल हाईवे के पास है। उसी तरीके से 779 किलोमीटर ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के पास है, और 569 किलोमीटर की रोड ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है। वो चार मेजर कॉरिडोर्स हैं, एक है कीरतपुर मनाली पठानकोट मंडी परवाणु शिमला और शिमला मटौर, ये चार हमारे पास हैं, जिसमें से परवाणु सोलन शिमला बाईपास इसमें 8,950 करोड़ ये खर्च होना है।
0: केंद्रीय मंत्री ने बताया कि करीब 15,624 करोड़ रुपए की किशाऊ बहुदेशीय परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। नड्डा ने बताया कि राष्ट्रीय परियोजना के रूप में इसके वित्तीय खर्च का लगभग 90% केंद्र सरकार और शेष 10% भागीदारी संबंधित राज्यों द्वारा की जाएगी। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल के दूरदराज क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि बिलासपुर एम्स के लिए 1400 करोड़ रुपए से अधिक और चंबा नाहन व हमीरपुर मेडिकल कॉलेजों के लिए करीब 547 करोड़ रुपए केंद्र द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से शिक्षा राष्ट्रभक्ति व सामाजिक कर्तव्यों का पालन करके समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने का आह्वान किया है। सोलन जिला के वाकनाघाट स्थित निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान उन्होंने उम्मीद जताई कि युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाएंगे। राज्यपाल ने कहा कि युवा पीढ़ी अनुशासन में रहकर कार्य करेगी तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को सफल बनाने में अहम भूमिका युवाओं की होगी।
2: प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत 2047 की पहले भी बात हुई है, युवाओं की आवाज पहल के माध्यम से युवाओं को इस राष्ट्र संकल्प को केंद्र बना करके रखा गया है। जो युवा है, युवाओं से जो हमारी अपेक्षा है, वही इस देश को आगे ले जाने वाली है। अपने विचार, जो अपनी ऊर्जा है, अपनी जो प्रतिभा है और अपना नवाचार को विकसित भारत के निर्माण के लिए जोड़ें।
0: बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश में सेब सीजन इस बार कम दर्ज किया गया है और अभी तक केवल 1,23,00,000 पेटियां ही बाजार तक पहुंच पाई हैं। उन्होंने कहा कि MIS के तहत इस साल करीब 13,000 मीट्रिक टन सेब की खरीद की गई, जबकि बीते वर्ष 79,000 मीट्रिक टन सेब खरीदा गया था। जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार MIS के तहत सेब खरीद पर समर्थन मूल्य के 1 रुपये बढ़ाने पर विचार कर रही है।
3: प्रदेश में सेब सीजन अब जो है लास्ट बोर्ड पर है और इस बार जो MIS के तहत जो सेब SPMC और हिमफेड के माध्यम से लिया गया वो पिछले साल के वर्ष पर बहुत ही कम रहा। अभी केवल 13,000 मैट्रिक टन ही आज की तारीख तक जो है MIS के तहत हमने प्रोक्योर किया है और पिछली मरतबा जो है 98,000 मैट्रिक टन हुआ।
0: नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ऊना जिला की PM श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बसदेहड़ा में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली के माध्यम से विद्यार्थियों ने नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जनमानस को जागरूक करने तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
4: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 6:05 और 22 सेकंड हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुरमई सांझ।

पैगाम है। दिन भर की भाग दौड़ के बाद सुकून भरी ये शाम है। कुछ नगमे हो, कुछ मीठी बातें, कुछ यादों का कारवां, आपके साथ ही ये खूबसूरत हमारी ये सुरमई समा है। सदाबहार गीतों के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत। संध्याकालीन कार्यक्रम सुरमई सांझ में मैं हूँ आपके साथ पवन शर्मा।

श्रोताओं, एक वो ज़माना था जब कंप्यूटर नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तो अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए खतों का सहारा लिया जाता था। ये वो समय था जब लोग चिट्ठियों का इंतज़ार हफ्तों तक करते थे, और अब वो समय है जब हम किसी से बात करना चाहते हैं तो तुरंत मोबाइल के ज़रिए उन तक पहुँच जाते हैं।

जी बिल्कुल, आज विश्व डाक दिवस है और आज सुबह से ही कुछ ऐसे सदाबहार गीत आप सुन रहे हैं और डाक की उपयोगिता के बारे में जान रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन खतों की जो दिल के बहुत करीब होते हैं, जिन्हें लिखने के बाद भी घंटों तक पढ़ा जाता है कि कहीं कुछ छूट ना जाए, परंतु मन की बात शब्दों के माध्यम से सही जगह पर पहुँच जाए ये तो खत ही निर्धारित करता है।

0: ਬੁੱਲਾ ਬੁੱਲੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿਸ਼ਯ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ?
1: ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਘਰ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਡਾਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿਸ਼ਯ ਦਾ ਭਰੋਸਾ।
0: ਡਾਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ 'ਚ ਕਈ ਯੋਜਨਾਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਤੋਸ਼, ਸੁਵਿਧਾ, ਯੁਗਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਲ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਚੁਣੋ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਵਿਸ਼ਯ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਾਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ RPLI ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਆਈ ਗਈ ਹੈ। ਗਾਓ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਜੋ ਕਰਾ ਦੇ, ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਡਾਕਘਰ ਜਾਣੇ ਹੋ ਤੇ ਡਾਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਡਾਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿਸ਼ਯ ਦਾ ਭਰੋਸਾ।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: हर दिन नई जानकारियों और मनोरंजन को लेकर आता है
5: आपका अपना कार्यक्रम सुबह सुहानी।
4: बातें करेंगे हम आपसे, मनोरंजन की सौगात भी साथ होगी
5: जब हम मिलेंगे आपसे सुबह 7:10 से 8 बजे तक।
4: ये वो समय होता है जब जुड़ते हैं देश विदेश की जानकारियों के साथ,
5: रोजाना ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुंचाते हैं,
4: तभी तो आपकी सुबह होती है और भी सुहानी।
5: तो सुनना ना भूलें मनोरंजन और जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम सुबह सुहानी।

पुराने समय में खत कबूतरों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर भेजे जाते थे और बहुत ही खूबसूरत लिखावट के साथ खुशबूदार स्याही का इस्तेमाल इसमें किया जाता था और जब भी पत्र पढ़ने के लिए खोला जाता था तो उसकी खुशबू की महक चारों ओर फैल जाती थी।

सुरमई सांझ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। शतो खत या पत्र ऐसी चीज़ें होती थी जो लोग उन्हें बक्से में संभाल कर रखते थे, और जब भी किसी अपने का ख्याल आता था तो उन खतों को बार बार पढ़ा जाता था। शब्द वही होते थे लेकिन उनके भाव दिलों को टटोलते थे। ऐसे संदेशे जो दूर बॉर्डर पर बैठे हमारे वीर जवान अपने घर वालों को, अपने माता पिता को, अपनी अर्धांगिनी को, अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को या रिश्तेदारों को लिखते थे। तो कुछ ऐसा ही गीत अब आपके लिए कार्यक्रम में आगे सुनवा रहे हैं।

बॉर्डर फिल्म के इसी गीत के साथ आज का सुरमई सांझ कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम मौजा कराई दियाँ।

0: कार्यक्रम मौजा ग्राएं दिया सुनने वाले सारे किसान कने बागवान भाई बहन जो केसरो दी दो जोड़ी करी राम राम। किसान साथियों ट्याले पर मैं पूजी यो कने मिंजो कने आज पांच जी भी आए हैं, तो पांच जी तो अंजो भी राम राम।
1: राम राम केसरो जी, कने कार्यक्रम सुना करते सारे स्रोत हैं, जो किसान भाई हैं, जो बागवान भाई हैं, जो सारे हैं, जो ही पंच दी तरफा ते भी राम राम।
0: बिल्कुल कने जी, सांझ हुंदी ना पंच जी, सांझो भी नहीं आलो हुंदी कि हाँ जाना है ट्याले पर, कने गलबात करनी अपने किसान भाई बहना कने। कती ही साढ़े जेडे किसान भाई बहन से भी अपने काम काज करी के इस वेले भी आंदे न्यालपा कि भाई हुण अहां रेडियो जेड़ा ऐसे ऑन करना है,

0: कन्नै जेह्ड़ा कार्यक्रम है मौजां ग्राएं दियां सै सुनना है ना जी।
1: कन्नै कन्नै साढ़े किसान भाइयें दे घरै जेह्ड़े इस समय जेह्ड़ा सै रोटी भी बना करदे ओह् कन्नै कन्नै हां दे जेह्ड़े लोग गीत तिन जो सुना करदे साढ़े कार्यक्रम जिन तिना जा भी आनंद जेह्ड़ा सै लिया करदे न है ना
0: जी।
1: और सिंझा दी बेला हां दे जेह्ड़े साढ़े किसान भाई होंदे न दिन भर दी जेह्ड़ा कम्म कार होंदा तिन्हां दे बारे च भी चर्चा करदे न कि अहां अज एह् कम्म कीते कन्नै कल दे बारे च भी जेह्ड़ी इस योजना बनाई जांदी कि अहां कल जेह्ड़ा सै अगर मौसम साथ दिंदा तां अहां एह् कुछ एक कम्म जेह्ड़े से करने न है ना।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल। कन दिक्खा जैलू अहां एक दूए कन्नै गलबात करदे न कि अहां क्या क्या कम्म करने कियां करने न कई जेह्ड़े इनसे करा करदे होंदे ना तो तिन्हां किसान भाई बहनों जो दिक्खी करी दूआ भी सोचदा कि अच्छा एह् कम्म जेह्ड़ा है इन्नी बड़े अच्छे तरीके ने कीता तो अहां भी इ'यां ही करना है तो एक दूए जो जरूर दिखना चाहिदा है कन्नै कौन कोई कम्म जेह्ड़ा ऐसे कुछ तरीके ने करा दा अगर तुहानू लगदा है कि इस च बड़ा फायदा है और इस तरीके ने सानू करना चाहिदा तो जरूर करना चाहिदा है चाहे ऐसे खेती बाड़ी दे काम होन चाहे ऐसे कोई होर काम हो है ना जी।
1: जी जी केशव जी कम कार तो अपनी जगह पर कन्नै कन्नै अजकल दिखा अहां दे किसान भाइयों के घर है जेड़े से तरह तरह के व्यंजन जेड़े से बना करते हैं ना।
0: बिल्कुल
1: क्योंकि साढ़े खेतों में जेड़ी से तरह तरह की जेड़ी सब्जियां ने से तैयार हो गई इन दिनों च और खासकर सरुआं दा साग है ना।
0: पंच जी तुहां तां अज ना मेरे दिले दी गल बोली ती कि अज मैं सोचा दी ही आंदे आंदे भी साड़ी पट्टियां चली साग होया तां नहीं पर बोले ना बाजार जी मंडी चली आ तां दुकानां च ना हरा हरा साग पालक सुज्जा दा दिल करा दा कि अहां ना इक गट्ठू खरीदी लईए कन्नै संझा जाई करी चुल्ली बालीए कन्नै साग बनाइए कन्नै तिस च गोटा लगाई के जी मतलब मक्की दा आटा लगाए पांदे तां सै पाई करी तिसी ओह बना कन्नै सोगी अगर छलियां दी रोटियां भी होई जान ना तां मजा आई जाए। पर पंच जी क्या है कि अजकल थोड़ा देर साग जेह्ड़ा सै थोड़ा महंगा बिका दा क्योंकि अली
1: शुरुआत
0: है हाँ जी पर जैलू साग आई जाना तो दिखा हर घरे च साग जेड़ी इस साग बनने की खुशबू जेड़ी है चली पौनी है कने तीसरी खुशबू कने जेड़ा है ना से भुख लगी पौंदी कने एक दी जगह दो रोटियां हां बद खाई लेंदे।
1: बिल्कुल तुहाड़ा गलाने दे मतलब है कि अहां दे जेड़े मिश्रित साग अहां बनांदे जिस विच सरू भी होई है पालक भी मेथी भी
0: सब कुछ
1: और कई तरह दे जेड़े से अहां दे किसान भाइयों दे घर है जेड़ा से मिश्रित साग जेड़ा से बना करदा और तिसदा जेड़ी से खुशबू चारों तरफ जेड़ी से फैलती है ना
0: जी। कने पंच जी दिखा हुण हटियाले पर बैठे हो ना तो मैं ये सोचा दी कि हुण थोड़ा देर रुकी आंदे कने फिर जैलू साड़ी मुलाकात होनी ना हटियाले पर तो जरूर मैं गरम गरम सरसों का साग ना कने तिस च पाई लेना थोड़ा जिहा देसी घ्यो कने लियोनी है सोगी छलियां दी रोटियां
1: कन्नै हरी मिर्च
0: जी कने मिंजो लगा था कि हुण हटियाले दे माध्यम कने जेड़े किसान जुड़े हो ना सै सुनी के तिन्हां दे मुँहे पानी आई जाना कने जरूर डिमांड हो जानी है कि भई हुण साग बना कने छलियां दी रोटी बना।
1: बिल्कुल बिल्कुल हाँ सारे ही इन चीज़ों का हूँ आनंद भी लेना और लेना भी चाहिए क्योंकि साढ़े किसान भाई जेड़े से लगातार मेहनत करा करते हैं तो मेहनत का जेड़ा फल हों से मिठा ही होंगे है ना।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल।
1: हाँ चलो अहाँ की जी गलबात है लगातार ही जारी रहनी है पर हूँ हाँ सुनना एक प्यारा दिया लोक गीत।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: यार दो दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है
3: और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमेश।
4: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
3: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
4: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और जूते पहने, आसपास की झाड़ियाँ साफ रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत जांच और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
5: ता किसान साथियों दिखा संजय का टाइम है, कन्ने दिखा मौजा ग्राएं दिया कार्यक्रम जोड़ा है तुहां सुना कर देना और प्यारा दिया लोक गीत जरूर तुहां सुने होना, कन्ने जरूर तुहां आनंद भी लिया होना है
6: जी जी।
5: ता उन दिखा काम काज

0: जी गल पासे बढ़ देन कने जियां कि तुहां सारे जानदे कि टियाले पर अहां आई करी बहुत सारी योजना दे बारे च तुहां कने टाइमे टाइमे पर गलबात करदे रहिंदे ने। वैसे तो साडा जिहड़ा किसान है से बहुत जागरूक है, हर योजना दे बारे च जानकारी रखदा है, फिर भी अहां सोचदे हन कि सांझो आई करी इन्हां योजना दे बारे च बार बार गल करना चाहिए, ताकि जिहड़े जिहड़े साडे किसान भाई बहन हैं जिन्हां जो ना भी पता होए तां तिस भी इन्हां योजना दा लाभ ले सकन। और पंच जी अज जिहड़ी योजना अहां लेके आए हो से है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे च, है ना जी, तो ये जी भारत सरकार की एक बड़ी योजना है जिसके तहत देश के करीब 80 करोड़ से ज़्यादा गरीब कने जरूरतमंद नागरिकों जो हर महीने मुफ्त गेहूं कने चावल जोड़े अनाज हैं से दिते जाते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: कने हर योजना जो कुछ ना कुछ लाभ सोची के बनाया जाता है, और इस योजना के लाभ की अगर गल की जाए तो योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र व्यक्ति जो प्रति महीने 5 किलो मुफ्त गेहूं या फिर चावल जड़ा से दित्या जाता है। इस कने ही अंत्योदय परिवार के कार्ड धारकों जो भी प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न प्रति माह मुफ्त मिलता है। सो कि अगर गल की जाए कि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या क्या है, तो इस योजना का लाभ देश के लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों जो ये जी लाभ है मिलया करता है। लगभग अहां गल करिए COVID-19 जी महामारी शुरू हुई थी इस दे दौरान इस योजना जो सरकार ने 1 जनवरी 2024 ते अगले 5 वर्षा ते वास्ते बढ़ाई दित्या था।
1: बिल्कुल, यानी कि थोड़ा बोलने का मतलब है कि जलू कोविड की महामारी जी इसे शुरुआत हुई थी तो उस उन दिनों च जड़ा साड़ी सरकार ने साड़े जेडे गरीब तबका था तिना अन्न मुफ्त जड़ा सा देना शुरू किया, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जड़ा सा ये योजना जी इसे लागू की गई, और आज दिन तक भी जी इसे ये योजना चली है ना जी,
0: जी
1: और साड़े जेडे गरीब परिवार ने BPL दे तहत आंदे
0: ने
1: अंत्योदय योजना के तहत आंदे ने तिना जो इस योजना का जेड़ा सा लाभ मिलना करता है ना
0: जी। जी
1: जी, तो बड़ी अच्छी योजना, और साड़े जेड़े खासकर गरीब तबका तेना वास्ते तो बड़ी फायदेमंद है, और एक गारंटी मिली जाती कि उन्हें जो खाने की जी इस समस्या नहीं आती
0: नहीं होनी है, कहीं राशन जोड़ा सा तिना जो मिली आता है।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल, तो इन्होंने योजना के बारे साझो जानकारी होना चाहिए है, और जरूर इन्हें जानकारियाँ इन योजना का लाभ भी साझो लेना चाहिए है
1: जी। तो हाँ, फिर तो चलना लोग कुछ एक स्नेह भी जड़े से हाँ सुनी लेंगे
0: जी। जी
2: निकला है कोई क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी।
3: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
4: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
3: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
5: बुल्ला बुली अपने परिवार की फिक्र तो सबना जो होंगी है, पर भविष्य की सुरक्षा बारे तुसा कदी सोचा? हाँ जी, इस वास्ते डाकघर ले आया है डाक जीवन बीमा, अपने परिवार की सुरक्षित भविष्य का भरोसा। डाक जीवन बीमा च कई योजनाएं हैं जिन्हें की सुरक्षा, संतोष, सुविधा, युगल सुरक्षा ते बाल जीवन बीमा। अपनी जरूरत अनुसार योजना चुनो ते परिवार के भविष्य जो सुरक्षित बनाओ। हुन शहरी लोगों वास्ते भी ग्रामीण डाक जीवन बीमा RPLI की सुविधा आई गई है। गांव हो या शहर, अपने परिवार की सुरक्षा वास्ते डाकघर तुहांदे कन्ने है, ते फिर देर कजो करा दे, अजे अपने नजदीकी डाकघर जान्यो ते डाक जीवन बीमा की पूरी जानकारी ले आन्यो। डाक जीवन बीमा, अपने परिवार की सुरक्षित भविष्य का भरोसा।

0: सुनने मिलन तक काफ़ी जड़ी इसे सारे दिने दी थकान जड़ी से मिटी जाती
1: मिटी
0: है।
1: आंदी। बिल्कुल जी बिल्कुल।
0: और दिखा अजकल अहाँ दे जड़े किसान भाई ने बागवान भाई ने इन्हें दिन काफ़ी सारे कामकार जड़े से तिना जो कट्ठे पे न एक ही बाहे तिना जा गाय बढ़ने का काम चले है ना,
1: बिल्कुल
0: तिना
1: जी
0: सुखा रखा फिरी कन्ने मक्की का कम है कन्ने धान का कम अजकल चले है ना।
1: जी
0: तो
1: जी
0: इन्हें दिन अहाँ दे किसान भाई जड़े से कामकार थोड़े सावधानी ने जड़े से करना चाहिए, जल्दबाजी से जड़े से कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे अपने आप जो कोई नुकसान हो गया है ना।
1: बिल्कुल
0: जी कि अहाँ मैंने यहाँ गाय बढ़ना ही जा करते तो इस बीच अहाँ दे एक तो जेडे दराटी वगैरह से भी अच्छी होनी चाहिए बढ़िया होनी चाहिए कन्ने ही अहाँ दे जी कि उन्होंने भी थोड़ी देर पहले संदेश एक आया था कि अहाँ जो जेडे से जूते अपने कपड़े जेडे से पूरे ही शरीर जो ढकने वाले जेडे से
1: जी
0: पहनना
1: जी जी
0: चाहिए
1: बिल्कुल
0: जिससे कि किस तरह दी सं साड़ी शरीर जो नुकसान ना हो और कन्ने ही संजे जेडे साफ सफाई का भी ध्यान जेडा से इन्हें दिन च रखना है अपने खान पान का भी समय समय पर अहाँ ध्यान रखिए ता ही साड़ी जी सेहत है सह भी बनी रहनी कन्ने कन्ने अहाँ के काम कार भी जेडे से अच्छे चलने।
1: जी करे गल तो बिल्कुल ठीक गलाई कि अजकल जी घा बढ़ने का काम चले तो भी साड़ियाँ जो दराटियाँ ना सह सजो जरूर चंडी करी लेके जाना चाहिए क्योंकि घा ताई तौली बढ़ोदा है जी साढ़े संदर जड़े से अच्छे होन कने पहनने होन है ना
0: जी
1: जी।
0: जी
1: करे दूई गल तो ये बोली कि भाई कपड़ियाँ का कने खास करी के जड़े बूटा की गल तो की तो बूट पाई के अगर अहाँ जान तो अहाँ कई सारे ऐसे कीड़े कंडुआ तो बची सकते हैं और सोगी अपना आप भी संभाली सकते हैं। और वैसे भी अजकल सर्दियों का टाइम जरा से लगे है अजकल संजय सवेरे ठंड हुआ करती है तो अहाँ ठंडी से भी बची सकते हैं और ऐसी वैसी कोई घटना दुर्घटना ना हो जाए तो सांझो जरूर चल भी अहाँ कमे पर जाते हैं खेती बाड़ी के काम करते हैं या गाय बढ़ना जानते हैं तो इन्हें गल्ला जो अगर अहाँ सोची के जाएंगे तो अहाँ अपना भी ख्याल रखी सकते हैं।
0: बिल्कुल। और इस दे कन्ने ही हुण हाँ कार्यक्रम दे अंच एक और प्यारा दे लोक गीत जेड़ा से लेना है पर
1: जी
0: तिस ते पहले सुनने ने कुछ एक
1: सुनील
0: संदेश।
1: जी
2: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी।
3: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई,
4: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
3: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
4: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
3: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
4: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
3: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज़।
4: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम, आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश। लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: जी तो इसी चंबेली लोक गीत कन्ने साढ़े कार्यक्रम दसमें भी संपन्न होवा दा, पर जाने ते पहले दस दिए कि तकनीकी सहयोग रहा सुनील शर्मा होरा दा, कन्ने प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह होरा। हुण सांझे दूनी जो दिया अनुमति।
1: अच्छा जी, जय हिंद, जै हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजा गरेंदियाँ। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 7 बजने को हैं, अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशन पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये पाबंदी अगले आदेश तक लागू रहेगी। वहीं रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन

0: पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद न करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि स्टारलिंक जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और यूटेलसेट वन वेब सहित तीन कंपनियों को सैटेलाइट संचार लाइसेंस दिए गए हैं। नई दिल्ली में श्री सिंधिया ने कहा कि सरकार राजस्व साझाकरण के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीट पर जीत हासिल कर ली है। तमिलनाडु की दारापुरम में टीवीके ने जीत हासिल की, जबकि मधुरांतकम सीट पर टीवीके आगे चल रही है। पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने जीत हासिल की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और इथियोपिया की रणनीतिक साझेदारी, साझा मूल्यों, समान आकांक्षाओं और विकासशील देशों के बीच ऐतिहासिक एकजुटता पर आधारित है। डॉक्टर जयशंकर ने आज अदीस अबाबा में इथियोपिया के विदेश मंत्री घिदियोन तिमोथिओस हेसेबोन के साथ अदीस अबाबा में बैठक की। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान व्यापार, निवेश, विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत के साथ खेलते हुए टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया था। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेनो कटारिया। Delhi police has denied permission for the proposed protest by the CJP at Jantar Mantar tomorrow. Addressing the media in New Delhi this morning, Delhi Police Joint Commissioner Nupur Prasad said that applications seeking permission to hold protest or other programs at Jantar Mantar must be submitted at least 10 days in advance. Ms. Prasad noted that the CJP had previously been granted permission to hold a protest at the venue but failed to comply with the prescribed guidelines and the undertakings given by the party. The Joint Commissioner said the decision to deny permission was taken in view of the prevailing law and order situation, public safety and traffic regulations in the New Delhi area.
2: We have received an application from Sarov Das, co-convener of Congress Janata Party. The application is regarding an intimation for protest of on 10th of October at Jantar Mantar. The protest was regarding accountability of CEC. This intimation was considered and it was found that the intimation was given in a very short span of time, whereas as per the prescribed guideline, the intimation has to be received 10 days prior to the protest, which is

0: कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुनने वाले सारे किसान कने बागवान भाई बहन जो एक बारी फ्री थे केसरो दी दो हाथ जोड़ी करी राम राम है और तुहां सारे जानते हैं कि आज ट्याले पर मिंजू कने पंच जी हैं तो पंच जी तुहां जो भी एक बारी फ्री थे राम राम
1: राम राम केसरो जी कने कार्यक्रम सुना करते सारे स्रोतें जो एक बारी फ्री थे ट्याले थे राम राम और देखा ठंडी ठंडी हवा चलिए इस वेले और हाँ चाय दी जिड़ी से आनंद भी ले लिया और कने कने जिड़ा से थोड़े हाँ अपने सोचा दे कि थोड़े किसान भाई ने एक बारी फ्री थे जड़ा से गलबात जड़ी से कर ली और उन्होंने तक जड़ी जानकारी ने से पहुंचाई ली है ना
0: जी
1: जी हाँ जानकारी तो आजकल दिखा हाँ दे आने वाली जड़ी मुख्य फसल है गेहूं है ना
0: जी
1: इसके बारे च भी हाँ जड़ी इससे सबसे पहले गल करनी है तो साढ़ा जरा प्रसार शिक्षा निदेशालय चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर दे कृषि पशुपालन विज्ञानिका ने जड़ी इसे बोले कि साढ़े जड़े किसान भाई हिमाचल प्रदेश दे जड़े उच्चे पर्वतीय क्षेत्रां विच सिंचित और असिंचित क्षेत्रां विच अक्तूबर के पहले पखवाड़े च जड़े से गेहूं की अगेती किस्म जियां कि HS 542 HPW 360

0: और VL 829 दी जिहड़ी किस्मां ने गेहूं दियां, इन्हां दी बिजाई जिहड़ी इसे करी सकदे न।
1: जी
0: कन्नै कन्नै बीज दी मात्रा जिहड़ी इसे 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दे हिसाबे ने जिहड़े इसे करी सकदे। और गेहूं दी बिजाई जो बीज ते पहले जिहड़े इसे फफूंद नाशक बेविस्टीन यानी कि 2.5 ग्राम या फिर बीटाबैक्स 2.5 या रैक्सिल नामक दवाई है 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दी दर कन्नै जेह्ड़े से हाँ जो अपने बीज दा उपचार करके ही जेह्ड़े से अपना बीज जेह्ड़े से बोना है ना।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि बोलते ना कि बीज जेड़ा ऐसे साड़ा अगर अच्छा होगा तो फसल साड़ी तो अच्छी होंगी है।
0: बिल्कुल केसरू जी, कहना हाँ अपने किसान भाई एक बारी फिर ते दस दिए कि साढ़े जेड़े अगेती किस्म दे गेहूं दे किस्मन से ने HS 542, HPW 360, कन्नै VL 800 829, ये कुछ एक किस्मत जड़ी के अहाँ दे किसान भाई जड़े से साढ़े जड़े कृषि विक्रय केंद्र ने उत्तु जाए के इन किस्मत के बारे च पता करी सकते। ब्लॉक बिच जड़े कृषि प्रसार अधिकारी ने उन्हें कन्नै गलबात करी के इन किस्मत दी जड़ी इसे मांग करी
1: करी
0: सकते हैं,
1: सकते बिल्कुल जी बिल्कुल।
0: क्योंकि हुण अक्टूबर का पहला पखवाड़ा जड़ा से शुरू हुई है ते कई किसान भाई जड़े से खासकर साढ़े जड़े उपरी क्षेत्र न है ना जी
1: जी
0: मध्यवर्ती क्षेत्र जिथू जिहड़े से सिंचित और असिंचित जिथू सिंचाई की सुविधा है भी और जिथू नहीं है उतू जिहड़े से इन किस्म लगाई के जिहड़े से अच्छा उत्पादन जिहड़े से कणका का ले
1: ले
0: सकते
1: सकते
0: हैं।
1: हैं बिल्कुल जी बिल्कुल। और दिखा खेतीबाड़ी दे काम काज जिहड़े इनसे बोलते ना कभी खत्म नहीं होंदे और होने भी नहीं चाहिए दिन। बोलते कि जितना हाँ मिट्टी कने जुड़े रहेंगे हाँ जो बोलते ना एक प्रेम भाव भी रहता है कने अपनी मिट्टी के प्रति जी ऐसे भी प्रेम रहता है। और दिखा खेतीबाड़ी दे काम जिहड़े इनसे हमेशा करने चाहिए कने सोगी अजकल जिहड़े निक्के आने न तिन्हां जो भी अपने खेतीबाड़ी दे काम च लगाना चाहिए ताकि तिन्हां जो भी फसलों का जिहड़ा ऐसा पता लगे कि कौन दी फसल कालू लगाते हैं और कियां करते हैं, है ना जी।
0: बिल्कुल, ये तो बड़ी अच्छी केसरू जी गल दसी तुम कि अहाँ जी अगली पीढ़ी ने तिना जो भी अहाँ जो जड़े से खेती करने साड़ी
1: जी
0: मिट्टी करने जमीना करने जोड़ना चाहिए और उन्हें जो पता लगना चाहिए कि अहाँ जड़ा ये खाना खा करते ना ये कुतू ते आंदा है
1: हाँ
0: ना।
1: जी, क्योंकि अजकल दिन सिर्फ यही पता होंगे कि अनाज जड़ा से साढ़े जड़े घरे वाले से बाजारे ते लेके आते हैं, है ना, खरीदी करी ले आते हैं,
0: जी जी
1: पर तिना जो ये नहीं पता कि मिट्टी च भी अनाज जड़ा है उगता है किया उगता है बी लगता है फिर इसे किया जमीन ते निकलता है फिर तीसरी किया देखभाल करते हैं किया से फसल तैयार होंगी है। तो ये सब चीज़ा जड़ियाँ इनसे सो बच्चे जो जरूर दसना चाहिए खास करके जड़े किसान हैं इनसे। चलो खैर मिट्टी ने जुड़ी रहते हैं जमीन के काम करते हैं लेकिन होर जे साढ़े स्रोत हैं तिना कने अं ये बोलना चाहेंगे कि बच्चा जो भी तुह थोड़ा बहुत खेतीबाड़ी के काम काज के बारे दसा अनाजा के बारे दसा क्यों, क्योंकि अजकल देखा जाता है कि जल अहाँ थाली च अपना भोजन पाई लेंगे ना तो कई बार बच्चे जो इनसे झूठा छड़ी देते हैं तो
0: जी
1: अहाँ भी नहीं टोकते अहाँ भी बोलते कि कोई गल नहीं, पर जो दसना चाहिए था कि अनाज जड़ा है से बहुत बहुमूल्य है और तीसियों उगाने वास्ते एक किसान बहुत मेहनत करता है।
0: बिल्कुल तुम ठीक गला दे केसरी जी, और इस बीच एक तो साड़ा मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर जल वहाँ कम कर दें तो सुदृढ़ बन दें, क्योंकि अहाँ जल खेतीबाड़ी दे काम कार लगातार कर दें
1: जी
0: तो साड़ा एक तो शारीरिक तौर पर अहाँ फिट रह देना और कन्ने
1: बिल्कुल
0: कन्ने अहाँ का मानसिक स्थिति भी जी से
1: ठीक
0: अच्छी बनी
1: रहती है
0: रहती है,
1: बिल्कुल जी
0: क्योंकि
1: बिल्कुल
0: जल वहाँ शारीरिक तौर पर जड़े से ठीक रहना था अहाँ का वैसे ही दिमाग भी जड़े से अच्छे कम वास्ते जड़े से लगता है ना।
1: जी जी और दिखा पंच जी गल जी इसे होर भी इस बारे च अहाँ करनी जरूर है क्योंकि गल्ला गल्ला कने होर भी गल्ला दिमाग च आ कर दी पर पहले अहाँ एक प्यारा दे लोक गीत ले लेंदे इसके बाद अपनी गलबात बढ़ांगे, है ना जी।
0: जी जी जी

0: जी तो इसी प्यारे दे लोक गीत कन्ने तुहानू जो दस दिए कि इस कार्यक्रम जो तुहानू तक पहुँचाने वास्ते तकनीकी सहयोग दिता सुनील शर्मा होरा कने प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह होरा हूँ अपने टियाले दे सदस्य पंच जो
1: कने केसरो जो दिया अनुमति।
0: अच्छा जी जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीबाड़ी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:43 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में यानी 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रिले के लिए कीजिए कुछ ही पलों का इंतज़ार।

0: विद्युत आपूर्ति संबंधी किसी भी समस्या के समाधान के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 1-800-180-8060 या 1912।
1: बिजली के खंभों और तारों की कोई समस्या हो
0: या बिजली के बिलों से संबंधित कोई समस्या हो
1: या हो कम या अधिक वोल्टेज की समस्या,
0: टूटी हो सर्विस तार
1: या समस्या हो ट्रांसफार्मर की,
0: विद्युत संबंधी हर तकनीकी समस्या का समाधान होगा टोल फ्री नंबर 1-800-180-8060 या 1912 पर।
1: ये सुविधा IVRS और कॉल सेंटर के माध्यम से उपलब्ध है।
0: हम आपकी सुरक्षा एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सदैव तत्पर हैं।
1: हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा पब्लिक इंटरेक्शन कार्यक्रम के तहत जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, हिमाचल में सड़क, स्वास्थ्य व रेल सेवाओं सहित आर्थिक अवसरों के विस्तार के लिए निरंतर सहयोग कर रही है केंद्र सरकार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने का किया आह्वान। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, प्रदेश में इस बार कम हुआ सेब सीजन, अभी तक केवल 1,23,00,000 पेटियां पहुंची बाजार तक। विश्व डाक दिवस के अवसर पर प्रदेश डाक परिमंडल द्वारा राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन, 15 अक्टूबर तक होंगे कई कार्यक्रम। और प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के दौरान सरकारी हेलीकॉप्टर के कथित प्रयोग को लेकर उठाए सवाल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में सड़क सुविधाओं, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक अवसरों के विस्तार के लिए निरंतर निवेश और सहयोग उपलब्ध करवा रही है। आज बिलासपुर में उन्होंने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों, ग्रामीण सड़कों, रेल नेटवर्क, स्वास्थ्य, ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के बाद एक पत्रकार में ये बात कही। जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि प्रदेश में एनएचएआई परियोजनाओं में कुल 55,103 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा निवेश किए गए हैं।
1: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये 55,000 करोड़ रुपए की सड़कें बना, 55,000 करोड़ रुपए हिमाचल के बजट से ज्यादा है। यानी हमें देखने का नजरिया समझना होगा कि हम आपको जो साल का हिमाचल का बजट होता है उतना तो हम आपको नेशनल हाईवे

0: पार्टी ऑफ इंडिया से।
1: जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन परियोजना में बिलासपुर बैरी खंड में भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले और राज्य सरकार द्वारा लंबित देय हिस्सेदारी उपलब्ध न करवाने से परियोजना में देरी हो रही है।
0: भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे की प्रोजेक्ट की बात करें, बिलासपुर बैरी लाइन 62 किलोमीटर और 13,410 करोड़ रुपए इसमें खर्च हो रहे हैं। 75% रेलवे देने वाला है, 25% हिमाचल गवर्नमेंट देने वाली है। लैंड एक्विजिशन जो बिलासपुर से बेरी तक होना है, यह पिछले 3 सालों से स्टेट गवर्नमेंट के पास पेंडिंग पड़ा है और इस कारण से बिलासपुर से हम आगे बढ़ने में अक्षम है। उसी तरीके से स्टेट को डिपॉजिट करना है 4,818 करोड़ रुपए, अभी तक स्टेट ने डिपॉजिट किया है 847 करोड़ रुपए और बाकी सब खर्च केंद्र सरकार कर रही है।
1: जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि किशाऊ बहुदेशीय परियोजना पर केंद्र सरकार द्वारा कुल लागत का 90% वहन किया जाएगा, जबकि शेष 10% अन्य संबंधित राज्य वहन करेंगे।
0: 7,000 करोड़ रुपए दिए, इसको नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया। एक बहुत बड़ा काम हुआ है, आपको कभी किसी ने चर्चा नहीं की होगी, वो है किशाऊ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ये किशाऊ लगभग 20 साल से 4-5 स्टेट गवर्नमेंट के बीच में फंसा है, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। इसको अभी जून में हमारे गृह मंत्री जी ने क्लियर किया और इस प्रोजेक्ट में 15,624 करोड़ रुपए खर्च होंगे बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लूरी स्टेज 1 1,800 करोड़ रुपए इसके लिए अलग से दिए गए।
1: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से शिक्षा, राष्ट्रभक्ति व सामाजिक कर्तव्यों का पालन करके समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने का आह्वान किया है। सोलन जिला के वाकनाघाट स्थित निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान उन्होंने उम्मीद जताई कि युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाएंगे। राज्यपाल ने कहा कि युवा पीढ़ी अनुशासन में रहकर कार्य करेगी तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को सफल बनाने में अहम भूमिका युवाओं की होगी। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश में सेब सीजन इस बार कम दर्ज किया गया है और अभी तक केवल 1,23,00,000 पेटियां ही बाजार तक पहुंच पाई हैं। उन्होंने कहा कि MIS के तहत इस साल करीब 13,000 मीट्रिक टन सेब की खरीद की गई, जबकि बीते वर्ष 79,000 मीट्रिक टन सेब खरीदा गया था। जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार MIS के तहत सेब खरीद पर समर्थन मूल्य 1 रुपये बढ़ाने पर विचार कर रही है।
2: प्रदेश में सेब सीजन अब जो है लास्ट बोर्ड पर है और इस बार जो MIS के तहत जो सेब SPMC और हिमफेड़ के माध्यम से लिया गया वो पिछले साल के वर्ष पर बहुत ही कम रहा। अभी केवल 13,000 मैट्रिक टन ही आज की तारीख तक जो है MIS के तहत हमने प्रोक्योर किया है और पिछली मरतबा जो है 98,000 मैट्रिक टन हुआ था।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
3: यार 2 दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है।
4: और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमे।
5: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
4: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
5: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और पहने और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा में जारी।
6: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
7: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकार
6: है। किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
7: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
6: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
7: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज़।
6: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक

0: और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश। लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में, विश्व डाक दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश डाक परिमंडल द्वारा आज से 15 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है। प्रदेश डाक परिमंडल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल संजय सिंह ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि विभाग डाक संचालन में तकनीक और नवाचार के बढ़ते उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, ताकि सेवाएं हर नागरिक के लिए और सुलभ व सरल बन सकें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय डाक सप्ताह के तहत प्रतिदिन विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: वर्ष का सप्ताह डाक संचालन में प्रौद्योगिकी और नवाचार के बढ़ते उपयोग पर केंद्रित है, ताकि डाक सेवाएं हर नागरिक के लिए और अधिक सुलभ, सरल एवं सुविधाजनक बन सकें। इस वर्ष का जो हमारा थीम है वह है एक डाक नेटवर्क, अनंत संभावनाएं। इस डाक सप्ताह की प्रमुख गतिविधियां रहेंगी आज 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस का आयोजन करना और राष्ट्रीय डाक सप्ताह का उद्घाटन। सभी डाकघरों में बैनर और डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से विश्व डाक दिवस व डाक सप्ताह का व्यापक प्रचार प्रसार करना। एक डाक नेटवर्क, अनंत संभावनाएं से संबंधित वीडियो का प्रसारण व लोगों को इसके बारे में जागरूक करना।
1: संजय सिंह ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में जल्द ही 110 मार्गों पर ड्रोन के जरिए डाक और पार्सल की डिलीवरी शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जारी रहने वाली अथक वचनबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में बात कर रहे हैं अयोध्या में सरकार द्वारा स्थापित किए गए ऐतिहासिक राम मंदिर के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राम मंदिर भारत की दृष्टि और भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है।
3: ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है।
1: प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता व पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट चोरी के बजाय खजाना चोरी के नारे लगाने चाहिए।
4: कांग्रेस के खुद के नेताओं ने 5 अटैचियां, जिसमें से 3 दिल्ली और 2 अटैचियां हिमाचल प्रदेश में रहने की बात कही, उस पे ना तो मुख्यमंत्री ने ना सरकार ने कोई स्पष्टीकरण दिया है। दूसरा, पिछले कल प्रदेश के मुख्यमंत्री सरकारी हेलीकॉप्टर लेकर दिल्ली रवाना हुए, जो आंदोलन हो रहा था उसमें राहुल गांधी जी के पीछे खड़े हुए। सरकार ये बताएगी कि बिना टूर प्रोग्राम जारी किए ये क्या खजाने की चोरी नहीं है? लोगों में ये भी चर्चा है कि ये जो आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री खुद शामिल होने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई टैचियों की व्यवस्था तो नहीं होके गई है? क्योंकि देश के खिलाफ एक आंदोलन जो चला हुआ है, झूठा आंदोलन जो चला है, लोगों को गुमराह करने का आंदोलन जो चला है, उनको खुश करने के लिए तो नहीं हुआ? जिस तरीके से प्रदेश के खजाने को खाली किया गया है और वोट चोरी की जगह जो है खजाना चोरी का नारा कांग्रेस को लगाना चाहिए।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, हिमाचल में सड़क, स्वास्थ्य व रेल सेवाओं सहित आर्थिक अवसरों के विस्तार के लिए निरंतर सहयोग कर रही है केंद्र सरकार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने का किया आह्वान। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, प्रदेश में इस बार कम हुआ सेब सीजन, अभी तक केवल 1,23,00,000 पेटियां पहुंची बाजार तक। विश्व डाक दिवस के अवसर पर प्रदेश डाक परिमंडल द्वारा राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन, 15 अक्टूबर तक होंगे कई कार्यक्रम। और प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के दौरान सरकारी हेलीकॉप्टर के कथित प्रयोग को लेकर उठाए सवाल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर। नमस्कार।
5: जो वृद्ध हैं अकेले और

0: सहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा,
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल,
0: नौ आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सबर रहे,
1: पंचायत सिफारिश साथ लाए, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं,
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: प्रादेशिक समाचार आप हमारे हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी शिमला है। रोजगार समाचार सुनिए। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी छोहरा जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार बाल विकास परियोजना छोहरा जिला शिमला के मृत डोडरा कवार अंतर्गत में आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों को भरने हेतु संबंधित आंगनबाड़ी क्षेत्र की स्थायी निवासी महिला उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन पत्र कार्यालय उपमंडलाधिकारी डोडरा कवार में लिए जाएंगे। योग्यता इस प्रकार से होनी चाहिए, केवल महिला अभ्यर्थी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के पदों हेतु आवेदन के योग्य है जो अभ्यर्थी आंगनवाड़ी केंद्र के संग्रहण क्षेत्र की निवासी हो, अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, अभ्यर्थी की आयु आवेदन की अंतिम तिथि के दिन 18 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक ना हो, अभ्यर्थी के परिवार की वार्षिक आय 50,000 से अधिक ना हो और वैध आय प्रमाण पत्र नायब तहसीलदार, तहसीलदार, कार्यकारी दंडाधिकारी स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। दस्तावेज इस प्रकार होने चाहिए, आवेदन पत्र पर आवेदित पद व आंगनबाड़ी केंद्र का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित छाया प्रति होनी चाहिए, 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र जो कि आयु प्रमाण हेतु की अनुप्रमाणित छाया प्रति होनी चाहिए, परिवार की वार्षिक आय की अनुप्रमाणित छाया प्रति, हिमाचली प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित छाया प्रति। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर 2026 है। स्थान कार्यालय उपमंडलाधिकारी डोडरा कवार। रोजगार समाचार अभी आपने सुने। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:28 हुए हैं। लीजिए सुनिए विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। सबरस कार्यक्रम में हम विविध संगीत आपको सुनवाते हैं। तो चलिए आगाज कर रहे हैं इस गीत के साथ।

शौना शिओली और कामयानी की मिली जुली आवाज़ों में अभी आपने ये एल्बम सॉन्ग सुना। कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए अलका याग्निक और उदित नारायण को।

रात्रि के 8:10 हुए हैं। विभिन्न रंगों से सजा कार्यक्रम सबरस आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, जिसमें एल्बम गीत, गजलें, पंजाबी गीतों का मिला जुला संगम हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब लीजिए सुनिए वसुंधरा को।

0: जब सुनाना हो दिल का हाल
1: तो इसमें भाई क्या है सवाल?
0: क्योंकि हेलो धर्मशाला आ रहा है एक नए अंदाज में।
1: उठाइए फोन, मिलाइए हमारे स्टूडियोज का फोन नंबर
0: 01892224391।
1: कीजिए हमसे बात और सुनिए अपने पसंद का गीत।
0: रिकॉर्डिंग हर शनिवार को दिन में 1:30 से 2 बजे तक होगी।
1: कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा प्रत्येक मंगलवार सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, क्योंकि हेलो धर्मशाला पहुँचे दिल से दिल तक
0: आपकी अपनी फ्रिक्वेंसी 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: विकास संवाद,
1: एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें बातें होंगी विकास की।
2: विकास के इस सफर में हमारे हम सफर होंगे विभिन्न विभागों से आए प्रतिनिधि।
1: कार्यक्रम के इस अंक में आपके रूबरू होंगे हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा।
2: कार्यक्रम का प्रसारण होगा मंगलवार दिनांक 20 अक्टूबर 2026 को सुबह 11:05 पर।
1: तो सुनना न भूलिएगा
0: विकास संवाद।

0: अंदाज वही कुछ अल्फाज है बदले,
1: सौगात नई कुछ नए तराने,
2: तभी तो दिल ढूंढे आपसे मिलने के बहाने।
0: अब छिड़ेगी हिमगुंजन में लोक गीतों की सुरीली तान,
1: गूंजेगा खेल जगत और नॉन फिल्मी गीतों से सारा जहान।
2: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी धर्मशाला पर आप और हम में दीजिए अपनी राय और सुझाव।
0: सरकारी योजनाओं और नीतियों का कार्यक्रम होगा विकास संवाद।
1: ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी धर्मशाला पर
0: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी धर्मशाला, वही आपकी अपनी जानी पहचानी सी रेडियो फ्रिक्वेंसी
2: जो पहुंचे दिल से दिल तक।

0: हर दिन नई जानकारियों और मनोरंजन को लेकर आता है।
1: आपका अपना कार्यक्रम सुबह सुहानी,
0: बातें करेंगे हम आपसे, मनोरंजन की सौगात भी साथ होगी।
1: जब हम मिलेंगे आपसे सुबह 7:10 से 8 बजे तक,
0: ये वो समय होता है जब जुड़ते हैं देश विदेश की जानकारियों के साथ,
1: रोजाना ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुंचाते हैं।
0: तभी तो आपकी सुबह होती है और भी सुहानी।
1: तो सुनना ना भूलें मनोरंजन और जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम सुबह सुहानी।
2: सब्रस कार्यक्रम के अंतिम पेशकश अब लीजिए सुनिए हरिहरन की आवाज में।

हरिहरन की गाई इस गजल के साथ आज का सबरस कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए देश प्यार के गीत।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
2: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
2: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
3: देश प्यार के गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

0: आप सुन रहे थे देश प्यार के गीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या रात 9:00 News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले की जाएंगी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलगा वेत्री कड़गम ने भी तमिलनाडु में विधानसभा उपचुनाव में दोनों सीटें जीती। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी में एक सीट पर जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा विजय रही। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4:00 से दोपहर 2:00 के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई। भारत ने कहा, स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवीपिल्ले को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में 3 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और तमिलगा वेत्री कड़गम ने 2-2 तथा ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल कर ली है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम में जीत हासिल की। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कड़गम TVK ने दारापुरम और मधुरांतकम में जीत हासिल की। पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजय रही। असम के नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजी नगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा NDA के सुशासन पर भरोसा है। श्री मोदी ने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने पुदुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए NDA की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जीत लोगों की भलाई और उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करने में पार्टी को और मजबूती देगी। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
2: 7 तारीख को

0: एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंडिमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
1: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं दिल्ली में सराय काली खां और न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन आज रात 9 बजे से कल रात 10 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान दिल्ली के आनंद विहार से उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं तय समय पर सुचारू रूप से चलेंगी। इधर रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। शंकर रोड वंदे मातरम टी पॉइंट से नई दिल्ली की ओर जाने वाले गोल चक्करों, झंडेवाला, पंचकुइया मार्ग, मंडी हाउस, अशोक रोड से जंतर मंतर रोड, विंडसर पैलेस और टॉलस्टॉय मार्ग से जनपथ क्रॉसिंग तक के लिए मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। यात्रियों को पहले से यात्रा की योजना बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि स्थायी श्रम प्रमाणन पर्म कार्यक्रम के संबंध में अमेरिका के फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रतिभाओं का आवागमन भारत और अमेरिका दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय पेशेवरों को अवसर मिलते ही हैं, साथ ही अमरीकी कंपनियों को भी अत्याधुनिक प्रतिभा, नवाचार, अनुसंधान, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार सृजन के माध्यम से समान रूप से लाभ मिलता है। श्री जायसवाल ने स्पष्ट किया कि पर्म कार्यक्रम H-1B वीजा से अलग है।
2: यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पर्म H-1B वीजा कार्यक्रम से अलग है। पर्म आवेदनों का निलंबन अपने आप में मौजूदा H-1B वीजा की वैधता या H-1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों डिपेंडेंट्स यानी की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है। हालांकि प्रभावित कंपनियां के योग्य कर्मचारियों की स्थायी निवास अथवा ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है।
1: श्री जायसवाल ने अमरीका के उपराष्ट्रपति J.D. वेन्स की गैर अमरीकी कामगारों पर टिप्पणियों को अनुचित बताया।
2: हम मानते हैं कि इस तरह के वर्णन अवांछित हैं और उस तथ्य को नजरअंदाज करते हैं कि अमेरिका में भारतीय पेशेवर उच्च शिक्षित हैं। वास्तव में अमेरिका का अपना इतिहास पीढ़ियों से आए उन प्रवासियों द्वारा गढ़ा गया है जिनके श्रम, उद्यम और नवाचार ने उसकी वृद्धि और समृद्धि में योगदान दिया है। ऐसे शब्दावली का प्रयोग करना जिससे दुखद ऐतिहासिक और उपनिवेशिक विरासत के संदर्भ जुड़े हों अत्यंत आपत्तिजनक है।
1: संचार मंत्री जो

0: ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार राजस्व साझा किए जाने के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी।
1: There are three parties that have got licenses.
2: तीन कंपनियों को इसके लिए लाइसेंस दिए गए हैं, इनमें रिलायंस जियो, वन वेब और स्टारलिंक शामिल हैं। राजस्व शुल्क से जुड़ी व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने के बाद तीनों कंपनियों को अलग अलग निर्धारित शर्तों और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, साथ ही सभी जरूरी प्रक्रियाओं का अनुपालन भी सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद ही प्रत्येक कंपनी परिचालन शुरू कर सकेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को हकीकत में कैसे बदला जा रहा है।
3: सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीक की नींव है और किसी भी देश की आर्थिक ताकत का एक अहम आधार है। इनका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूरसंचार, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा और आधुनिक विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में होता है। पिछले दो वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में 20% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत में 6 राज्यों में 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है। नई दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत को सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
4: भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए आईटी विशेषज्ञ प्रसून शर्मा ने कहा कि भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा अब केवल सपने देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब इसे जमीन पर उतारा जा रहा है।
5: सेमीकंडक्टर जर्नी,
6: भारत अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में केवल उपभोक्ता और डिजाइनर बने रहने के बजाय चिप निर्माण और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर तकनीक को AI, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, रक्षा, रेलवे और औद्योगिक ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों से जोड़ना भी है।
5: इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन,
3: भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में रणनीतिक क्षमताएं विकसित करने से लेकर एक व्यापक घरेलू इकोसिस्टम तैयार करने तक का बदलाव आया है। इन प्रयासों से भारत सेमीकंडक्टर के हर क्षेत्र में काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से निरंतर कौशल उन्नयन और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुकूल ढलने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में विश्व कौशल प्रतियोगिता में शामिल भारतीय टीम के सदस्यों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने ये बात कही।
7: हमने अपने आप को भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, विश्व में जो नए नए बदलाव आ रहे हैं, बदलाव की दृष्टि से अपने आप को ढालना पड़ता है। आपके पास क्या है, कितनी डिग्रियां हैं, उसका अपना महत्व है ही, लेकिन आपको आता क्या है, उसका जवाब है स्किल। जीवन में कोई न कोई स्किल होना चाहिए, तब जाकर के आप काफी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
0: चीन में 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में टीम इंडिया ने 6 रजत पदक और उत्कृष्टता के लिए 20 पदकों के साथ 10वां स्थान हासिल किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से तय नहीं होती, बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

0: में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आधुनिक सैन्य उपकरणों के एक विश्वसनीय निर्यातक के रूप में उभर रहा है। रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 249 रन बनाए। संजू सैमसन ने 82 रन की पारी खेली। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलगा वेत्री कड़गम ने तमिलनाडु में उपचुनाव में दोनों सीटें जीती। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी में तत्तान चावड़ी सीट पर जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा ने जीत दर्ज की। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई। भारत ने कहा, स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवीपिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. BJP wins assembly polls for Rajinagar and Nandigram constituencies in West Bengal. In Tamil Nadu, ruling TVK wins assembly by polls for Madurantakam and Dharapuram seats. All India NR Congress retains Thattan Chowri assembly constituency in Puducherry. BJP also bags Assam's Nogaon Lok Sabha seat. Delhi police declines permission for protest at Jantar Mantar tomorrow. 57 metro stations in Delhi to remain closed till tomorrow due to security reasons. All mail and express trains scheduled to arrive at New Delhi and Hazrat Nizamuddin railway stations between 4 a.m. and 2 p.m. tomorrow stands cancelled at source stations. India stresses the steps announced by US regarding permanent labour certification program do not advance shared ambitions of both countries. South African jurist of Indian origin Navnetham Navipillai wins Nobel Peace Prize for her contributions to promoting peace and international law. And in cricket, second T20 international between India and West Indies underway in Ranchi. The BJP has registered massive victories in both assembly constituencies of West Bengal Nandigram and East Mednipur district and Rajinagar in Murshidabad district, where by-elections were held. In Nandigram, BJP candidate Hasi Rani Rath defeated a nearest rival, Congress candidate Milan Pradhan, by a margin of over 1,22,000 votes. In Rajinagar, BJP candidate Shakarav Sarkar wrested the seat from the Aam Janata Union Party, or AJUP, securing 1,29,914 votes. He defeated his nearest rival, Ghulam Nabi Azad, son of AJUP chief Humayun Kabir, by a margin of over 75,000 votes. With victories in both these constituencies, the BJP's tally in the West Bengal Assembly has risen to 209 seats. In Puducherry, All India NR Congress candidate Ashok Anand has secured a comfortable victory with a margin of 8,482 votes for Thattanam Chowri Assembly constituency by election. The seat was vacated by Puducherry Chief Minister N. Rangasamy. In Tamil Nadu, the ruling Tamilaga Vetri Karagam TVK has won the assembly by polls for Madurantakam and Dharapuram seats today. In Madurantakam, TVK candidate K. Maragatham Kumarevel defeated DMK's I. Paranthaman by 73,000.

एक ही फिल्म से कार्यक्रम श्रोता आज सुन रहे हैं और आज हम आपको सुनवा रहे हैं आशिकी फिल्म के गाने। आशिकी वर्ष 1990 में बनी एक प्रसिद्ध भारतीय हिंदी संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। ये महेश भट्ट द्वारा निर्देशित प्रेम कहानी फिल्म है। राहुल रॉय, अनु अग्रवाल और दीपक तिजोरी प्रमुख भूमिकाओं में हैं।

आशिकी फिल्म के गीत श्रोता इस समय एक ही फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत सुन रहे हैं। ये फिल्म संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण द्वारा दिए गए संगीत के लिए जानी जाती है, जिसमें गायक कुमार सानू और संगीत प्रोडक्शन टी सीरीज ने अपनी पैठ बनाई थी। अपने संगीत की वजह से फिल्म वाणिज्यिक और समीक्षकों में सफल रही। आज भी इस फिल्म के गीत और संगीत कल ही की तरह लोकप्रिय हैं और ये फिल्म सुपरहिट रही।

आशिकी फिल्म में नदीम श्रवण को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। कुमार सानू को गीत अब तेरे बिन के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार मिला। अनुराधा पौडवाल को गीत नजर के सामने जिगर के पास के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार प्राप्त हुआ। गीतकार समीर को सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में इस फिल्म के लिए पुरस्कृत किया गया।

अभी आप सुन रहे थे एक ही फिल्म से, और आज आपने सुने आशिकी फिल्म के कुछ चुनिंदा नगमे। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम कारवां सुरों का।

मजरूह सुल्तानपुरी के बोलों को आपने आर डी वर्मन के संगीत निर्देशन में सुना। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया ये दो गाना था, फिल्म थी मेला। कार्यक्रम में आगे लीजिए सुनिए दर्द फिल्म का ये नगमा, लता मंगेशकर का गाया हुआ। रचना नक्श लालपुरी की, संगीत हयाम का।

0: विकास संवाद,
1: एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें बातें होंगी विकास की।
2: विकास के इस सफर में हमारे हम सफर होंगे विभिन्न विभागों से आए प्रतिनिधि।
1: कार्यक्रम के इस अंक में आपके रूबरू होंगे हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा।
2: कार्यक्रम का प्रसारण होगा मंगलवार दिनांक 20 अक्टूबर 2026 को सुबह 11:05 पर।
1: तो सुनना न भूलिएगा
0: विकास संवाद।

0: जब सुनाना हो दिल का हाल
1: तो इसमें भाई क्या है सवाल?
0: क्योंकि हेलो धर्मशाला आ रहा है एक नए अंदाज में।
1: उठाइए फोन, मिलाइए हमारे स्टूडियोज का फोन नंबर
0: 01892224391।
1: कीजिए हमसे बात और सुनिए अपने पसंद का गीत।
0: रिकॉर्डिंग हर शनिवार को दिन में 1:30 से 2 बजे तक होगी।
1: कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा प्रत्येक मंगलवार सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, क्योंकि हेलो धर्मशाला पहुँचे दिल से दिल तक
0: आपकी अपनी फ्रिक्वेंसी 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: रात्रि के 9:42 और 51 सेकेंड हुए हैं। 103.4 मेगाहर्ट्ज़ आपने ट्यून इन किया है। आकाशवाणी धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कारवां सुरों का।
1: तो मैं 17 बरस का
2: 16
1: 17
2: 17
1: 16

करवा सुरों का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में तलाश फिल्म का गाना। आर डी वर्मन का संगीत है, रचना मजरूह सुल्तानपुरी की।

कारवां सुरों का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए पेश है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश प्रेम रोग फिल्म से। संतोष आनंद के बोल हैं संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज है सुरेश वाडेकर की।

0: प्रेम रोग फिल्म के इस गीत के साथ कारवां सुरों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
1: अंदाज वही, कुछ अल्फाज है बदले,
2: सौगात नई, कुछ नए तराने,
3: तभी तो दिल ढूंढे आपसे मिलने के बहाने।
1: अब छिड़ेगी हिमगुंजन में लोक गीतों की सुरीली तान,
2: गूंजेगा खेल जगत और नॉन फिल्मी गीतों से सारा जहान।
3: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी धर्मशाला पर आप और हम में दीजिए अपनी राय और सुझाव।
1: सरकारी योजनाओं और नीतियों का कार्यक्रम होगा विकास संवाद।
2: ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी धर्मशाला पर
1: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी धर्मशाला, वही आपकी अपनी जानी पहचानी सी रेडियो फ्रिक्वेंसी
3: जो पहुंचे दिल से दिल तक।
4: हर दिन नई जानकारियों और मनोरंजन को लेकर आता है
2: आपका अपना कार्यक्रम सुबह सुहानी।
4: बातें करेंगे हम आपसे, मनोरंजन की सौगात भी साथ होगी
2: जब हम मिलेंगे आपसे सुबह 7:10 से 8 बजे तक।
4: ये वो समय होता है जब जुड़ते हैं देश विदेश की जानकारियों के साथ,
2: रोजाना ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुंचाते हैं,
4: तभी तो आपकी सुबह होती है और भी सुहानी।
2: तो सुनना ना भूलें मनोरंजन और जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम सुबह सुहानी।
0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:01 हो चुके हैं और कारवां सुरों के बाद अब आप आनंद लेंगे हमारे अगले कार्यक्रम का जो नई फिल्मों पर आधारित है। जी हाँ, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम बॉलीवुड वेट्स।

0: लड़कियों की हेलो धर्मशाला आ रहा है एक नए अंदाज में।
1: उठाइए फोन, मिलाइए हमारे स्टूडियोज का फोन नंबर
0: 01892224391।
1: कीजिए हमसे बात और सुनिए अपने पसंद का गीत।
0: रिकॉर्डिंग हर शनिवार को दिन में 1:30 बजे से 2 बजे तक होगी।
1: कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा प्रत्येक मंगलवार सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, क्योंकि हेलो धर्मशाला पहुँचे दिल से दिल तक।
0: आपकी अपनी फ्रिक्वेंसी 103.4 MHz पर।
1: बॉलीवुड बीट्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

103.4 मेगाहर्ट्ज इस वक्त आपने ट्यून इन किया है। रात्रि के 10:19 और 46 सेकंड हुए हैं। प्रोग्राम सुन रहे हैं बॉलीवुड बीट्स।

दिल्ली हाइट्स फिल्म के इसी गीत के साथ आज का बॉलीवुड वीट्स कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए पुरानी फिल्मों से सदाबहार गीत। कार्यक्रम है चित्रपट संगीत।

राजेंद्र कुमार और रुमाला सिन्हा पर फिल्माया ये गीत लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में अभी आपने सुना। गीत के बोल लिखे थे हसर जयपुरी ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। गीत फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए जिगरी दोस्त फिल्म से गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, मोहम्मद रफ़ी सुमन कल्याणपुर की आवाज़।

बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

रात्रि के 10:43 और 22 सेकेंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मों से सदाबहार गीत, कार्यक्रम है चित्र पर संगीत। मोहम्मद रफ़ी और चंद्रानी मुखर्जी की आवाज़ों में लीजिए सुनिए पूनम फिल्म का ये गाना। अनु मलिक का संगीत है, हसरत जयपुरी के बोल।

छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

0: मोहम्मद रफ़ी के गाए इसी गीत के साथ आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजने को हैं अब समाचार, आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके ने भी दारापुर और मदुरांतकम में सीटें जीत ली हैं। पुद्दुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया NR कांग्रेस विजयी रही। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजीनगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा NDA के सुशासन पर भरोसा है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। श्री मोदी ने पुद्दुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए NDA की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। आज शाम विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर लगे आरोपों के सिलसिले में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं ने मांग की है कि EVM का इस्तेमाल बंद किया जाए और चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने इस मामले में सबूत मांगे हैं और वे उन्हें सबूत सौंपेंगे। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इंकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नुपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
2: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
1: सुश्री प्रसाद ने कहा कि CJP ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इधर रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा है कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा है कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायवेद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन कल से झांसी में किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 21 अक्टूबर तक चलेगी। प्रतियोगिता के 3 डिवीजनों में 29 टीमें मुकाबला करेंगी। डिवीजन ए का फाइनल मुकाबला 21 अक्टूबर को होगा। देश भर की हॉकी टीमों के बीच 10 अक्टूबर से वर्चस्व की लड़ाई होगी। इस संस्करण में डिवीजन ए, डिवीजन बी और डिवीजन सी होंगे, जिसमें टीमों को पिछले संस्करण की रैंकिंग के अनुसार समूह में बांटा जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The BJP has registered massive victories in both assembly constituencies of West Bengal, Nandigram in East Midnapore district and Rejinagar in Murshidabad district, where by-elections were held. With victories in both these constituencies, the BJP's tally in the West Bengal assembly has risen to 209 seats. In Nandigram, BJP candidate Hazirani Rath defeated Congress candidate Milan Pradhan by over 1,22,000 votes. In Rejinagar, BJP candidate Shakha Rao Sarkar defeated Ghulam Nabi Azad of the Aam Janata Unnayan Party, AJUP, by more than 75,000 votes. In Puducherry, All India NR Congress candidate Ashok Anand won the Thattanachavadi Assembly by-election by 8,482 votes. In Tamil Nadu, the ruling Tamil Ragavetri Karagam, TVK, won the by-elections in Madurantakam and Tharapuram. K. Margatham Kumaravel won Madurantakam by 73,801 votes, while B. Satyabam won Tharapuram by 9,471 votes, defeating S. Suganya of DMK. In Assam, BJP candidate Devashish Sharma won the Nagaon Lok Sabha by-election, defeating AIUDF chief Badruddin Ajmal by over 1,40,000 votes. Congress candidate finished third. Prime Minister Narendra Modi congratulated the BJP candidates and praised party workers, saying the results reflected public support for the BJP-NDA's good governance agenda. He also congratulated the AINRC for its victory in Puducherry. Union Home Minister Amit Shah said the NDA's by-election and local body poll victories showed that the people have completely rejected the India alliance. Delhi police has denied permission for the proposed protest by the CJP at Jantar Mantar tomorrow. Addressing media in New Delhi today, Delhi Police Joint Commissioner Nupur Prasad said that applications seeking permission to hold protest or other programs at Jantar Mantar must be submitted at least 10 days in advance.
4: We have received an application from Sarov Das, co-convener of Kokto Janta Party. The application is regarding an intimation for protest on 10th of October at Jantar Mantar. The protest was regarding accountability of CEC. This intimation was considered and it was found that the intimation was given in a very short span of time, whereas as per the prescribed guideline, the intimation has to be received 10 days prior to the protest which is planned.
3: Ms. Prasad further stated that prohibitory orders under Section 163 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita are currently in force in the area, imposing necessary restrictions to maintain public safety and law and order. The Joint Commissioner warned that the Delhi Police would take appropriate legal action against anyone found violating the law. Meanwhile, due to security reasons, the entry and exit facility will remain closed at 45 metro stations from 9 p.m. tonight till tomorrow until further notice. However, interchange facility will remain available at all the concerned metro stations except New Delhi Metro Station. The Supreme Court has directed the centre and authorities to ensure that there is no complete suspension of Delhi Metro and railway services in the national capital in view of the CJP protest scheduled for tomorrow. A bench headed by Chief Justice of India Surya Kant and said that public transport services must continue in a regulated manner to minimise inconvenience to commuters. A delegation of opposition MPs met President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan this evening regarding allegations on functioning of the Election Commission. Talking to media after the meeting, Congress President Mallikarjun Kharge said they apprised the President about the alleged discrepancies in Special Intensive Revision or SIR exercise. He said the opposition leaders have demanded that EVMs be rolled back and elections be conducted using ballot paper. South African jurist of Indian origin Navaneet Mnavi Pillay has won the Nobel Peace Prize today for her contributions to promoting peace and international law. A former UN human rights chief and a judge at the International Court of Justice, Pillay grew up under apartheid and went on to build a career defending anti-apartheid activists and advancing human rights and equality. In cricket, West Indies defeated India by 6 wickets in the second T20 international in Ranchi today to level the five.